मीडियम वेव 262.47 मीटर यानी 1143 किलो हर्ट्स पर और एफएम बैंड 103.5 मेगा हर्ट्स पर ये आकाशवाणी का रोहतक केंद्र है। आज सोमवार है, शक संवत 1948 के ज्येष्ठ माह की पहली तिथि, तदनुसार 18 मई 2026। समय प्रातः के 5:58 और 40 सेकंड हुए हैं। अब प्रारंभ होते हैं हमारे आज के प्रसारण।

0: मीडियम वेव 262.47 मीटर यानी 1143 किलो हर्ट्स पर और एफएम बैंड 103.5 मेगाहर्ट्स पर ये आकाशवाणी का रोहतक केंद्र है। सुबह के 6 बजने को हैं। अब हिंदी समाचार प्रसारित होंगे। समाचार हम रिले करेंगे आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से। समाचारों के ठीक बाद एफएम बैंड 103.5 मेगाहर्ट्स पर आप सुनेंगे विविध भारती के कार्यक्रमों का रिले।
1: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं मनोज। भारत और स्वीडन ने आपसी साझेदारी को बढ़ाकर व्यापक रणनीतिक साझेदारी करने का फैसला किया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की स्वीडन यात्रा की ये ऐतिहासिक उपलब्धि है। श्री मोदी ने कल रात गोथेनबर्ग में स्वीडन के प्रधानमंत्री उल्फ क्रिस्टर्सन के साथ बातचीत की। वे कल स्वीडन की 2 दिवसीय यात्रा पर गोथेनबर्ग पहुंचे। भारत स्वीडन संबंधों में असाधारण योगदान और दूरदर्शी नेतृत्व की पहचान के रूप में श्री मोदी को रॉयल ऑर्डर ऑफ द पोलर स्टार डिग्री कमांडर ग्रैंड क्रॉस से सम्मानित किया गया। प्रतिनिधिमंडल स्तर की वार्ता के दौरान दोनों नेताओं ने व्यापार, निवेश, प्रौद्योगिकी, नवाचार, हरित बदलाव, अंतरिक्ष, उभरती प्रौद्योगिकियों, रक्षा, सुरक्षा, एसएमई, अनुसंधान और जनता के बीच संबंधों में सहयोग को प्रगाढ़ करने के तरीकों पर चर्चा की। प्रधानमंत्री क्रिस्टर्सन ने डिजिटल बदलाव और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के क्षेत्र में भारत की प्रगति की सराहना की। उन्होंने स्वीडन में भारतीय समुदाय के सकारात्मक योगदान का भी जिक्र किया। क्राउन प्रिंसेस विक्टोरिया ने भी इस बैठक में हिस्सा लिया और स्वीडन के राजा और रानी की ओर से शुभकामनाएं दीं। प्रधानमंत्री मोदी ने आतिथ्य सत्कार के लिए अपने मेज़बानों को धन्यवाद दिया और राजा कार्ल 16वें गुस्ताव के 80वें जन्मदिन पर शुभकामनाएं दीं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने स्वीडिश कंपनियों को मेक इन इंडिया, नेशनल ग्रीन हाइड्रोजन मिशन और नेशनल क्रिटिकल मिनरल मिशन जैसी योजनाओं के तहत भारत में निवेश बढ़ाने का निमंत्रण दिया है। श्री मोदी ने गोथेनबर्ग में स्वीडन की चुनिंदा कंपनियों के मुख्य कार्यकारी अधिकारियों के साथ बातचीत की। प्रधानमंत्री ने स्वीडिश कंपनियों से विनिर्माण, ग्रीन हाइड्रोजन मिशन, स्वच्छ ऊर्जा और अन्य क्षेत्रों में निवेश की अपील की। प्रधानमंत्री 5 देशों की यात्रा के 4थे चरण में आज नॉर्वे जाएंगे। वे 3रे भारत-नॉर्डिक शिखर सम्मेलन में शामिल होंगे और द्विपक्षीय बैठकें करेंगे। ये श्री मोदी की नॉर्वे की पहली यात्रा होगी। 43 वर्ष बाद भारत के कोई प्रधानमंत्री नॉर्वे जा रहे हैं। श्री मोदी राजा हेराल्ड पंचम और रानी सोनिया से मिलेंगे और प्रधानमंत्री जोनास गहर स्टोर के साथ बातचीत करेंगे। प्रधानमंत्री नॉर्वे के प्रधानमंत्री के साथ भारत नॉर्वे व्यापार और अनुसंधान शिखर सम्मेलन को भी संबोधित करेंगे। ये यात्रा भारत नॉर्वे संबंधों में हुई प्रगति की समीक्षा करने और उन्हें तथा मजबूत बनाने के तरीकों को खोजने का अवसर प्रदान करेगी। इसमें व्यापार और निवेश पर विशेष ध्यान दिया जाएगा। 3रा भारत-नॉर्डिक शिखर सम्मेलन कल होगा। कांग्रेस नेता वीडी सतीशन आज केरल के मुख्यमंत्री के रूप में शपथ लेंगे। मुख्यमंत्री पद के लिए नामित सतीशन ने कल 21 सदस्यीय यूडीएफ मंत्रिमंडल की घोषणा की। 21 मंत्रियों में से सतीशन सहित 14 पहली बार मंत्री बन रहे हैं। कांग्रेस को मुख्यमंत्री पद के अलावा 11 मंत्री पद मिले हैं, जबकि इंडियन यूनियन मुस्लिम लीग को 5 पद आवंटित किए गए हैं। भारत ने संयुक्त अरब अमीरात में बरका परमाणु संयंत्र पर हमले पर गहरी चिंता व्यक्त की है। विदेश मंत्रालय ने इस तरह की कार्रवाई को अस्वीकार्य बताया है, क्योंकि इससे और खतरनाक स्थिति पैदा हो सकती है। भारत ने संयम बरतने का आह्वान करते हुए बातचीत और कूटनीति से समाधान निकालने की बात कही है। रूस में ड्रोन हमले में एक भारतीय मजदूर सहित 4 लोगों की मौत हो गई है। पिछले एक वर्ष में मॉस्को और करीबी इलाकों पर यूक्रेन का ये सबसे बड़ा ड्रोन हमला है। मॉस्को के मेयर सर्गेई सोब्यानिन ने बताया कि इन हमलों में 12 लोग घायल हुए। रूस के अधिकारियों ने दावा किया कि मॉस्को को निशाना बनाने वाले 81 ड्रोन को रोक दिया गया। यूक्रेन के राष्ट्रपति व्लादिमीर ज़ेलेंस्की ने हमलों की पुष्टि करते हुए इन्हें पूरी तरह से सही ठहराया है। इस बीच रूस में भारतीय दूतावास ने सोशल मीडिया पोस्ट में कहा कि मॉस्को क्षेत्र में ड्रोन हमले में एक भारतीय मजदूर की मौत हो गई, जबकि 3 लोग घायल हुए। आईपीएल क्रिकेट में आज शाम 7:30 बजे चेन्नई में सनराइजर्स हैदराबाद और चेन्नई सुपर किंग्स आमने सामने होंगे। प्लेऑफ में बने रहने के लिए ये मैच दोनों टीम के लिए बेहद महत्वपूर्ण है। अंक तालिका में हैदराबाद तीसरे और चेन्नई छठे स्थान पर है। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
0: आकाशवाणी का ये रोहतक केंद्र है। मीडियम वेव 262.47 मीटर यानी 1143 किलो हर्ट्स पर। प्रस्तुत है चिंतन। आप अपना भविष्य नहीं बदल सकते, लेकिन अपनी आदतें बदल सकते हैं, और निश्चित रूप से आपकी आदतें आपका भविष्य बदल देंगी। अभी आप सुन रहे थे चिंतन। प्रस्तुत है भक्ति संगीत का कार्यक्रम वंदना।

प्रभु भक्ति के चार बातें अहम होती हैं। पहला, प्रभु की निष्काम भक्ति हो। दूसरा, एकमात्र प्रभु से ही प्रेम हो। तीसरा, अपना पूर्ण आत्मनिवेदन प्रभु का हो। और सबसे अहम और चौथा, प्रभु की पूर्ण रूप से शरणागति करने के लिए हम तैयार हों।

मानव जीवन में परम कल्याणकारी काम प्रभु की भक्ति करना है। भक्ति की ये कमाई हम केवल पृथ्वी पर रहकर ही कर सकते हैं, जो मृत्युलोक के बाद भी हमेशा हमारे साथ रहती है। तो आइए नमन करें अपने परम पिता परमेश्वर को।

उसी का जीवन सार्थक होता है जो प्रभु की भक्ति करता है। प्रभु भक्ति है जिससे ही हम अपने परम पिता परमेश्वर को जान सकते हैं।

अभी आप सुन रहे थे भक्ति संगीत का कार्यक्रम वंदना। आकाशवाणी का ये रोहतक केंद्र है। प्रस्तुत है श्री रामचरित मानस गान से आज का प्रसंग। स्वर हैं अनुराधा पौडवाल और साथियों के।

उस पीड़ा से कम दुखदायी होंगे जो पति के वियोग में अयोध्या में झेलनी होगी। यदि श्री राम से 14 वर्षों तक अलग उन्हें अयोध्या में रखा गया तो निश्चित ही वो जीवित नहीं रह सकेंगी। भला स्वामी को वनवास का कठिन जीवन और उन्हें राजमहल भोग विलास उचित है? सीता जी ने अत्यधिक व्याकुल होकर ये वचन कहे। पति वियोग की वो कल्पना तक नहीं कर सकती। सीता जी विकलता देख श्री राम का ये विचार दृढ़ हो गया कि हठपूर्वक उन्हें अयोध्या में छोड़ देने से वो जीवित नहीं रह सकेंगी। अतः उन्होंने सीता जी को विषाद भूलकर वन प्रस्थान के लिए तैयार हो जाने की अनुमति दे दी। माता के चरण छूकर श्री राम ने उनका आशीर्वाद प्राप्त किया। पुत्र को कातर नेत्रों से देखते हुए माता अधीर हो गईं। जब सीता जी ने सास के चरण छुए तो उन्हें हृदय से लगाकर सास ने आशीष दिया, जब तक गंगा जमुना में जल की धारा बहे तब तक तुम्हारा सुहाग अचल रहे।

0: अभी आप सुन रहे थे श्री रामचरितमानस कान से आज का प्रसंग। आकाशवाणी का ये रोहतक केंद्र है। प्रस्तुत है कार्यक्रम कृषि की बातें।
1: किसान बहनों भाइयों, राम राम। कृषि की बात हम आज जिक्र करेंगे बागों में टपका सिंचाई विधि का महत्व, इसके बारे में। किसान भाइयों, टपका सिंचाई विधि हमने कैस कहा कि ड्रिप सिस्टम, यानी कि जड़ा तक बूंद बूंद करके पानी पहुंचाने की एक तकनीक है, और यह कुशल तकनीक मानी गई है। जो फल के बाग है ना, उनकी खातर तो बेहतरीन तरीका माना गया है, क्योंकि लगभग 50% लेकर 70% पानी की बचत भी हम कर लिया हाँ, और इससे पैदावार भी बढ़े है, और पानी की बचत करने की जिम्मेवारी भी हमारी है। हम ऐसी फसलों का चुनाव करें, इस तरह खेती करें भाई जिसमें पानी कम लग गए। इबियो बागवानी में तो टपका सिंचाई विधि का जिक्र आ गया है, लेकिन जो दूसरी फसल हैं उनमें भी हमने ये देखना है कि कुछ इस तरह की फसल बोलें जिसमें पानी कम चाहिए। ज़्यादा पानी वाली फसल हम बोएंगे तो ज़्यादा दिन तक हो सकता है आम उसमें पानी ना दे पावा। कारण उसका क्या बनेगा कि हमारी ज़मीन भी कमज़ोर हो उसके है, क्योंकि ज़्यादा पानी मार दो रहे नहर का तो नहीं पाओगा, ट्यूबला का पाओगा। और ट्यूबवेल के पानी अपने प्रदेश की बात करा तो कुछ एक अक्षेत्रां छोड़ गए ठीक भी नहीं है। तो हमने यू विचार करना चाहिए कि इस तरह की कोई तकनीक अगर हमने मिले है तो उसका सहारा लो। बाकी कुछ ऐसी फसल बो जिसमें पानी की बचत रह जा। आप ध्यान में करके देखो, जब हमें 50 से लेकर 70% पानी, मान लिया हमने 60% पानी भी बचा लिया, तो कितना बड़ा काम हमने कराया है। और दूसरा, पैदावार में वृद्धि होने लग रही। हम सीधा ठोक के खेत में पानी देवा हाँ, या फिर नालिया में के पानी देवा हाँ, उसके हिसाब से जो एक एक बूंद करके पानी जो खेत में चला जा तो वो बहुत फायदेमंद साबित रहेगा। पानी की तो बचत रहे है, और पानी सीधा जड़ा तक जावे है, जिसते पानी का वाष्पीकरण भी नहीं बनता। गर्मी में पानी उड़ जाया करे ना, वो भी नहीं बनता, और पानी की होने वाली बर्बादी भी रुक जा है। फिर मान लो हमने कोई उर्वरक देने हैं खेत में, कोई पोषक तत्व देने हैं, तो वो भी सीधे पानी के साथ आम देश कहाँ। एक तो छिड़काव वैसे करा जा, एक पानी के साथ सीधे जड़ा में चले जा, जिसते खाद की बचत भी रहेगी और पौधे तेजी से बढ़ेंगे। किसान भाइयों, खरपतवार भी नहीं आंदे इसते। यो सिर्फ न्यू नहीं कि वह पानी जड़ा ती पहुंच गया, इतना ही बात है, बाकी जो खाली जगह पड़ी है वह सूखी रहे है, उसमें खरपतवार नहीं पनपते। जब हम खेत ने भर देंगे तो उसमें खरपतवार जमाव ले लेंगे, और खरपतवार एक बो हो गए तो उनका नोड़ा पता करना पड़ेगा, खुदाई करनी पड़ेगी, या फिर दवाई का छिड़काव करना पड़ेगा। और जब तक वह खरपतवार रहेंगे, जब तक वो पौधे के अंदर जो पोषक तत्व तो जाने चाहिए उन वो खुद खींच लेंगे। हमने सिर्फ जड़ में पानी देना है, ना कि बाकी एक क्षेत्र जो खाली पड़े है उसमें। और आप समझो हो, बाग में खाली एक क्षेत्र तो बहुत रह गया है, इसमें बीमारियां तो भी बचाव रहा है। पारंपरिक जो हमारी सिंचाई है ना, उसमें पूरा खेत भर गया है, जिससे तने की गलन सड़न की समस्या बन गया है। कुछ घास फूस थोड़ा बहुत पड़ा है वो गड़े है, उससे भी कई बार दिक्कत आ गया है, लेकिन ड्रिप सिस्टम में ऐसा नहीं होता। उत्पादन में वृद्धि तो बने बने है, और जो फल हैं उनमें भी गुणवत्ता बढ़ गया है, और पैदावार ज्यादा रहा है। एक मिट्टी का कटाव नहीं बनता, पानी ने नियंत्रित करे है, तेज गति तो पानी नहीं छोड़ता, इससे मिट्टी का कटाव भी नहीं बनता। और बता दें आपने, बागवानी को बढ़ावा देने खातर और इस तरह की जो विधि जो भाई अपनाना चाहे हैं, सरकार की तरफ तभी लगभग 90% तक सब्सिडी मिल जाए है। कई बार अपने जो राज्य का कृषि विभाग है वहां जाकर एक बार पता करें, या फिर इसका पोर्टल है इंटरनेट पे, उस पर पता कर लें। अगर इस पे कोई सब्सिडी बढ़िया तरीके आ रही है तो आवेदन करके ले सके हैं। तो कुछ बात भाइयों का ध्यान में दुआई है कि जो टपका सिंचाई विधि है उसके फायदे के क्या हैं। फायदे तो बहुत सारे हैं, नुकसान कुछ नहीं है, और थोड़ा बहुत पैसा अपनी जेब पे भी एक बार लाग जाए तो कोई बड़ी बात नहीं होती। और बतेरे हम खर्चे करें, हम पाइपलाइन थी दबाव हैं बड़ी, उसमें भी खर्चा हुआ है। कुछ थोड़ा बहुत खर्चा इसमें करा जाए, इसमें एक वे पाइपलाइन बिछेगी उसका खर्चा है, उसके बाद ज़्यादा सा खर्चा नहीं है, और काम फिर इतना आसान हो जाएगा कि एक बार इसने चला कर छोड़ दे, फिर फसल हर बार हम देखेंगे तो हमने न्यारिये दिखेगी। तो ये कुछ बात थी, इन अपनाएं और टपका सिंचाई विधि अपना कर अपने जो बाग हैं उनका अच्छा मुनाफा लें।
0: अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम कृषि की बातें। आकाशवाणी का ये रोहतक केंद्र है। मीडियम वेव 262.47 मीटर यानी 1143 किलो हर्ट्स पर। सुबह के 6:55 होने को हैं। हमारा अगला कार्यक्रम हम रिले करेंगे आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से।
2: आकाशवाणी संप्रति वार्ताः श्रूयन्ताम्। प्रवाचकः सुरेश चंद शर्मा। अथ वार्ताः। प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी गतरात्रौ गोथेनबर्ग इत्यत्र स्वीय स्वीडिश समकक्षेण उल्फ क्रिस्टर्सन इत्यमुना साकं संवादं विहितवान्। श्री मोदी द्विदिवसीय स्वीडन यात्रांतर्गतं गतदिने गोथेनबर्ग इत्यत्र संप्राप्तवान्। भारत स्वीडन देशयोः संबंधेषु मोदिनः असाधारण योगदानाय दूरदर्शी नेतृत्व सम्माने च प्रधानमंत्री श्री मोदी रॉयल ऑर्डर ऑफ द पोलर स्टार डिग्री कमांडर ग्रेड क्रॉस इत्यनेन सम्मानेन सभाजितवान्। प्रधानमंत्री मोदी सह प्रतिनिधि मंडल स्तरीय वार्तांतर्गतम उभौ नेतारौ भारत स्वीडन संबंधानां समेषां पदक्षेपाणां समीक्षामपि कृतवन्तौ। उभौ नेतारौ व्यापार निवेश प्रविधि नवाचार हरित परिवर्तनम अंतरिक्ष रक्षा अनुसंधानम समेत्य नैकेषु विषयेषु चर्चितवन्तौ। स्वीय संबोधने श्री मोदी आतंकवादम आलोचयन नैकेषु विषयेषु विस्तृतेन वक्तव्यं प्रकटितवान्। आतंकवादम विरुद्ध्य संघर्षे स्वीडिश प्रधानमन्त्रिणः समर्थनाय आभारमपि श्री मोदी प्रकाशितवान्।
3: आतंकवाद पूरी मानवता के लिए गंभीर चुनौती है। पिछले वर्ष पहलगाम में हुए आतंकी हमले के बाद हमें स्वीडन से मिले समर्थन के लिए मैं प्रधानमंत्री क्रिस्टर्सन का आभार व्यक्त करता हूं। हम आतंकवाद और उसके समर्थकों के विरुद्ध लड़ाई जारी रखेंगे।
2: प्रधानमन्त्रिणा नरेन्द्र मोदिना स्वीडिश समवायाः आमन्त्रिताः। गोथेनबर्ग इत्यत्र प्रमुख स्वीडिश समवाय प्रमुखैः सह वार्तान्तर्गतं श्रीमोदी स्वीडिश समवायान् विनिर्माण हरित हाइड्रोजन अभियानं स्वच्छोर्जा अन्येषु क्षेत्रेषु च स्वीयोपस्थिति संवर्धनाय आग्रहमपि कृतवान्। प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी अद्य स्वीय यात्रायाः चतुर्थे चरणे नॉर्वे इत्यत्र सम्प्राप्येत। भारत नॉर्डिक शिखर सम्मेलने भागग्रहणाय अथ द्विपक्षीय वार्ताभ्यः श्री मोदी अद्य नॉर्वे इत्यत्र सम्प्राप्येत। प्रधानमन्त्रिणः मोदिनः नॉर्वे इत्यत्र एषा प्रथमा यात्रा स्यात्। श्री मोदी राजा हेराल्ड पंचम इत्यमुना अथ रानी सौम्या इत्यनया साकं च मेलनं कुर्यात्। श्री मोदी तत्रत्य प्रधानमंत्रिणा जोनास गहरस्टोरे इत्यमुना साकं द्विपक्षीयां वार्तां कुर्यात्। कांग्रेस दलस्य नेतृत्वे केरलम शासनस्य शपथग्रहणम् अद्य स्यात्। कांग्रेस दलस्य नेता वीडी सतीशन अद्य तिरुवनन्तपुरम इत्यत्र शपथवचनं स्वीकुर्यात्। कांग्रेस दलेन सतीशन इत्यसौ केरल प्रदेशस्य अग्रिम मुख्यमंत्री रूपेण समुद्घोषितः। कांग्रेस दलस्य नेतृत्वयुतेन यूनाइटेड डेमोक्रेटिक ग्रंथियुतेन तत्र शासन विरचनं स्यात्। केन्द्रीयः गृह सहकारिता मंत्री अमित शाहः गुजरात प्रदेशस्य गांधीनगरे 700 कोटि मितानां विकास परियोजनानां उद्घाटनं शिलान्यासं च कृतवान्। स्वीय द्विदिवसीय यात्रावधौ गतदिने गांधीनगर नगर निगमस्य 100 कोटि मितानां विकास कार्याणां शुभारम्भमपि श्री शाहः विहितवान्। एतत्पूर्वं प्रथमे दिने श्री शाहः सूचना केन्द्रस्य उद्घाटनं च कृतवान्। श्री शाहः AI तथा डीपटेक इत्येतौ भविष्यस्य अर्थव्यवस्थायाः मुख्य स्तंभौ इति वर्णितवान्।
4: आने वाले 25 साल में जो सेक्टर विश्व की अर्थनीति को विश्व के अर्थतंत्र को दिशा देंगे वो सभी क्षेत्र में आज भारत फाउंडर बनकर अपनी मजबूत उपस्थिति को दर्ज करा रहा है और यही बता रहा है कि भारत का भविष्य बहुत सुनहरा है। AI और डीप टेक के जो भविष्य है इसके लिए इसके जैसे टेक पार्क बहुत बड़ा काम भी करेंगे और इसको आगे भी बढ़ाएंगे।
2: अन्ते च क्रीडा वार्तासु IPL इत्येतस्यां क्रिकेट लीग प्रतिस्पर्धायाम् अद्य चेन्नई सुपर किंग्स सनराइजर्स हैदराबाद इत्यनयोः दलयोः मध्ये द्वन्द्वं स्यात्। इति वार्ताः।
5: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं विशाल शर्मा। भारत और स्वीडन ने आपसी साझेदारी को बढ़ाकर व्यापक रणनीतिक साझेदारी करने का फैसला किया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की स्वीडन यात्रा की ये ऐतिहासिक उपलब्धि है। श्री मोदी ने कल रात गोतेनबर्ग में स्वीडन के प्रधानमंत्री उल्फ क्रिस्टर्सन के साथ बातचीत की। वे कल स्वीडन की दो दिवसीय यात्रा पर गोतेनबर्ग पहुंचे। भारत स्वीडन संबंधों में असाधारण योगदान और दूरदर्शी नेतृत्व की पहचान के रूप में श्री मोदी को रॉयल ऑर्डर ऑफ द पोलर स्टार डिग्री कमांडर ग्रैंड क्रॉस से सम्मानित किया गया। प्रतिनिधिमंडल स्तर की वार्ता के दौरान दोनों नेताओं ने व्यापार, निवेश, प्रौद्योगिकी, नवाचार, हरित बदलाव, अंतरिक्ष, उभरती प्रौद्योगिकियों, रक्षा, सुरक्षा, एसएमई, अनुसंधान और जनता के बीच संबंधों में सहयोग को प्रगाढ़ करने के तरीकों पर चर्चा की। प्रधानमंत्री क्रिस्टर्सन ने डिजिटल बदलाव और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के क्षेत्र में भारत की प्रगति की सराहना की। उन्होंने स्वीडन में भारतीय समुदाय के सकारात्मक योगदान का भी उल्लेख किया। क्राउन प्रिंसेस विक्टोरिया ने भी इस बैठक में हिस्सा लिया और स्वीडन के राजा और रानी की ओर से शुभकामनाएं दी। प्रधानमंत्री मोदी ने आतिथ्य सत्कार के लिए अपने मेजबानों को धन्यवाद दिया और राजा कार्ल 16वें गुस्ताव के 80वें जन्मदिन पर शुभकामनाएं दी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने स्वीडिश कंपनियों को मेक इन इंडिया, नेशनल ग्रीन हाइड्रोजन मिशन और नेशनल क्रिटिकल मिनरल मिशन जैसी योजनाओं के तहत भारत में निवेश बढ़ाने का निमंत्रण दिया है। श्री मोदी ने गोतेनबर्ग में स्वीडन की चुनिंदा कंपनियों के मुख्य कार्यकारी अधिकारियों के साथ बातचीत की। प्रधानमंत्री ने स्वीडिश कंपनियों से विनिर्माण, ग्रीन हाइड्रोजन मिशन, स्वच्छ ऊर्जा और अन्य क्षेत्रों में निवेश की अपील की। प्रधानमंत्री पांच देशों की यात्रा के चौथे चरण में आज नॉर्वे जाएंगे। वे तीसरे भारत नॉर्डिक शिखर सम्मेलन में शामिल होंगे और द्विपक्षीय बैठकें करेंगे। ये श्री मोदी की नॉर्वे की पहली यात्रा होगी। 43 वर्ष बाद भारत के कोई प्रधानमंत्री नॉर्वे जा रहे हैं। श्री मोदी राजा हेराल्ड पंचम और रानी सोनिया से मिलेंगे और प्रधानमंत्री जोनास गहर स्टोर के साथ बातचीत करेंगे। प्रधानमंत्री नॉर्वे के प्रधानमंत्री के साथ भारत नॉर्वे व्यापार और अनुसंधान शिखर सम्मेलन को भी संबोधित करेंगे। ये यात्रा भारत नॉर्वे संबंधों में हुई प्रगति की समीक्षा करने और उन्हें और मजबूत बनाने के तरीकों को खोजने का अवसर प्रदान करेगी। इसमें व्यापार और निवेश पर विशेष ध्यान दिया जाएगा। तीसरा भारत नॉर्डिक शिखर सम्मेलन कल होगा। कांग्रेस नेता वीडी सतीशन आज केरल के मुख्यमंत्री के रूप में शपथ लेंगे। मुख्यमंत्री पद के लिए नामित सतीशन ने कल 21 सदस्यीय यूडीएफ मंत्रिमंडल की घोषणा की। 21 मंत्रियों में से सतीशन सहित 14 पहली बार मंत्री बन रहे हैं। कांग्रेस को मुख्यमंत्री पद के अलावा 11 मंत्री पद मिले हैं, जबकि इंडियन यूनियन मुस्लिम लीग को 5 पद आवंटित किए गए हैं। भारत ने संयुक्त अरब अमीरात में बरकाह परमाणु संयंत्र पर हमले पर गहरी चिंता व्यक्त की है। विदेश मंत्रालय ने इस तरह की कार्रवाई को अस्वीकार्य बताया है, क्योंकि इससे और खतरनाक स्थिति पैदा हो सकती है। भारत ने संयम बरतने का आह्वान करते हुए बातचीत और कूटनीति से समाधान निकालने की बात कही है। रूस में ड्रोन हमले में एक भारतीय मजदूर सहित 4 लोगों की मौत हो गई है। पिछले एक वर्ष में मॉस्को और करीबी इलाकों पर यूक्रेन का यह सबसे बड़ा ड्रोन हमला है। मॉस्को के मेयर सरगेई सोब्यानिन ने बताया कि इन हमलों में 12 लोग घायल हुए। रूस के अधिकारियों ने दावा किया कि मॉस्को को निशाना बनाने वाले 81 ड्रोन को रोक दिया गया। यूक्रेन के राष्ट्रपति व्लादिमीर ज़ेलेंस्की ने हमलों की पुष्टि करते हुए उन्हें पूरी तरह से सही ठहराया है। इस बीच रूस में भारतीय दूतावास ने सोशल मीडिया पोस्ट में कहा कि मॉस्को क्षेत्र में ड्रोन हमले में एक भारतीय मजदूर की मौत हो गई, जबकि 3 लोग घायल हो गए। ईरान ने घोषणा की है कि वो रणनीतिक रूप से महत्वपूर्ण हॉर्मुज जलडमरू मध्य से सैन्य पोतों को गुजरने की अनुमति नहीं देगा। ईरान के प्रथम उपराष्ट्रपति मोहम्मद रजा आरिफ ने कहा कि पहले इस जलमार्ग से सैन्य उपकरणों से लदे जलपोत गुजरने की अनुमति दी गई थी, जो ईरान के विरुद्ध ही प्रयोग किए जा रहे हैं। उन्होंने कहा कि अब ये नीति बदल जाएगी। आईपीएल क्रिकेट में आज शाम 7:30 बजे चेन्नई में सनराइजर्स हैदराबाद और चेन्नई सुपर किंग्स आमने सामने होंगे। प्लेऑफ में बने रहने के लिए ये मैच दोनों टीमों के लिए बेहद महत्वपूर्ण है। प्रतियोगिता में कल दिल्ली कैपिटल्स ने राजस्थान रॉयल्स को 5 विकेट से हराया। इससे पहले रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु ने पंजाब किंग्स को 23 रन से हराकर प्लेऑफ में जगह बनाई। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।

कार्यक्रम कृषि जगत आपको सुनवाएंगे शाम 6:20 पर, जिसके तहत आप सुनेंगे खाली खेतों में चूहे मार अभियान विषय पर डॉक्टर रवि कांत से की गई बातचीत।

गन्ना फसल की देखभाल, इस विषय पर चर्चा आप सुन सकेंगे खेत खलिहान कार्यक्रम के तहत। समय रहेगा दोपहर 2:30 बजे।

सुगम संगीत कार्यक्रम का समय रहेगा रात 8:25। कार्यक्रम शास्त्रीय संगीत के तहत सुबह 7:15 पर आपको सुनवाएंगे सुरेंद्र कुमार का सितार पर बजाया राग भोपाल तोड़ी। इसी कार्यक्रम के अंतर्गत रात 10 बजे सुनिएगा सुरेंद्र कुमार का ही सितार पर बजाया राग यमन। सुबह 8:30 पर लोक संगीत कार्यक्रम में गायक कलाकार होंगे बाली शर्मा और साथी। फिल्म संगीत का आनंद आप ले सकेंगे हमारी पहली प्रसारण सभा में सुबह 9 बजे पत्रों पर आधारित कार्यक्रम आपकी फरमाइश में। दोपहर 1:10 पर सुनिएगा कार्यक्रम चित्रपट संगीत में। शाम 7:30 पर कार्यक्रम एक फिल्म से के तहत, रात 9:15 कार्यक्रम एक फिल्म से में और रात 10:30 कार्यक्रम मन चाहे गीत के अंतर्गत। ये थे हमारे केंद्र से आज प्रसारित होने वाले शेष कार्यक्रम। आकाशवाणी का ये रोहतक केंद्र है, मीडियम वेव 262.47 मीटर यानी 1143 किलो हर्ट्ज पर। आइए सुनते हैं कार्यक्रम शास्त्रीय संगीत, जिसमें आज आपको सुनाएंगे सुरेंद्र कुमार का सितार पर बजाया राग भोपाल तोड़ी।

अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम शास्त्रीय संगीत, जिसमें आज आपने सुना सुरेंद्र कुमार का सितार पर बजाया राग भोपाल तोड़ी। आकाशवाणी का ये रोहतक केंद्र है मीडियम वेव 262.47 मीटर यानी 1143 किलो हर्ट्ज पर। प्रस्तुत है कार्यक्रम सुबह सवेरे।

श्रोताओं, हर दिन नया होता है जो नया उद्देश्य और नया जोश हमारे जीवन में भर देता है, पर वहीं बीता दिन कुछ यादों को उनके महत्व से हमें जोड़ जाता है जो कई बार हमारे आने वाले जीवन पर विशेष प्रभाव डालते हैं, हमें नई दिशा देते हैं। ऐसा ही विशेष दिन आज का दिन है। आज हम सब अंतर्राष्ट्रीय संग्रहालय दिवस मना रहे हैं। अंतर्राष्ट्रीय संग्रहालय दिवस का उद्देश्य इस तथ्य के प्रति जागरूकता बढ़ाना है कि संग्रहालय सांस्कृतिक आदान प्रदान, संस्कृतियों के संवर्धन और लोगों के बीच आपसी समझ, सहयोग और शांति के विकास का एक महत्वपूर्ण साधन है। ज्ञान के केंद्र होने के नाते संग्रहालय शांतिपूर्ण सह अस्तित्व और आपसी सम्मान में योगदान देते हैं। हर साल नए विषय के साथ इसे हम मनाते हैं। इस साल का हमारा विषय एक विभाजित विश्व को एकजुट करने वाले संग्रहालय है। ये विषय सांस्कृतिक, सामाजिक और भू राजनीतिक विभाजनों को पाटने, संवाद, समझ, समावेश और शांति को बढ़ावा देने में संग्रहालयों की क्षमता को उजागर करता है। संग्रहालय भरोसेमंद सार्वजनिक स्थान है जहाँ लोग कहानियाँ, वस्तुओं और एक दूसरे से मिलते हैं, अपनी इच्छाओं का अपने बारे में एक दूसरे को बताते हैं। सामाजिक विखंडन, ध्रुवीकरण, ज्ञान एवं संस्कृति तक पहुंचने के इस दौर में संग्रहालय पीढ़ियों, समुदायों और सीमाओं के बीच संबंध को दोबारा स्थापित करने में हमारी सहायता करते हैं और दुनिया भर के समुदायों के भीतर उनके बीच संवाद, समझ, समावेश और शांति को बढ़ावा देते हैं। संग्रहालय एक विभाजित दुनिया को एकजुट करते हैं। विश्व संग्रहालयों की उस क्षमता को उजागर करते हैं जिसके द्वारा वे संस्कृति, सामाजिक और भू राजनीतिक विभाजनों को एक साथ लाने यानी सेतु का काम करते हैं। विश्व भर के समुदायों के बीच संवाद, समझ और शांति को बढ़ावा देते हैं। संग्रहालय मतभेदों को मिटाते नहीं बल्कि ऐसे हालात बनाते हैं जिससे मतभेदों को समझा जा सके और सम्मानपूर्ण उनका स्वागत और सामना किया जा सके। संग्रहालय कुछ नया सीखने, पुराने स्मृतियों को याद रखने, उन पर चिंतन करने का अवसर हमें देता है। ये हमारे लिए खुले अवसर प्रदान करता है, सुलभ रास्ते बनाता है कि हम अपने सांस्कृतिक विरासत के साथ जुड़े रह सकें। श्रोताओं, अपने आने वाली पीढ़ी को अपने प्राचीन अस्तित्व यानी इतिहास से रूबरू करवाना हम सब की जिम्मेदारी है और यही विश्व संग्रहालय दिवस का उद्देश्य भी। इस उद्देश्य को हम भली भांति तभी समझ पाएंगे जब हम इनके बारे में जान पाएंगे। इस दिन का उद्देश्य हम सब को विश्व संग्रहालयों के बारे में जानकारी देना है, इन संग्रहालयों का ध्यान रखने, उन्हें सुनिश्चित करने हम वाले हमारे कर्तव्य से हमें रूबरू करवाना है। हम अपनी प्राचीन धरोहरों को संजो कर रखेंगे तभी अपने आने वाले पीढ़ियों को उनकी समझ दे पाएंगे।

श्रोताओं, आज एक और विशेष दिन हम सब मना रहे हैं, वो है विश्व एड्स टीकाकरण दिवस। मानव प्रतिरक्षाहीनता वायरस यानी HIV वैश्विक स्वास्थ्य के लिए एक गंभीर चिंता का विषय बना हुआ है, जो दुनिया भर के लाखों व्यक्तियों और परिवारों को प्रभावित करता है। उपचार और प्रबंधन में महत्वपूर्ण प्रगति हुई है, लेकिन HIV एड्स के खिलाफ लड़ाई में एक प्रभावी टीके की खोज सबसे महत्वपूर्ण लक्ष्यों में से एक है। एक निवारक टीका नए संक्रमणों को कम करके और दीर्घकालीन सार्वजनिक स्वास्थ्य परिणामों में सुधार करके महामारी की दिशा को बदलने की क्षमता रखता है। विश्व एड्स टीकाकरण दिवस, जिसे HIV टीकाकरण जागरूकता दिवस के रूप में हम सब जानते हैं, ये हर साल 18 मई को हम सब मनाते हैं। ये दिन HIV टीकाकरण के विकास की दिशा में काम कर रहे वैज्ञानिकों, स्वास्थ्य पेशेवरों, स्वयं सेवकों के प्रयासों को मान्यता देता है। श्रोताओं, HIV शरीर की प्रतिरक्षा प्रणाली विशेष रूप से CD4 कोशिकाओं पर हमला करता है, जिससे शरीर में संक्रमणों और बीमारियों से लड़ने की क्षमता कमजोर हो जाती है। यदि समय पर इसका इलाज न किया जाए तो ये एक्वायर्ड इम्यूनोडेफिशियंसी सिंड्रोम यानी एड्स में बदल जाता है, जो संक्रमण का सबसे उन्नत चरण होता है। इसे रोकने की दिशा में काम कर रहे वैज्ञानिकों को और उनके काम के बारे में जन जन को बताने के लिए ही हम ये दिन मनाते हैं। 18 मई को मनाए जाने वाले विश्व एड्स टीकाकरण दिवस सुरक्षित और प्रभावी HIV वैक्सीन के विकास में चल रहे अनुसंधान, सामुदायिक भागीदारी और जागरूकता के महत्व को प्रकाश डालते हैं। साथ ही रोकथाम और वैज्ञानिक प्रगति के उद्देश्य से किए जा रहे प्रयासों का समर्थन करते हैं, उसके बारे में लोगों को बताते हैं। श्रोताओं, किसी भी बीमारी को हम तभी रोक सकते हैं जब हम सब एकजुट होकर उसके खिलाफ अपना काम करें।

0: इसी गीत के साथ संपन्न होता है कार्यक्रम सुबह सवेरे। आकाशवाणी का ये रोहतक केंद्र है, मीडियम वेव 262.47 मीटर यानी 1143 किलो हर्ट्स पर। सुबह के 8 बजने को हैं, अब हिंदी समाचार प्रसारित होंगे। पहले हिंदी में, 8:15 पर अंग्रेजी में। समाचार हम रिले करेंगे आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से।
1: नमस्कार, आकाशवाणी से समाचार प्रभात के साथ मैं विशाल शर्मा। मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने गोथेनबर्ग में स्वीडन के प्रधानमंत्री उल्फ क्रिस्टर्सन के साथ बातचीत की। भारत और स्वीडन ने आपसी सहयोग को बढ़ाकर व्यापक रणनीतिक साझेदारी तक करने का फैसला किया। प्रधानमंत्री ने स्वीडन की कंपनियों को मेक इन इंडिया, नेशनल ग्रीन हाइड्रोजन मिशन और नेशनल क्रिटिकल मिनरल मिशन जैसी योजनाओं के तहत भारत में निवेश बढ़ाने का निमंत्रण दिया। केरलम में कांग्रेस नेता वीडी सतीशन आज मुख्यमंत्री पद की शपथ लेंगे। दक्षिण पश्चिम मानसून के सामान्य तिथि से 6 दिन पहले 26 मई को केरलम तट पर पहुंचने की संभावना। और आईपीएल क्रिकेट में दिल्ली कैपिटल्स ने राजस्थान रॉयल्स को 5 विकेट से हराया। अब समाचार विस्तार से। भारत और स्वीडन ने आपसी साझेदारी को बढ़ाकर व्यापक रणनीतिक साझेदारी करने का फैसला किया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की स्वीडन यात्रा की ये ऐतिहासिक उपलब्धि है। श्री मोदी ने कल रात गोथेनबर्ग में स्वीडन के प्रधानमंत्री उल्फ क्रिस्टर्सन के साथ बातचीत की। वे कल स्वीडन की 2 दिवसीय यात्रा पर गोथेनबर्ग पहुंचे। भारत स्वीडन संबंधों में असाधारण योगदान और दूरदर्शी नेतृत्व की पहचान के रूप में श्री मोदी को रॉयल ऑर्डर ऑफ द पोलर स्टार डिग्री कमांडर ग्रैंड क्रॉस से सम्मानित किया गया। प्रतिनिधिमंडल स्तर की वार्ता के दौरान दोनों नेताओं ने व्यापार, निवेश, प्रौद्योगिकी, नवाचार, हरित बदलाव, अंतरिक्ष, उभरती प्रौद्योगिकियों, रक्षा, सुरक्षा, एसएमई, अनुसंधान और जनता के बीच संबंधों में सहयोग को प्रगाढ़ करने के तरीकों पर चर्चा की। दोनों नेता भारत यूरोपीय संघ रणनीतिक साझेदारी की भावना और हाल ही में संपन्न भारत यूरोपीय संघ मुक्त व्यापार समझौते के अनुरूप जनहित के नए अवसरों की पहचान करने पर भी सहमत हुए। उन्होंने क्षेत्रीय और वैश्विक मुद्दों पर भी चर्चा की। संयुक्त राष्ट्र और बहुपक्षीय संगठनों में सुधार की तात्कालिकता पर जोर दिया गया और बहुपक्षीय मंचों पर सहयोग आगे बढ़ाने पर सहमति बनी।
2: यात्रा के दौरान दोनों देशों ने वर्ष 2026 से 2030 तक के लिए संयुक्त कार्य योजना अपनाई, जिसका उद्देश्य अगले 5 वर्षों में द्विपक्षीय आर्थिक आदान प्रदान को दोगुना करना है। इंडिया स्वीडन स्ट्रॉन्गर टुगेदर टुवर्ड्स 2047 थीम के तहत दोनों देशों ने 2027 में भारत में द्विपक्षीय व्यापार एवं निवेश शिखर सम्मेलन आयोजित करने पर सहमति जताई। स्वीडन उद्योगपति और प्रमुख कंपनियों के प्रतिनिधियों के साथ बातचीत में प्रधानमंत्री ने मेक इन इंडिया और मेड विद स्वीडन पहल के तहत निवेश बढ़ाने का आह्वान किया, विशेषकर राष्ट्रीय हरित हाइड्रोजन मिशन और क्रिटिकल मिशन मिनरल मिशन जैसे क्षेत्रों में। दोनों देशों की साझेदारी अब सेमीकंडक्टर और मजबूत सप्लाई चेन जैसे उच्च विकास वाले क्षेत्रों पर विस्तारित होगी। तकनीकी और जलवायु परिवर्तन के क्षेत्र में भी यात्रा के दौरान कई महत्वपूर्ण समझौते हुए। प्रधानमंत्री ने पहलगाम आतंकी हमले के बाद भारत के प्रति समर्थन व्यक्त करने के लिए स्वीडन का विशेष आभार भी व्यक्त किया।
3: आतंकवाद पूरी मानवता के लिए गंभीर चुनौती है। पिछले वर्ष पहलगाम में हुए आतंकी हमले के बाद हमें स्वीडन से मिले समर्थन के लिए मैं प्रधानमंत्री क्रिस्टर्सन का आभार व्यक्त करता हूँ। हम आतंकवाद और उसके समर्थकों के विरुद्ध लड़ाई जारी रखेंगे।
2: इस यात्रा में साझा बौद्धिक विरासत और व्यापक क्षेत्रीय सहयोग को भी नहीं पहचान दी। साक्षी सिंह, आकाशवाणी समाचार, गोथेनबर्ग, स्वीडन।
1: प्रधानमंत्री 5 देशों की यात्रा के चौथे चरण में आज नॉर्वे जाएंगे। वे 3रे भारत नॉर्डिक शिखर सम्मेलन में शामिल होंगे और द्विपक्षीय बैठकें करेंगे। ये श्री मोदी की नॉर्वे की पहली यात्रा होगी। 43 वर्ष बाद भारत के कोई प्रधानमंत्री नॉर्वे जा रहे हैं।
4: प्रधानमंत्री मोदी सम्राट हेराल्ड पंचम और महारानी सोनिया से मिलेंगे और प्रधानमंत्री जोनास गहर स्टोर के साथ बातचीत करेंगे। प्रधानमंत्री मोदी नॉर्वे के प्रधानमंत्री के साथ भारत नॉर्वे व्यापार और अनुसंधान शिखर सम्मेलन को भी संबोधित करेंगे। यह यात्रा भारत नॉर्वे संबंधों में हुई प्रगति की समीक्षा करने और उन्हें मजबूत बनाने के तरीकों को खोजने का अवसर प्रदान करेगी। इसमें व्यापार और निवेश पर विशेष ध्यान दिया जाएगा। 3रा भारत नॉर्डिक शिखर सम्मेलन कल होगा। इस सम्मेलन में श्री मोदी के साथ नॉर्वे नॉर्वे, डेनमार्क, फिनलैंड, आइसलैंड और स्वीडन के प्रधानमंत्री शामिल होंगे। साक्षी सिंह की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से मैं मुकेश कुमार।
1: केंद्रीय स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री जगत प्रकाश नड्डा 79वें विश्व स्वास्थ्य सम्मेलन में भाग लेने के लिए स्विट्जरलैंड पहुंच गए हैं। सम्मेलन 18 से 23 मई तक चलेगा। इस वर्ष सम्मेलन का विषय है वैश्विक स्वास्थ्य को नया स्वरूप देना, साझा जिम्मेदारी। श्री नड्डा ने सोशल मीडिया पोस्ट में कहा कि ये वैश्विक स्वास्थ्य चुनौतियों से निपटने में सामूहिक प्रयासों के महत्व को प्रदर्शित करता है। उन्होंने कहा कि ये सम्मेलन 165 से अधिक देशों के स्वास्थ्य मंत्रियों, गणमान्य जनों और सार्वजनिक स्वास्थ्य विशेषज्ञों को एक मंच पर लाएगा। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारे सोशल मीडिया हैंडल @AIRNewsHindi को फॉलो कर सकते हैं।
5: सबके लिए सामाजिक सुरक्षा, अटल पेंशन योजना, मोदी जी का संकल्प।
3: योजना उन नौजवानों के लिए है ताकि आप जब 60 साल के होंगे आपको कभी किसी के सहारे की जरूरत न पड़े, आप अपना बुढ़ापा भी गौरव के साथ बिता सको।
5: अब तक इस योजना से 8,85,00,000 से अधिक लाभार्थी जुड़ चुके हैं। अगर आप भी 18 से 40 साल की उम्र के हैं तो मासिक अटल पेंशन सहित 3 गारंटीड फायदों के लिए अपनी बैंक शाखा से संपर्क करें।
1: समाचार प्रभात में आपका फिर स्वागत है। कांग्रेस नेता वीडी सतीशन आज केरलम के मुख्यमंत्री के रूप में शपथ लेंगे। राज्यपाल राजेंद्र विश्वनाथ अर्लेकर आज सुबह 10 बजे तिरुवनंतपुरम में आयोजित समारोह में उन्हें पद और गोपनीयता की शपथ दिलाएंगे। मुख्यमंत्री पद के लिए नामित सतीशन ने कल शाम शपथ ग्रहण समारोह से पहले 21 सदस्यीय UDF मंत्रिमंडल की घोषणा की।
6: कांग्रेस के नेतृत्व वाली UDF सरकार आज केरलम में 10 साल के अंतराल के बाद शपथ ले रही है। मुख्यमंत्री और 20 अन्य मंत्री तिरुवनंतपुरम के सेंट्रल स्टेडियम में आयोजित समारोह में शपथ लेंगे। शपथ ग्रहण समारोह को देखने के लिए UDF कार्यकर्ता कल दोपहर से ही बड़ी संख्या में राजधानी पहुंच रहे हैं। इस समारोह में कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे, लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी, कर्नाटक, हिमाचल प्रदेश और तेलंगाना के मुख्यमंत्री, केरलम के निवर्तमान मुख्यमंत्री पिनाराई जयन और प्रदेश भाजपा अध्यक्ष राजीव चंद्रशेखर सहित कई वरिष्ठ नेताओं के शामिल होने की उम्मीद है। तिरुवनंतपुरम से स्मिथ एम पल्लुरुथी की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से मैं मृगनयनी पांडे।
1: उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने अपने मंत्रिमंडल में नवनियुक्त और पदोन्नत मंत्रियों को विभाग आवंटित कर दिए हैं। 10 मई को हुए उत्तर प्रदेश सरकार के दूसरे मंत्रिमंडल विस्तार के बाद विभागों का आवंटन किया गया है। इस फेरबदल में 2 कैबिनेट मंत्रियों और 4 राज्य मंत्रियों को सरकार में शामिल किया गया, जबकि 2 राज्य मंत्रियों को स्वतंत्र प्रभार वाले राज्य मंत्री के पद पर पदोन्नत किया गया है। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह छत्तीसगढ़ के 2 दिवसीय दौरे पर कल शाम रायपुर पहुंचे। हमारे संवाददाता ने बताया है कि श्री शाह रायपुर और बस्तर में कई कार्यक्रमों में भाग लेंगे।
7: केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह आज सुबह रायपुर में आपातकालीन सेवा डायल 112 के तहत नए वाहनों को हरी झंडी दिखाकर रवाना करेंगे। इसके बाद वे बस्तर जाएंगे और जिले के नेतानार गांव में जन सुविधा केंद्र का शुभारंभ करेंगे। इस केंद्र से दूरस्थ इलाकों में रहने वाले लोगों को शासकीय और डिजिटल सेवाएं आसानी से मिल सकेंगी। इसके बाद श्री शाह जगदलपुर पहुंचकर अमर वाटिका में श्रद्धांजलि अर्पित करेंगे। शाम को वे बस्तर के संग लोक सांस्कृतिक कार्यक्रम में भी शामिल होंगे। छत्तीसगढ़ के नक्सल मुक्त होने के बाद केंद्रीय गृह मंत्री का यह राज्य का पहला दौरा है। विकल्प शुक्ला, आकाशवाणी समाचार, रायपुर।
1: मौसम विभाग ने कहा है कि दक्षिण पश्चिम मानसून सामान्य तिथि से 6 दिन पहले 26 मई को केरलम तट पर पहुंचने की संभावना है। हमारे संवाददाता ने बताया है कि दक्षिण पूर्व अरब सागर, बंगाल की खाड़ी, अंडमान निकोबार द्वीप समूह और अंडमान सागर में अगले 2 से 3 दिन तक मानसून के आगे बढ़ने के लिए स्थितियां अनुकूल हैं।
8: मौसम विभाग ने अनुमान व्यक्त किया है कि आज अंडमान और निकोबार द्वीप समूह, अरुणाचल प्रदेश, असम, लक्षद्वीप, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा, दक्षिण आंतरिक कर्नाटक, तमिलनाडु, पुडुचेरी और कराईकल में भारी बारिश हो सकती है। वहीं विभाग ने आज पश्चिम उत्तर प्रदेश में भीषण लू चलने की संभावना व्यक्त की है। वहीं पूर्वी उत्तर प्रदेश, हरियाणा, चंडीगढ़, दिल्ली, मध्य प्रदेश, मराठवाड़ा, पंजाब, राजस्थान, तेलंगाना और विदर्भ के कुछ इलाकों में भी लू चल सकती है। मौसम विभाग के मुताबिक अगले 3 से 4 दिनों में उत्तर पश्चिम भारत कई हिस्सों में अधिकतम तापमान में 3 से 5 डिग्री सेल्सियस तक की बढ़ोतरी हो सकती है। अमन यादव, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
1: आकाशवाणी का समाचार सेवा प्रभाग आज रात 9:30 बजे पब्लिक स्पीक कार्यक्रम में जनगणना के पहले चरण मकान सूचीकरण और आवास गणना विषय पर परिचर्चा प्रसारित करेगा। कार्यक्रम में गृह मंत्रालय के अंतर्गत भारत के रजिस्ट्रार जनरल और जनगणना आयुक्त कार्यालय में उप रजिस्ट्रार जनरल V.A. वराडे स्टूडियो में मौजूद रहेंगे। कार्यक्रम के दौरान श्रोता विषय से संबंधित प्रश्न पूछ सकते हैं। हमारे नंबर हैं 0112331 0481 और 0112371 71। व्हाट्सएप नंबर 9289094044 पर भी सवाल पूछे जा सकते हैं। नीट UG प्रवेश परीक्षा के प्रश्न पत्र लीक मामले की जांच अब महाराष्ट्र के लातूर से नांदेड़ तक पहुंच गई है। एक अभिभावक पर अपनी बेटी के लिए प्रश्न पत्र 5 लाख रुपए में खरीदने का आरोप है। केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो की टीम ने कल उस व्यक्ति से पूछताछ कर जांच के लिए पुणे कार्यालय में बुलाया है। इस मामले में दिल्ली की राउज एवेन्यू अदालत ने पुणे की आरोपी मनीषा मंधारे को 14 दिन की CBI हिरासत में भेज दिया। एजेंसी के अनुसार मंधारे नीट जीव विज्ञान परीक्षा के प्रश्नपत्र लीक मामले में मुख्य षड्यंत्रकारी हैं। पश्चिम मध्य रेलवे ने तिरुवनंतपुरम सेंट्रल हजरत निजामुद्दीन राजधानी एक्सप्रेस में आग की घटना की जांच के लिए उच्च प्रशासनिक स्तर की जांच समिति गठित की है। मध्य प्रदेश के लूणी रिच्छा और विक्रमगढ़ आलोट स्टेशनों के बीच रेलगाड़ी के एक यात्री डिब्बे, सामान रखने वाले डिब्बे और जनरेटर वाले डिब्बे में आग लग गई थी। समिति घटना के कारणों, तकनीकी पहलुओं और सुरक्षा मानकों की विस्तृत जांच करेगी, जिससे भविष्य में ऐसी घटनाओं को रोका जा सके। चेन्नई में IPL क्रिकेट में आज शाम 7:30 बजे चेन्नई सुपर किंग्स और सनराइजर्स हैदराबाद आमने सामने होंगे। प्लेऑफ में बने रहने के लिए ये मैच दोनों टीम के लिए बेहद महत्वपूर्ण है। अंक तालिका में हैदराबाद तीसरे और चेन्नई छठे स्थान पर है। प्रतियोगिता में कल दिल्ली कैपिटल

न्यारी न्यारी काया सच बुझो पे इंसान जमी पे वीर के कारण आया सृष्टि की धुरी वीर बताई यो जगत वीर ने जाया इस पृथ्वी पे उसी स्वर की यह शक्ति और माया हो और ईश्वर अपनी

रचना में से नारी की अजब कहानी। आंचल मेरे दूध हमेशा रे आख्या के मा पानी। आवन दे तू मत ना रोके मत ना कर नादानी। इंसान तने क्यों

अरे गुलाबी रंग देरी थे रोशनाई, देश देश की माया लूट के रे इसका।

दोनों डबपड़ काला खड़िए केवाड़ी जड़िए शीशम के कुंदी लगरी ना ताड़ा फर्श गिलारी संगमरमर के दिखे ब्योत निराला सोने का पानी ओया छाट पे धन माया का गाड़ा सोने का पानी देखिए दरी तस्वीर।

मैत्रे मुर्गाई एक आदि जगे कंठार्य पे अरे हरे रंग की काई गुरुमान संगी बता गए जो धर्म करम की।

0: जब व्यापार के प्रचार की हो बात तो अपनाएं आकाशवाणी का साथ। हर दिल, हर घर और हर जन, हर वर्ग को जोड़ने का है साधन। विश्वसनीय, असरदार और हम सब का हमसफर आकाशवाणी रोहतक है सदा तत्पर। हमारी आवाज आपका प्रचार, हो जाएं समृद्ध होने को तैयार। अपने ब्रांड को विज्ञापन के जरिए जन जन पहुंचाने के लिए आज ही संपर्क करें आकाशवाणी रोहतक।
1: आकाशवाणी रोहतक से आप सुन रहे हैं कार्यक्रम लोक संगीत, जिसमें आज गायक कलाकार हैं बाली शर्मा और साथी।
2: थी रंग महल में

ना पाप किनी धरी थी और तू जाने पेट पूरण मल ने ना अमृत घूंट भरी थी मेरे लिखे जहर बराबरी तेरे लिखे चीज खरी थी ना कड़वी ना मीठी मेवा ना कड़वी

इसी के साथ संपन्न होता है कार्यक्रम लोक संगीत, जिसमें आज गायक कलाकार थे बाली शर्मा और साथी। आकाशवाणी का ये रोहतक केंद्र है, मीडियम वेव 262.47 मीटर यानी 1143 किलो हर्ट्स पर। प्रस्तुत है कार्यक्रम आपकी फरमाइश।

पत्रों पर आधारित फरमाइशी फिल्म संगीत के कार्यक्रम आपकी फरमाइश में आप सभी सुनने वालों का स्वागत है। आप सभी को किरण का प्यार भरा नमस्कार। श्रोताओं, कार्यक्रम की शुरुआत करेंगे बेटा फिल्म के गीत के साथ। आवाजें अनुराधा पौडवाल, उदित नारायण की, पसंद आप सभी की। मोहल्ला हलवाइयाँ, शेरकोट, जिला बिजनौर से मोहम्मद वकार फरीदी, मोहम्मद इकबाल फरीदी, सितारा बेगम, नसरीन परवीन, रोजी परवीन, बिट्टू भैया, सासदारानी, हिना कौसर। छत्रपति संभाजी नगर से राजेश साबले पाटिल, राजदीप राजेश, राशि राजेश, शीतल राजेश। डब्वाली हरियाणा से जेके बकौलिया, सुनीता बकौलिया, संजय अनिल, मीनू बकौलिया। परिमहल कासगंज से आबाद खान, नबील खान, आरफा खान, इल्मा खान, असलम शैफी। मीरा सराय बदायूं से आफरीन खान और जमीर खान। आप सभी श्रोताओं की पसंद पर आइए सुनते हैं बेटा फिल्म से ये गीत।

बेटा फिल्म से गीत आपने सुना। अगला गीत आपकी नज़र कर रहे हैं मरते दम तक फिल्म से। इस गीत को सुनना चाहा है डोंगरगांव जिला राजनांदगांव छत्तीसगढ़ से राष्ट्रपाल गजभिये, राधिका गजभिये, अनुष्का और तन्मय गजभिये। सुंदरखेड़ राजमाता नगर बुलढाणा महाराष्ट्र से नरेंद्र नरवाणे, ज्योति नरवाणे, आकांक्षा नरवाणे, आकाश कुमार। राजनगर कांति निकेतन से कुशेश्वर प्रसाद गुप्ता, रेणु मिश्रा, गोल्डी रुद्र गुप्ता, सन्नी कुमार, पंकज लाल दास। राजनगर गांधी चौक से रानी गुप्ता, सोनाली गुप्ता, संगीता गुप्ता, मेनका गुप्ता, पलक पंखुरी, माधवी साध्वी, हैप्पी रिद्धि, गुनगुन चुलबुल, रेणु ज्योति, शालू दीपशिखा और अर्चना। चकला बाजार समाना से पप्पू राजा खुशदिल, संगीता जिंदल, हसमुख जिंदल। और इसी गीत के लिए खत भेजा है आदर्श गांव बलियाली जिला भिवानी हरियाणा से दर्शन लाल बंसल, सुदेश रानी बंसल, प्रवीण कुमार बंसल, ममता रानी बंसल, कमल कुमार बंसल और गर्विश तमन्ना बंसल ने। तो आप सभी श्रोताओं की पसंद पर आइए सुनते हैं मरते दम तक फिल्म से ये गीत, आवाज़ें मोहम्मद अजीज़ और अनुराधा पौडवाल की।

0: तेरी मेहरबानियाँ फिल्म से गीत आपने सुना। इस गीत को सुनना चाहा था धामनी मनोरा से तुलसीराम डेरे, मायावती डेरे, संदेश आदेश डेरे, किरण डेरे, प्रज्वल डेरे, दादुल्या डेरे, सोमठाणा मनोरा से डॉक्टर विशाल कवाणी, तुलसीराम, ललिता, पायल, गांधी चौक रोपड़ पंजाब से हरदेव मीका, बलविंदर बिरक, जयतक बिरक, मीका बिरक, गांव कैरो जिला तरन तारण पंजाब से गुरदर्शन लाल चलोत्रा, सुनीता, शम्मी, रजनी, आकाशदीप, अनहद, गुरशबद। और इस गीत के लिए खत भेजा है मुक्तसर से बाबू सिंह धीमान, बलजिंदर कौर धीमान, रवनीत और नीतू ने। आकाशवाणी रोहतक से आप सुन रहे हैं कार्यक्रम आपकी फरमाइश।
1: जब व्यापार के प्रचार की हो बात तो अपनाएं आकाशवाणी का साथ। हर दिल, हर घर और हर जन, हर वर्ग को जोड़ने का है साधन। विश्वसनीय, असरदार और हम सब का हमसफर आकाशवाणी रोहतक है सदा तत्पर। हमारी आवाज आपका प्रचार, हो जाएं समृद्ध होने को तैयार। अपने ब्रांड को विज्ञापन के जरिए जन जन पहुंचाने के लिए आज ही संपर्क करें आकाशवाणी रोहतक।

कुमार सानू और अलका याग्निक की आवाज़ों में मैं खिलाड़ी तू अनाड़ी फिल्म का गीत आपने सुना। इस गीत को सुनना चाहा था बेरड़ी से हुकुम करमरकर, सुनीता करमरकर, हार्दिक करमरकर, प्राची करमरकर, तनु करमरकर, कनेरा मोहल्ला पटियाला से मुकेश बत्ता, नीलम बत्ता, नितिन, पलक, करण, गीतू, निहारिका, हार्दिक और वंश बत्ता, गोला बाजार बक्सर से श्रद्धानंद आर्य, अभ्यनंद आर्य, परमानंद आर्य, पंकज, प्रमोद, रोहित, मोहित, जटगांव सोमनाथ, जिला जालना से नामदेव भूतेकर, अभिषेक भूतेकर, गणेश भूतेकर, कार्तिक भूतेकर, अश्विन भूतेकर, जटगांव से वैष्णवी जगदावठी, हर्सुल सावंगी, औरंगाबाद से वैभव गौरव लोखंडे, भावसिंहपुरा औरंगाबाद से मेघराज युवराज कोलते और रिधोरा देवी। अगले गीत के लिए खत भेजा है शोभापुर मेरठ कैंट से दिग्दर्शन और कविता ने, गंज डुंडवारा उत्तर प्रदेश से मास्टर खिल्लू परवेज, इमरान नाज, नवाजिश शेख, दानिश शेख, अमन आफरीदी, जिला खरगोन सनावत उत्तर प्रदेश से इस गीत की फरमाइश की है अशोक वर्मा, अर्चना वर्मा, अनुज वर्मा, आयुषी वर्मा, रमेश चंद्र वर्मा, शेख मूषा, राजकुमार बोडाना, आदलपुरा गोगांव से संजय बामनिया, माया काना और कृष्णा। तो आप सभी श्रोताओं की पसंद पर दिलवाले फिल्म का ये गीत।

0: जब व्यापार के प्रचार की हो बात तो अपनाएं आकाशवाणी का साथ। हर दिल, हर घर और हर जन, हर वर्ग को जोड़ने का है साधन। विश्वसनीय, असरदार और हम सब का हमसफर आकाशवाणी रोहतक है सदा तत्पर। हमारी आवाज आपका प्रचार, हो जाएं समृद्ध होने को तैयार। अपने ब्रांड को विज्ञापन के जरिए जन जन पहुंचाने के लिए आज ही संपर्क करें आकाशवाणी रोहतक।
1: बदलो बदलो, आदत बदलो।
2: मशीन में कपड़े डालने से पहले चेक नहीं किया था क्या?
1: बदलो बदलो, आदत बदलो। अब नजदीकी बैंक जाकर फटे पुराने नोट्स बदलिए। अगर बैंक मना करे तो RBI के ओम्बुड्समैन से शिकायत करें।

कयामत फिल्म से गीत आपने सुना। इस गीत को सुनना चाहा था बठिंडा रोड डबवाले से राजेंद्र नारंग, अंजू नारंग, मोहित नारंग। अलिका डबवाली से बसंत सिंह चंद, राजकुमार, सुनीता, कुलदीप गांधी। जनता कॉलोनी रोहतक से सुरेंद्र कुमार जैन। महाराष्ट्र से बाबा साहेब वाडोदे, मीनाक्षी चरपे, रजनी कानेरे। पुणे से पंकज वाडोदे, आर्या और प्रियंका। छत्तीसगढ़ भाटापारा दतरंगी से द्वारिका प्रसाद वर्मा, किशोर कुमार वर्मा, दीपक कुमार वर्मा, जावेंद्र कुमार वर्मा। और चंडीगढ़ से सतीश अनेजा, बिमला अनेजा ने। अगला गीत आपकी नज़र कर रहे हैं कुमार सानू, अलका याग्निक की आवाज़ों में प्यार प्यार फिल्म से। इस गीत के लिए खत भेजने वाले श्रोता हैं मॉडल टाउन करनाल से नरेंद्र तनेजा, सुधीर नूतन, जग्गी दुआ, संदीप बुगलानी, किरण ठाकुर, सुनीता जैन, सुनीता शर्मा, इसप्रीत शर्मा। गांव नथाना पंजाब से हरजिंदर छिंदा, जसवीर रेखा, गगन सोनी, सीता और गीता। दौलताबाद मुरादाबाद से जाफर हुसैन, नईमा बेगम, कासिम अली, नदीम अली, जुनैद अब्बासी। महाराष्ट्र हिंगोली से शाहजी बोड़खे, नंदा बोड़खे, हनुमान बोड़खे, उत्तम जमधाड़े, स्वराज जमधाड़े। और प्रोमिलागंज आलोट जिला रतलाम मध्य प्रदेश से बलवंत कुमार वर्मा, राजूबाई, माया वर्मा, शोभा वर्मा, राहुल, ज्योति, अतुल, पायल वर्मा, प्रियांश वर्मा और ऋषि वर्मा। आप सभी श्रोताओं की पसंद पर आइए सुनते हैं प्यार प्यार फिल्म का ये गीत।

प्यार प्यार फिल्म से गीत आपने सुना। अगला गीत आपको सुनवा रहे हैं तेजाब फिल्म से। इस गीत को सुनना चाहा है जतुका किशनपुर से आलम दिल का शवाना नाज, रजवान राही, इमरान राजा, आलम शेख, शवाना आलम, चांदनी नाज, सिराजपुर गणेशपुर से हिना कौसर, वकील राही, फिरोज आलम, नाज प्रवीण, जिला नांदेड़ से प्रभाकर जोंदवठे, आरती जोंदवठे, मेहरनगर उमरखेड़ महाराष्ट्र से अभिजीत गवहानकर, सरिता गवहानकर, एकांश गवहानकर, बदलापुर मुंबई से सिद्धांत गवहानकर, प्रणीता गवहानकर, आकार हाइट्स बहादुरा नागपुर से वैशाली, शैलेश गवहानकर, श्वेता सुमित गवहानकर, ध्वनि गवहानकर, आज़ाद नगर लक्सर हरिद्वार से ताज मोहम्मद अंसारी, गुलाब साबिर राही, मेहराज जहां, लक्कड़ बाजार खंडवा से मोहम्मद रफीक पवार, मोहम्मद साकीब पवार, मोहम्मद हसनैन पवार, बाजार चौक गांव दीवाल से शंकर लाल गंगराड़े, वनीता गंगराड़े, छोटू, पूजा, रोशनी, अजय, वामिका गंगराड़े, गांव छेंगा से जिला खंडवा से अशोक कुमार वाघे, वंदना वाघे, भूपेंद्र वाघे, झवर वाघे, तनुश्री, आरोही और काना वाघे, खुर्जा उत्तर प्रदेश से इस गीत को सुनना चाहा है तिलक राज अरोड़ा, प्रकाश अरोड़ा, चंदन अरोड़ा, अंकुश अरोड़ा, और केरला से सागर और आम्रपाली, पद्मा टॉकीज नेपा नगर मध्य प्रदेश से सुदर्शन शाह, पल्लवी शाह, प्रखर शाह, कुशल शाह, नीति शाह, सुरभि शाह, आश्विन शाह, मंगला बैन शाह, राजेंद्र जी शाह, और मालियान सरगना मेरठ से अनिल जैन, संयम जैन, मुस्कान जैन और जीव्यम जैन ने। तो आप सभी श्रोताओं की पसंद पर आइए सुनते हैं तेजाब फिल्म से ये गीत।

0: किसी का इंतजार।
1: कौन है वो?
0: वो जिससे मैं करती हूँ प्यार।

कॉलोनी रोहतक से इसकी सुनना चाहा था महेंद्र शाह, हरेंद्र शाह, जितेंद्र शाह और मानसी शाह ने। नया पारा बिराई से बसंत कुमार सूर्यवंशी, सरोज इसराज, चंद्रकांत प्राची और पीयूषी सूर्यवंशी ने।

0: अभी आप सुन रहे थे पत्रों पर आधारित कार्यक्रम आपकी फरमाइश। आकाशवाणी का ये रोहतक केंद्र है। मीडियम वेव 262.47 मीटर यानी 1143 किलो हर्ट्स पर। सुबह के 10 बजने को हैं अब समाचार प्रसारित होंगे, पहले हिंदी में उसके तुरंत बाद अंग्रेजी में। समाचार हम रिले करेंगे आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से।
1: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं मनोज। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कल रात गोथेनबर्ग में स्वीडन के प्रधानमंत्री उल्फ क्रिस्टर्सन से बातचीत की। श्री मोदी 2 दिन के स्वीडन दौरे पर कल गोथेनबर्ग पहुंचे। प्रधानमंत्री मोदी को दोनों देशों के बीच आपसी संबंधों में असाधारण योगदान और दूरदर्शी नेतृत्व के लिए स्वीडन के सर्वोच्च सम्मान रॉयल ऑर्डर ऑफ द पोलर स्टार डिग्री कमांडर ग्रैंड क्रॉस से सम्मानित किया गया। ये पुरस्कार किसी राष्ट्राध्यक्ष को दिया जाने वाला सर्वोच्च सम्मान है। ये प्रधानमंत्री मोदी का 31वां अंतर्राष्ट्रीय सम्मान है। प्रतिनिधि मंडल स्तर की वार्ता के दौरान दोनों नेताओं ने भारत स्वीडन संबंधों के सभी पहलुओं की समीक्षा की। इस दौरान द्विपक्षीय संबंधों को रणनीतिक साझेदारी तक बढ़ाने पर सहमति व्यक्त की गई। प्रधानमंत्री क्रिस्टर्सन ने डिजिटल परिवर्तन और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के क्षेत्र में भारत की प्रगति की प्रशंसा की। गोथेनबर्ग पहुंचने के तुरंत बाद श्री मोदी ने प्रवासी भारतीय समुदाय से मुलाकात की। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 5 देशों की यात्रा के चौथे चरण में आज नॉर्वे जाएंगे। श्री मोदी 3रे भारत नॉर्डिक शिखर सम्मेलन में शामिल होंगे और द्विपक्षीय बैठकें करेंगे। ये श्री मोदी की नॉर्वे की पहली यात्रा होगी। हमारे संवाददाता ने बताया है कि किसी भारतीय प्रधानमंत्री की 43 वर्ष बाद नॉर्वे की ये पहली यात्रा है।
2: प्रधानमंत्री मोदी सम्राट हेराल्ड पंचम और महारानी सोनिया से मिलेंगे और प्रधानमंत्री जोनास गहर स्टोर के साथ बातचीत करेंगे। प्रधानमंत्री मोदी नॉर्वे के प्रधानमंत्री के साथ भारत नॉर्वे व्यापार और अनुसंधान शिखर सम्मेलन को भी संबोधित करेंगे। यह यात्रा भारत नॉर्वे संबंधों में हुई प्रगति की समीक्षा करने और उन्हें मजबूत बनाने के तरीकों को खोजने का अवसर प्रदान करेगी। इसमें व्यापार और निवेश पर विशेष ध्यान दिया जाएगा। 3रा भारत नॉर्डिक शिखर सम्मेलन कल होगा। इस सम्मेलन में श्री मोदी के साथ नॉर्वे, डेनमार्क, फिनलैंड, आइसलैंड और स्वीडन के प्रधानमंत्री शामिल होंगे। साक्षी सिंह की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से मैं मुकेश कुमार।
1: विदेश मंत्रालय ने कहा है कि स्वीडन में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुलाकात करने वाले उद्योगपतियों और मुख्य कार्यकारी अधिकारियों ने भारत में गहरी रुचि दिखाई है।

0: यूरोपीय उद्योगपतियों के गोलमेज सम्मेलन के बाद विदेश मंत्रालय के पश्चिमी मामलों के सचिव सीवी जॉर्ज ने कहा कि मुख्य कार्यकारी अधिकारियों और वरिष्ठ उद्योगपतियों ने हाल के वर्षों में भारत में हुए महत्वपूर्ण परिवर्तनों का उल्लेख किया। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह आज से वियतनाम और दक्षिण कोरिया के दो देशों के दौरे पर रहेंगे। सोशल मीडिया पोस्ट में श्री राजनाथ सिंह ने कहा कि ये दौरा दोनों देशों के साथ भारत मित्रता के दायरे को और बढ़ाएगा। उन्होंने कहा कि इस दौरे का उद्देश्य रणनीतिक सैन्य सहयोग को बढ़ाना और रक्षा औद्योगिक साझेदारी को मजबूत करना है। केंद्रीय स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री जगत प्रकाश नड्डा 79वें विश्व स्वास्थ्य सम्मेलन में भाग लेने के लिए स्विट्जरलैंड पहुंच गए हैं। सम्मेलन 18 से 23 मई तक चलेगा। इस वर्ष सम्मेलन का विषय है वैश्विक स्वास्थ्य को नया स्वरूप देना, साझा जिम्मेदारी। श्री नड्डा ने सोशल मीडिया पोस्ट में कहा कि ये सम्मेलन वैश्विक स्वास्थ्य चुनौतियों से निपटने में सामूहिक प्रयासों के महत्व को दर्शाता है। कांग्रेस नेता वीडी सतीशन आज केरलम के मुख्यमंत्री पद की शपथ लेंगे। श्री सतीशन ने कल 21 सदस्यीय यूडीएफ मंत्रिमंडल की घोषणा की। शपथ लेने वाले 21 मंत्रियों में सतीशन सहित 14 विधायक पहली बार मंत्री बन रहे हैं। राज्यपाल राजेंद्र अर्लेकर को मंत्रियों की सूची सौंपने के बाद श्री सतीशन ने कहा कि यूडीएफ मंत्रिमंडल के सभी सदस्य एक साथ शपथ लेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और गृह मंत्री अमित शाह ने पूर्व प्रधानमंत्री एचडी देवेगौड़ा को जन्मदिन की बधाई दी है। सोशल मीडिया पोस्ट में प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि एचडी देवेगौड़ा ने अपने लंबे सार्वजनिक जीवन के दौरान देश के लिए बेहतरीन योगदान दिया है। वहीं गृह मंत्री अमित शाह ने एचडी देवेगौड़ा को धरती का सपूत बताया। श्री शाह ने कहा कि किसानों और ग्रामीण भारत के लिए उनके आजीवन समर्पण ने देश पर अमिट छाप छोड़ी है। भारत ने गांधीनगर में एशियाई भारोत्तोलन चैंपियनशिप 2026 में 1 रजत और 9 कांस्य पदक सहित कुल 10 पदक जीते हैं। जियांगशान में छठे संस्करण की तुलना में भारत की ये एक बड़ी उपलब्धि है। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
1: This is Akashvani, the news read by Nina Rakel. Prime Minister Narendra Modi held talks with his Swedish counterpart Ulf Kristersson in Gothenburg last night. Prime Minister Modi was awarded Sweden's highest honour, the Royal Order of the Polar Star, Degree Commander Grand Cross, in recognition of his exceptional contributions to bilateral ties and his visionary leadership. The award is the highest distinction that can be given to a head of government. This is Prime Minister Modi's 31st international honour. During the delegation-level talks, the two leaders reviewed the full spectrum of India-Sweden relations and agreed to elevate the bilateral relationship to a strategic partnership, marking a major milestone in the relationship. The two leaders also agreed to identify new opportunities in the spirit of the India-EU strategic partnership and recently concluded the India-EU FTA for the benefit of their people. Prime Minister Modi has invited Swedish companies to enhance their presence in India under initiatives such as Make in India, National Green Hydrogen Mission and National Critical Mineral Mission during an interaction with select Swedish CEOs in Gothenburg. Mr. Modi mentioned about strong domestic demand, digital public infrastructure, manufacturing expansion and next generation infrastructure development in India.
2: Vodafone, एरिक्सन, नोकिया, ओरांज जैसी कंपनियों का भारत में विशाल अनुभव है। भारत 5G से 6G ट्रांजेक्शन, AI एनेबल्ड नेटवर्क्स, सिक्योर कनेक्टिविटी और डिजिटल इंक्लूजन में बड़ा पार्टनर बन सकता है।
1: The Ministry of External Affairs has said that business leaders and CEOs who met Prime Minister Narendra Modi in Sweden expressed strong interest in India and appreciated the country's transformation driven by sustained economic reforms over the past several years. Addressing reporters after the European Roundtable Industry Meeting, MEA Secretary Wes Sibbe-George said that CEOs and senior industry leaders highlighted the

मीडियम वेव 262.66 मीटर यानी 1143 किलोहर्ट्ज़ पर डीटीएच और न्यूज़ ओन एआईआर पर यह आकाशवाणी का रोहतक केंद्र है। दिन के 12:30 और 15 सेकंड हुए हैं। हमारी दूसरी सभा के प्रसारण अब शुरू होते हैं। आरंभ कर रहे हैं प्रायोजित कार्यक्रम से।

0: दंग।
1: सीआईईटी प्रस्तुत करता है
0: उमंग उमंग उमंग उमंग।
2: सभी श्रोताओं को विमलेश का नमस्कार और बहुत बहुत स्वागत है उमंग कार्यक्रम में।
1: और आपके मित्र अजीत का भी नमस्कार और जोहार।
2: बिना संघर्ष के सफलता बिना नमक के भोजन की तरह होती है। इससे हमारी भूख तो मिट जाएगी लेकिन ये स्वादिष्ट नहीं लगेगी।
1: श्रोताओं, ये सुंदर विचार हमें भेजा था बिहार से वसीम अकरम और गुड़िया खातून जी ने। बिल्कुल सच कहा है, बिना श्रम के सफलता का सच्चा आनंद नहीं मिलता
2: जी।
1: आप दोनों का धन्यवाद। और आइए सुनते हैं श्रोताओं के नाम और उनके संदेश।
2: छत्तीसगढ़ से देवशंकर तामुरिया, अजय देव, तुषार देव तामुरिया, डॉली बेबी, पूजा, पुष्कर लेहान, जिज्ञासा, विराट, तेजस्वी और गौरव तामुरिया।
1: और भटीपुरा महुआ उत्तर प्रदेश से कृष्ण कुमार गुप्ता, कमला देवी गुप्ता, सुधा, कविता, पंकज, आयुषी और मीहू का संदेश हमें मिला है। लिखते हैं,
2: गुरुवार 23 अप्रैल को सुविचार को स्पष्ट रूप से समझाने के लिए आपने जानकारी देते हुए एक दोहा का उदाहरण दिया। इस दोहे में कबीरदास जी विश्वास को न तोड़ने की सीख देते हैं। दोहा इस तरह से था, रहिमन धागा प्रेम का मत तोड़ो चटकाए, टूटे से फिर न जुरे, जुरे गांठ परे जाए।
1: आपने आगे लिखा है, आपके द्वारा इस दोहे के रचनाकार कवि का नाम कबीरदास बताया गया। वास्तव में इस दोहे को रहीम ने लिखा है, न कि कबीरदास जी ने। धन्यवाद और आभार।
2: आपका भी बहुत बहुत आभार। कृष्ण कुमार जी, आपको भी हमारा विशेष धन्यवाद। आप हमारे कार्यक्रमों को बड़ी बारीकी से सुनते हैं और उन पर प्रतिक्रिया भी देते हैं।
1: तो हम कहना चाहते हैं कि आपकी प्रतिक्रियाओं का स्वागत है हमेशा। आपको बहुत बहुत धन्यवाद। कृपया संदेश भेजते रहिए। अगला संदेश सुनते हैं जो हमें मिला है।
2: गांव गणेश धाम परसुली पोस्ट खेरता बाजार जिला बालोद छत्तीसगढ़ से जितेंद्र दास मानिकपुरी, मिलऊदास, जयदास, देवेश दास, धनवंतीन बाई और मोतिम बाई मानिकपुरी।
1: और करसोग जिला मंडी हिमाचल प्रदेश से योगेश ठाकुर।
2: छोटी बलिया मुंबई से आमना अंसारी, जुबैदा और नेहा अंसारी।
1: और बेगूसराय बिहार से हमें संदेश मिला है इकबाल मोगा, देव, अजय मोगा और अहमद मोगा का। लिखते हैं,
2: आज की प्रस्तुति कल्पना चावला जो सितारों में खो गई हमें बहुत अच्छी लगी। आपको साधुवाद।
1: और आप सबको हमारा हार्दिक आभार। आइए बारी है पिछले सप्ताह पूछे गए प्रश्नों के उत्तर जानने की। तो हमारा पहला प्रश्न था, आकार में समुद्र के सबसे बड़े जीव का नाम बताइए।
2: इस प्रश्न का उत्तर है, नीली वेल को आकार में समुद्र का सबसे बड़ा जीव माना जाता है। इसका वजन लगभग 100 से 150 टन का होता है, यानी किलोग्राम के अनुसार ये 1 लाख से 1.5 लाख किलोग्राम की होती है
1: जी। और अब सुनिए हमारा दूसरा प्रश्न। हमारा दूसरा प्रश्न था, थर्मल लैग किसे कहते हैं।
2: इसका उत्तर जान लेते हैं साथियों। गर्मियों में सूर्य की किरणें जब सीधी पड़ती हैं तो भूमि गर्म हो जाती है। सुबह से सूर्य के ताप के कारण धरती गर्म होती रहती है और 12 बजे सूर्य की किरणें धरातल पर सीधी पड़ती हैं
1: जी।
2: बाद में धीरे धीरे तिरछी होने लगती हैं, इसीलिए उनका ताप कम होने लगता है। लेकिन इस दौरान यानी 12 बजे के बाद भूमि अपनी गर्मी धीरे धीरे छोड़ती है, जिसके कारण गर्मी और अधिक बढ़ जाती है, जिसे थर्मल लैग कहते हैं।
1: और हमारा तीसरा प्रश्न था कि प्रकृति को हमारे भले की चिंता रहती है, ऐसा क्यों कहा गया है।
2: इसका उत्तर है साथियों, प्रकृति जलवायु के अनुसार हर मौसम में वही उपज देती है जिसकी हमारे शरीर को आवश्यकता होती है। इसके अनेक उदाहरण हैं, एक उदाहरण ले लेते हैं। जैसे कि गर्मी के मौसम में जो फल आते हैं उनमें पानी की मात्रा बहुत अधिक होती है ताकि हमें गर्मी के मौसम में इसका लाभ मिले।
1: और हमारा अगला प्रश्न श्रोताओ प्राथमिक उपचार से संबंधित था। हमारा प्रश्न था कि लू से पीड़ित व्यक्ति के कपड़े और बेल्ट ढीले करने से उसे किस प्रकार की राहत मिलती है।
2: तो साथियों इसका उत्तर भी जान लेते हैं। लू से पीड़ित व्यक्ति के कपड़े और बेल्ट ढीली करने से सांस लेने में आसानी होती है और शरीर का रक्त संचार आसानी से हो पाता है।
1: और अब हमारा पूछा गया अंतिम प्रश्न। हमारा प्रश्न था, बच्चे अपनी गर्मियों की छुट्टी में और क्या क्या कर सकते हैं।
2: इसके बहुत से उत्तर हो सकते हैं लेकिन हम कहेंगे, विद्यार्थी कोई भी शास्त्रीय नृत्य या वाद्य यंत्र सीख सकते हैं, जैसे हारमोनियम, तबला या बांसुरी।
1: जी विमलेश जी, ये सचमुच एक बड़ी अच्छी सलाह है। तो श्रोताओ अब सुनते हैं आज का प्रश्न। हमारा आज का प्रश्न है, पीसा की मीनार कहाँ है और ये तिरछी क्यों है। प्रश्न एक बार फिर से सुन लीजिए,
2: पीसा की मीनार कहाँ है और ये तिरछी क्यों है।
1: 8800440559 हमारा IVRS नंबर है और audio@cit.nic.in है हमारे ईमेल का पता। आप इन पतों पर अपने संदेश और प्रश्नों के उत्तर हमें भेज सकते हैं। और अब बारी है आज के शैक्षिक कार्यक्रमों की। तो आज के कार्यक्रमों की कड़ी में सबसे पहले सुनते हैं कार्यक्रम शो ऑफ क्लाउड्स।
2: कक्षा 2 की अंग्रेजी की पाठ्य पुस्तक की एक कविता पर आधारित ये कार्यक्रम बच्चों को प्रोत्साहित करता है कि वे प्रकृति का ध्यान से अवलोकन करें और उसकी सुंदरता का अनुभव करें। कार्यक्रम एक सुंदर गीत के द्वारा प्रस्तुत किया गया है जिसमें एक बच्ची आकाश में बादलों को ध्यान से देखकर उनके विभिन्न आकारों में पशु पक्षियों की छवि की कल्पना करती है।
3: Hello, children. How are you?
4: We are fine, sir.
5: I am fine.
6: I am good, sir.
3: Fine. Good. Okay, so tell me, what do you like most?
5: I like playing, sir.
7: I like painting, sir.
3: Very good. Anyone else?
8: Sir, I like singing.
9: I like playing with my pets.
3: Oh, that's great. Now tell me, do you like looking at the beautiful flowers in the garden?
4: Yes, sir.
7: We like.
3: Lovely butterflies?
4: Yes, sir.
3: And lovely colorful chirping birds?
4: Yes, sir. We like it.
3: That's very nice, children.
7: Sir, I go to the park with my parents on holidays.
3: Okay. It's always wonderful to see the beautiful nature, isn't it?
4: Yes, sir.
3: The rivers, the mountains, and the green trees.
4: Yes, sir.
3: Okay, so let me tell you the story of a sweet child like you.
4: Like us?
3: Would you like to listen?
4: Yes, sir.
7: We love to listen the story.
3: To know what the child did, you have to listen to a beautiful poem. After listening to the poem, you will know what the child did. Okay?
4: Okay, sir.
3: Very good. Now I am going to read this poem. You have to repeat after me. Okay?
4: Okay, sir. We love to recite it.
3: As I lie on my back, looking up at the sky.
4: Looking up at the sky.
3: I see a big white bear.
4: I see a big white bear.
3: Looking down at me.
4: Looking down at me.
3: As I lie on my back.
4: As I lie on my back.
3: Looking up at the sky.
4: Looking up at the sky.
3: I see a ship sailing. On a white sea.
4: On a white sea.
3: As I lie on my back.
4: As I lie on my back.
3: Looking up at the sky.
4: Looking up at the sky.
3: I see an elephant.
4: I see an elephant.
3: Waving its trunk at me.
4: Waving its trunk at me.
3: As I lie on my back.

0: Did you like the song?
1: Yes, sir, it was lovely.
0: So, children, here is something to do for you, okay?
1: Okay, sir.
0: Sit outside your home or go to any park and see the clouds go by. And tell your friends what you have observed.
1: Okay, sir, it will be so lovely.
2: It will be good.
0: Yes, and one thing more. Notice the colors of the clouds and you will find that the clouds also have different colors from time to time.
1: Yes, sir.
3: I have seen rainbow.
4: It has seven colors.
0: So, children, whenever you see the clouds, they have different
1: shapes.
0: Yes, shapes. And they have different
1: colors.
0: Very nice.
5: Show of Clouds. You were just listening to this program. Program Coordinator, Professor Rajendra Pal. Technical Coordinator, Bati Langlingdo. Child Singer, Angel. Child Artists, Soham, Vedika, Vanya, Navya, Riddhi and Lavish. Sound Recordist, Mayank Kumar. Assistance in Production, Kusum Lata. Directed and produced by Ajit Horo. This program was brought to you by CIET NCERT, New Delhi, India. अभी आपने सुना कार्यक्रम शो ऑफ क्लाउड्स और आइए अब सुनते हैं अगला कार्यक्रम. अगले कार्यक्रम का शीर्षक है तुलसी गौड़ा.
6: ये कार्यक्रम जंगल की एनसाइक्लोपीडिया कही जाने वाली महान आदिवासी पर्यावरण विशेषज्ञ तुलसी गौड़ा के जीवन, उनके पर्यावरण पर शोधों और वृक्षों को बचाने के उनके प्रेरणादायक अभियान की जानकारी देता है. विशेष रूप से मातृ वृक्षों पर उनकी खोज के बारे में विस्तार से जानकारी दी गई है.
7: नंगे पांव, धोती नुमा पारंपरिक कपड़े, आदिवासी गहने पहनी
8: तुलसी गौड़ा, 72-year-old ट्राइबल वुमन फ्रॉम कर्नाटका.
9: राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद तंको पद्मश्री सम्मान रे सम्मानित करिछंती.
10: इनसाइक्लोपीडिया ऑफ द फॉरेस्ट शी इज कॉल्ड इन कर्नाटका तुलसी गौड़ा.
7: जंगलों की इनसाइक्लोपीडिया कही जाने वाली तुलसी गौड़ा
11: को देश के चौथे सबसे बड़े नागरिक सम्मान पद्मश्री से नवाजा गया है.
12: ये आकाशवाणी है. प्रस्तुत हैं आज के मुख्य समाचार. आज राष्ट्रपति भवन की

0: एक भव्य समारोह में श्रीमती तुलसी गौड़ा जी को महामहिम राष्ट्रपति श्री रामनाथ कोविंद द्वारा सन 2020 के पद्मश्री पुरस्कार से सम्मानित किया गया।
1: श्रीमती तुलसी गौड़ा, समाज सेवा, पर्यावरण।
0: यह सम्मान पर्यावरण संरक्षण में उनके द्वारा दिए गए उल्लेखनीय योगदान के लिए दिया गया है। देश भर में प्रसन्नता की लहर।
2: नवंबर 2020 को भारत सरकार ने श्रीमती तुलसी गौड़ा जी को पद्मश्री पुरस्कार से सम्मानित किया, जो भारत के नागरिकों को दिया जाने वाला चौथा सर्वोच्च पुरस्कार है। राष्ट्रपति भवन के रेड कार्पेट पर नंगे पांव चलते हुए श्रीमती तुलसी गौड़ा पद्मश्री सम्मान लेने जब महामहिम राष्ट्रपति के पास पहुंची, तो सादगी और विनम्रता की प्रतिमूर्ति इस आदिवासी महिला को देखकर सभागार देर तक तालियों की गड़गड़ाहट से गूंजता रहा।

0: उत्तरी कर्नाटक का क्षेत्र पर्वतों और सघन जंगलों से घिरा हुआ है। यहाँ की प्राकृतिक सुंदरता देखते ही बनती है। पहाड़ों से उछलती कूदती नदियां जब घाटियों और समतल मैदानों से कल कल करती हुई गुजरती हैं, तो एक अनोखा नजारा पेश करती हैं।
1: इस सुरम्य वातावरण को और भी संगीतमय बना देता है पक्षियों का कलरव। इस क्षेत्र में अनेक जनजातियां रहती हैं। उनके जनजातीय संगीत और नृत्य तो मानो संपूर्ण सौंदर्य में चार चांद लगा देते हैं। ये जनजातियां मुख्य रूप से खेतीबाड़ी और पशुपालन पर निर्भर हैं। यहाँ के आदिवासी विशेष रूप से नर्सरियों में बागबानी करके औषधीय पौधों को उगाने का कार्य करते हैं।
0: समृद्ध आदिवासी संस्कृति और प्रचुर प्राकृतिक सौंदर्य के बीच तुलसी गौड़ा का जन्म 1944 में होनाली गांव के हलक्की आदिवासी परिवार में हुआ था। पिता की मृत्यु के बाद उन्होंने बहुत ही छोटी उम्र से नर्सरी में काम करना शुरू किया। निर्धनता के कारण कभी वो स्कूल नहीं जा पाई।
1: बड़ी हो जाने पर तुलसी ने अपनी माँ और बहनों के साथ गांव की ही एक सरकारी नर्सरी में दैनिक वेतन भोगी के रूप में काम करना शुरू किया। पौधों से उनका बहुत लगाव था। तुलसी की कार्य निष्ठा और लगन को देखते हुए उन्हें पौधों की देखरेख का विशेष काम सौंपा गया।
0: एक बार की बात है, उनके गांव की नर्सरी में वन विभाग द्वारा कुछ पौधे लाए गए। वो औषधीय पौधे थे और बहुत महंगे भी। वन विभाग की योजना थी बड़े पैमाने पर इन औषधीय पौधों की खेती करने की। पौधे रोप दिए गए, लेकिन एक दो दिनों के बाद वो मुरझाने लगे। किसी को समझ में नहीं आ रहा था कि क्या करें। तो तुलसी की कार्य निष्ठा और लगन को देखते हुए उन्हें उन पौधों की देखरेख का विशेष काम सौंपा गया।
1: कुछ ही दिनों में उन पौधों में जान सी आ गई और वो खूब हरे भरे होकर पनपने लगे। इस घटना से तुलसी का नाम स्थानीय वन विभाग में फैल गया और सबने उनकी भूरी भूरी प्रशंसा की। इस घटना को याद करते हुए वो बताती हैं।
2: उन दिनों में करीब 20 वर्ष की थी। पौधों के बारे में मेरा अनुभव बहुत नहीं था। मुझे उस नर्सरी में बुलाया गया था। वहां जाकर मैंने देखा कि सब कुछ ठीक था। रोज उन्हें पानी 2 बार दिया जाता था और खाद की भी कोई कमी नहीं थी।
3: अच्छा,
2: अक्सर मैंने देखा था कि कई बार ज्यादा पानी देने से कुछ पौधे मर जाते हैं। तो मैंने सोचा कि कहीं ऐसा तो नहीं कि इन पौधों को जरूरत से बहुत ज्यादा पानी मिल रहा है। क्यों ना पानी की मात्रा कम करके देखा जाए।

0: जब ऐसा किया तो दो दिनों में पौधों में कुछ अच्छे बदलाव आए। हाँ
1: ये तो आपने बहुत अच्छी बात बताई तुलसी जी।
0: जी, पौधों के बारे में ये जानना बहुत जरूरी है कि उन्हें कितना पानी दिया जाए
1: और कितना नहीं दिया जाए। हाँ तुलसी जी, ये तो हुई पानी की बात। क्या आपने उन पौधों के बारे में कुछ और भी अनुभव किया था?
0: हाँ हाँ, मैंने एक और बात पर गौर किया था कि कुछ पौधे ऐसे होते हैं कि यदि उन्हें साथ साथ रखा जाए तो वो बहुत अच्छी तरह से बढ़ते हैं।
1: अरे वाह, ये तो बहुत ही सचमुच गौर करने वाली बात है।
0: हाँ, और अगर अलग अलग रखा जाए तो वो उस तरह से नहीं बढ़ पाते। कुछ पौधे तो अकेले लगाए जाने से बढ़ते ही नहीं हैं और फिर धीरे धीरे कमजोर होकर सूख जाते हैं।
1: अच्छा,
0: मुझे लगा कि क्यों ना इन्हें एक दूसरे के आसपास रोप कर देखा जाए। फिर हमने ऐसा ही किया तो पाया कि आश्चर्यजनक रूप से ये पौधे बढ़ने लगे थे। हाँ,
1: अरे ये तो बड़ी ही अद्भुत बात बताई आपने तुलसी जी। हाँ, लेकिन इसके कारण क्या क्या हो सकते हैं?
0: देखो, पहली बात तो ये कि पौधों में भी जीवन होता है।
1: बिल्कुल होता है।
0: और मुझे लगता है कि वे भी दुख सुख अकेलापन का अनुभव कर सकते हैं, इसीलिए यदि उन्हें उचित दूरी पर आसपास रखा जाए तो वे बेहतर ढंग से बढ़ते हैं।
1: ये तो बड़ी ही दिलचस्प बात है तुलसी जी,
0: है ना?
1: जी।
0: और उचित दूरी पर आसपास लगाए जाने से वे एक दूसरे के साथ नमी और पोषण को साझा कर सकते हैं।
1: तुलसी जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। कोई विशेष संदेश देना चाहेंगे?
0: हाँ, बिल्कुल देना चाहूंगी। मेरा कहना है कि देश को बचाने के लिए वन को बचाना होगा। वन बचाओ, देश बचाओ।
2: उन्होंने पेड़ पौधों और जंगल को अपनी जिंदगी में पूरी तरह से शामिल कर लिया था। उनके अंदर पेड़ पौधों की सेवा करने का जज्बा आ गया था। एक बार उन्होंने कहा था,
0: मुझे नहीं मालूम कि जंगल के बारे में मैंने इतना ज्ञान कैसे एकत्रित किया, लेकिन धीरे धीरे मुझे ऐसा लगने लगा जैसे मैं पौधों से, जंगल से बातें कर सकती हूं। मैं जंगल की भाषा बोल सकती हूं।
2: कहते हैं कि वो जहां भी जाती थीं, वहां के सभी पेड़ पौधों के बारे में भली भांति बता सकती थीं। वो विस्तार से चर्चा कर सकती थीं कि किस पौधे को कितना पानी देना है, उन्हें खाद किस मात्रा में देना है और बीजों का संग्रह व भंडारण किस तरह से करना चाहिए।
3: श्रीमती तुलसी गौड़ा जी को जंगल और उसके पौधों के बारे में उनके ज्ञान के कारण पर्यावरणविदों द्वारा जंगल के विश्वकोश और उनकी जनजाति द्वारा वृक्ष देवी और जंगल अम्मा के रूप में जाना जाता है। वो जंगल में हर प्रजाति के पेड़ की माँ या मातृ वृक्ष की पहचान करने की अपनी क्षमता के लिए जानी जाती हैं, चाहे वो कहीं भी हो। किसी भी पेड़ का मात्र एक सूखा पत्ता भी उठाकर वो बता सकती हैं कि इसकी माता पेड़ कहाँ है।
2: आइए जानते हैं कि मातृ वृक्ष या माता पेड़ किसे कहते हैं। नाम से ही विदित होता है कि एक बच्चे को पालने में माता की जो भूमिका होती है, वही भूमिका इन पेड़ों की भी होती है। तो आइए सुने कैसे।
4: तुलसी जी, अक्सर माता पेड़ों या मातृ वृक्षों के बारे में बात की जाती है, तो आपसे ये जानना चाहते हैं कि माता पेड़ों या मातृ वृक्षों को आखिर पहचानते कैसे हैं?
5: बड़ा अच्छा सवाल है। माता पेड़ या मातृ वृक्ष अपने आकारों से पहचाने जाते हैं।
4: अच्छा।
5: ये जंगल के सबसे पुराने, बड़े, लंबे और घने पेड़ होते हैं। और हाँ, पुराने होने की वजह से इनकी जड़ें बहुत गहरी और दूर दूर तक फैली होती हैं।
4: अच्छा।
5: इनकी जड़ों से आसपास के बहुत से छोटे और समान वृक्ष भूमि के अंदर जड़ों से जुड़े होते हैं और मातृ वृक्ष से भोजन लेते हैं।
4: अच्छा, ये तो बड़ी दिलचस्प बात बताई आपने। अच्छा, मैंने तो ये भी सुना है कि मातृ वृक्ष मिट्टी को पकड़ कर रखते हैं, इसके बारे में आपका क्या कहना है?
5: बिल्कुल सही सुना है आपने, मातृ वृक्ष गोंद की तरह मिट्टी को पकड़ कर रखते हैं।
4: अच्छा।
5: और आंधी तूफान के समय दूसरे पेड़ों को गिरने या उखड़ने से बचाते हैं।
4: अरे वाह, ये तो बहुत ही दिलचस्प बात बताई आपने।
5: इतना ही नहीं, यदि कई मातृ वृक्ष आसपास हों तो छोटे पेड़ों के लिए आसपास की नमी को बनाए रखकर प्राकृतिक ग्रीन हाउस बनाते हैं। वे छोटे और युवा पेड़ों को नाइट्रोजन और कार्बन प्रदान करके उन्हें पालते हैं, समझे?
4: जी, ये तो बहुत ही अच्छी जानकारियां आपने दी हैं। और अच्छा, इसके अलावा भी कुछ और बताइए ना मातृ वृक्षों के बारे में।
5: हाँ हाँ, बिल्कुल। देखिए, जड़ें गहरी होने के कारण ये अपनी जड़ों द्वारा आसानी से भूमिगत जल और फॉस्फोरस जैसे मिट्टी के पोषक तत्वों को खींच लेते हैं और उन पेड़ों को देते हैं जिनकी जड़ें अभी बहुत गहरी नहीं है, ठीक है ना?
4: तुलसी जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आपने इतनी दिलचस्प और उपयोगी जानकारियां दी हैं आज, एक बार फिर से बहुत धन्यवाद।
5: आपका भी बहुत धन्यवाद।
2: तुलसी गौड़ा जी को 300 औषधीय पौधे और 1,00,000 से भी अधिक पेड़ लगाने का गौरव प्राप्त है। कहते हैं कि उनके द्वारा लगाया गया एक भी पेड़ सूखा नहीं है। उनके द्वारा लगाए गए औषधीय पौधों के इस्तेमाल से उस क्षेत्र की जनजातियों का बड़ा कल्याण हुआ है।
3: 78 वर्षीय श्रीमती तुलसी गौड़ा ने 60 वर्षों तक कर्नाटक वानिकी विभाग में अपनी सेवाएं दी हैं और अब वो अवकाश प्राप्त जीवन बिता रही हैं। लेकिन आज भी उनकी ऊर्जा कम नहीं हुई है। इन दिनों भी वो अपने गांव की नर्सरी और वानिकी विभाग के दफ्तर में बीजों का संग्रह लेकर पैदल चलती हुई दिखाई देती हैं। किसी ने कहा है, महानतम चीजें हमेशा अति साधारण होती हैं, यानी ग्रेटेस्ट थिंग्स आर ऑलवेज सिंपलेस्ट। तुलसी गौड़ा जी, आपका हार्दिक अभिनंदन।
6: अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम जंगल इंसाइक्लोपीडिया तुलसी गौड़ा। कार्यक्रम समन्वय प्रोफेसर राजेंद्र पाल, तकनीकी समन्वय बटीलैंग लिंगडो, कलाकार अश्विनी वालिया, शिमाइला परवेज, परवेज गौहर, पूनम एस कुदेसिया और अंजलि, आलेख अजीत होरो, निर्माण सहायक कुसुम लता, निर्देशन एवं निर्माण विमलेश चौधरी। प्रिय श्रोता, यदि आप हमारे कार्यक्रमों पर अपनी प्रतिक्रियाएं देना चाहते हैं तो हमारे IVRS नंबर पर हमसे संपर्क कर सकते हैं। हमारा IVRS नंबर है 8800044559। साथ ही आप ईमेल पर भी हमसे संपर्क कर सकते हैं। हमारे ईमेल का पता है audio@ciet.nic.in। यह कार्यक्रम CIET NCERT नई दिल्ली, भारत द्वारा प्रस्तुत किया गया। अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम तुलसी गौड़ा और अब इसी के साथ हमारा आज का उमंग कार्यक्रम यहीं पर समाप्त होता है। तो अपने मित्र अजीत,
7: और विमलेश को उमंग कार्यक्रम की तकनीकी टीम के साथ कल तक के लिए आज्ञा दीजिए। नमस्कार।
8: उमंग उमंग उमंग उमंग।
9: आपने सुना ये प्रायोजित कार्यक्रम आकाशवाणी के रोहतक केंद्र से। दिन का 1 बजने वाला है। थोड़ी ही देर के बाद आप सुनेंगे हिंदी में समाचार। इसके बाद 1:05 पर प्रादेशिक समाचार हम आपको सुनवाएंगे आकाशवाणी के चंडीगढ़ केंद्र से। फिलहाल हिंदी समाचारों का वक्त है, तो चलते हैं आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र।

0: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी नॉर्वे के ओस्लो पहुंच गए हैं। इस दौरे में भारत और नॉर्वे के बीच द्विपक्षीय वार्ता और तीसरा भारत नॉर्डिक शिखर सम्मेलन शामिल है। हमारी संवाददाता ने बताया है कि ये दौरा नॉर्डिक देशों के साथ भारत के संबंधों को गति प्रदान करेगा।
1: आज प्रधानमंत्री नॉर्वे के राजा हेराल्ड पंचम और रानी सोनिया से मुलाकात करेंगे। इसके बाद वे नॉर्वे के प्रधानमंत्री योनास गार स्टोरर के साथ द्विपक्षीय वार्ता करेंगे। वे भारत नॉर्वे व्यापार और अनुसंधान शिखर सम्मेलन को भी संबोधित करेंगे। कल प्रधानमंत्री तीसरे भारत नॉर्डिक शिखर सम्मेलन में भाग लेंगे। वर्तमान में भारत और 5 नॉर्डिक देशों के बीच व्यापार का मूल्य $19 अरब है। व्यापार के प्रमुख क्षेत्रों में नवाचार, रक्षा, आर्कटिक और जनसंपर्क जैसे कई क्षेत्र शामिल हैं। संगीता गोडबोले, आकाशवाणी न्यूज, ओस्लो, नॉर्वे।
0: इससे पहले प्रधानमंत्री ने कहा कि भारत आज निवेश, नवाचार और विनिर्माण के लिए विश्व का सबसे आकर्षक केंद्र बन गया है। श्री मोदी ने स्वीडन की 2 दिन की यात्रा के दौरान गोथेनबर्ग में यूरोपीय उद्योग गोलमेज सम्मेलन को संबोधित करते हुए ये बात कही। उन्होंने कहा कि देश में सभी कंपनियों के लिए अवसर मौजूद हैं। प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि भारत पिछले 12 वर्षों से सुधार, प्रदर्शन और परिवर्तन के मूल मंत्र पर काम कर रहा है। उन्होंने कहा कि भारत की सुधार एक्सप्रेस पूरी गति से चल रही है। श्री मोदी ने स्वीडिश कंपनियों से विनिर्माण, हरित हाइड्रोजन मिशन, स्वच्छ ऊर्जा और अन्य क्षेत्रों में उपस्थिति बढ़ाने का आग्रह किया। यात्रा के दौरान प्रधानमंत्री मोदी को द्विपक्षीय संबंधों में उनके असाधारण योगदान और दूरदर्शी नेतृत्व के लिए स्वीडन के सर्वोच्च सम्मान रॉयल ऑर्डर ऑफ द पोलर स्टार डिग्री कमांडर ग्रैंड क्रॉस से सम्मानित किया गया। श्री मोदी ने सोशल मीडिया पोस्ट में कहा कि स्वीडन की उनकी यात्रा के कई महत्वपूर्ण परिणाम निकले हैं जो द्विपक्षीय संबंधों को एक नई गति प्रदान करेंगे। केरलम के तिरुवनंतपुरम में आज कांग्रेस के वरिष्ठ नेता वीडी सतीशन ने मुख्यमंत्री पद की शपथ ली। राज्यपाल राजेंद्र विश्वनाथ आर्लेकर ने यूडीएफ सरकार के नए मंत्रियों को शपथ दिलाई। नई सरकार में शामिल वरिष्ठ नेताओं में पूर्व प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष रमेश चेन्नीथला, वर्तमान प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष सन्नी जोसेफ, के मुरलीधरन और इंडियन यूनियन मुस्लिम लीग के नेता पी के कुन्हालीकुट्टी शामिल हैं। गृहमंत्री अमित शाह ने आज रायपुर में 112 नंबर वाली आपातकालीन सेवाओं के लिए 400 नए अत्याधुनिक वाहनों को रवाना किया। छत्तीसगढ़ में पहले ये सुविधा 16 जिलों में थी, अब ये 33 जिलों में उपलब्ध है। इस अवसर पर छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय, विधानसभा अध्यक्ष डॉ. रमन सिंह और उप मुख्यमंत्री विजय शर्मा भी उपस्थित थे। कार्यक्रम के बाद गृहमंत्री बस्तर के लिए रवाना हो गए, जहां वे नेतानार गांव में सीआरपीएफ कैंप परिसर में स्थापित जन सुविधा केंद्र का शुभारंभ करेंगे। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह वियतनाम और दक्षिण कोरिया की यात्रा पर रवाना हो गए हैं। सोशल मीडिया पोस्ट में श्री सिंह ने कहा कि वे द्विपक्षीय संबंधों को और विस्तार देने के लिए इन दोनों एशियाई देशों का दौरा करने को लेकर उत्सुक हैं। उन्होंने कहा कि इस दौरे का मुख्य उद्देश्य रणनीतिक सैन्य सहयोग, रक्षा औद्योगिक साझेदारी और समुद्री सहयोग को बढ़ावा देना तथा हिंद प्रशांत क्षेत्र में शांति तथा स्थिरता को प्रोत्साहित करना है। पत्तन पोत परिवहन और जलमार्ग मंत्री सर्बानंद सोनोवाल ने आज अंतर्राष्ट्रीय महिला समुद्री दिवस के अवसर पर महिला नाविकों के अदम्य साहस को नमन किया। एक सोशल मीडिया पोस्ट में श्री सोनोवाल ने कहा कि नीतिगत सुधारों के कारण भारत में महिला नाविकों की संख्या लगातार बढ़ रही है। उत्तर प्रदेश के लखीमपुर खीरी जिले में आज ट्रक और वैन की टक्कर होने से एक सड़क हादसे में 9 लोगों की मौत हो गई। वैन में 2 महिलाओं समेत 10 लोग सवार थे। ये हादसा पीलीभीत बस्ती राजमार्ग पर अदालीसपुर गांव के पास हुआ। प्रधानमंत्री ने इस हादसे में हुई जानमाल की हानि पर शोक व्यक्त किया है। एक सोशल मीडिया पोस्ट में श्री मोदी ने प्रधानमंत्री राष्ट्रीय राहत कोष से प्रत्येक मृतक के परिजन को 2 लाख और घायलों को 50,000 रुपये की अनुग्रह राशि देने की घोषणा की है। घरेलू शेयर बाजार के संवेदी सूचकांक में आज दोपहर के कारोबार में मामूली गिरावट दर्ज की गई। अंतिम समाचार मिलने तक सेंसेक्स 133 अंक की गिरावट के साथ 75,105, निफ्टी 60 अंक लुढ़क कर 23,584 पर था। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
2: नमस्कार, ये आकाशवाणी चंडीगढ़ है। अब आप अमन सैनी से प्रादेशिक समाचार सुनिए। हरियाणा के ऊर्जा परिवहन एवं श्रम मंत्री अनिल विज ने नीट पेपर लीक मामले को लेकर कांग्रेस नेता राहुल गांधी द्वारा केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे की मांग पर तीखी प्रतिक्रिया दी है। उन्होंने कहा कि आजकल बिना सोचे समझे इस्तीफा मांगना आम बात हो गई है। मीडिया कर्मियों से बातचीत में श्री विज ने केंद्रीय शिक्षा मंत्री का बचाव करते हुए कहा कि वे केंद्र सरकार के सबसे सक्षम और मेहनती मंत्रियों में से एक हैं। उन्होंने कहा कि जैसे ही यह घटना सामने आई केंद्र सरकार ने तुरंत कार्रवाई शुरू कर दी। जांच एजेंसियां लगातार कार्रवाई कर रही हैं और दोषियों को गिरफ्तार कर जेल भेजा जा रहा है। उन्होंने कहा कि सरकार इस मामले को लेकर पूरी तरह गंभीर है और किसी भी दोषी को बख्शा नहीं जाएगा। पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान द्वारा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की विदेश यात्राओं पर सवाल उठाने के संबंध में श्री अनिल विज ने कहा कि भगवंत मान को शायद प्रधानमंत्री की विदेश यात्राओं का उद्देश्य समझ नहीं आता। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी देश हित में विदेश यात्राएं करते हैं ताकि भारत के अंतर्राष्ट्रीय संबंध मजबूत हों, व्यापार बढ़े और दुनिया में भारत की स्थिति और सशक्त बने। केंद्रीय ऊर्जा शहरी एवं आवास मंत्री मनोहर लाल ने पानीपत जिले में बेटियों के शैक्षणिक विकास को बढ़ावा देने के उद्देश्य से पानीपत और समालखा में आयोजित समारोह में मुख्य अतिथि के तौर पर शिरकत की। आरएपीजी कॉलेज के समारोह में बतौर मुख्य अतिथि शिरकत करते हुए उन्होंने स्कूली छात्राओं और अभिभावकों को संबोधित किया। उन्होंने कहा कि बेटियों की शिक्षा केवल परिवार नहीं बल्कि पूरे राष्ट्र के भविष्य को मजबूत करती है। समालखा क्षेत्र के वैश्य महाविद्यालय कार्यक्रम में बोलते हुए उन्होंने अपने अनुभव साझा किए। केंद्रीय मंत्री ने पानीपत में साइकिल वितरण समारोह में क्षेत्र की 104 छात्राओं को तथा समालखा क्षेत्र की 144 छात्राओं को साइकिल वितरित किए। कैबिनेट मंत्री ने बताया कि सामाजिक संस्थाओं के सहयोग से 1000 साइकिलों का वितरण करने की योजना बनाई गई है। उन्होंने इस कार्यक्रम में सिग्मा संस्था के अतुलनीय योगदान की प्रशंसा की। हरियाणा के राजस्व एवं शहरी स्थानीय मंत्री विपुल गोयल ने फरीदाबाद के सेक्टर 7 स्थित जन कल्याण मंदिर में करीब 2.25 करोड़ रुपए की लागत से होने वाले विभिन्न विकास कार्यों का शुभारंभ किया। उन्होंने कहा कि सरकार फरीदाबाद के समग्र विकास के लिए प्रतिबद्ध है। उन्होंने बताया कि सेक्टर 7 में वर्षों पुरानी जल भराव समस्या के समाधान के लिए लगभग 1.20 करोड़ रुपए की लागत से नई ड्रेनेज लाइन डाली जा रही है। वहीं सेक्टर 7, 8 और 10 के चौकों पर ट्रैफिक जाम की समस्या को कम करने के लिए सड़क चौड़ीकरण का कार्य भी शुरू किया गया है। मंत्री ने कहा कि सेक्टर 7 स्कूल परिसर में करीब 4 करोड़ रुपए की लागत से हॉकी अभ्यास के लिए मैदान बनाया जाएगा। इसके अलावा सेक्टर 7 मार्केट के आधुनिकीकरण पर लगभग 3 करोड़ रुपए खर्च किए जाएंगे। शिक्षा विभाग द्वारा पलवल के नेताजी सुभाष चंद्र बोस स्टेडियम में आज से जिला स्तरीय योग प्रतियोगिता का आयोजन किया जा रहा है। प्रतियोगिता में पलवल, होडल, हथीन व हसनपुर खंड के सरकारी स्कूलों में पढ़ने वाले करीब 80 खिलाड़ी भाग ले रहे हैं। प्रतियोगिता शुरू होने से पहले सहायक जिला मौलिक शिक्षा अधिकारी जसवीर तेवतिया ने बताया कि प्रतियोगिता का उद्देश्य सरकारी स्कूलों के बच्चों को तंदुरुस्त और स्वस्थ रहने के लिए योग के साथ जोड़ना है।
3: आज ये हमारी जिला स्तरीय योग ओलंपियाड की प्रतियोगिता होने जा रही है। इसमें हमारे 2 ग्रुप है, अंडर 14 और 17। एक इसमें गवर्नमेंट स्कूल के बच्चों को ही भाग लेने के लिए सरकार की तरफ से दिशा निर्देश है। पहले हमारी ब्लॉक स्तर की प्रतियोगिता हुई थी। ब्लॉक में जो टीम फर्स्ट आई है वो आज जिला स्तर पर खेलने के लिए आई है। इसमें हमारे 4 ब्लॉक होडल, हसनपुर, हथीन और पलवल की टीमें भाग ले। मेन उद्देश्य तो यही है सभी बच्चे स्वस्थ रहें, योग करोगे तो निरोग रहोगे, तो उसी उद्देश्य को लेकर के हमारी ये प्रतियोगिता कराई जा रही है।
2: श्री जसवीर देवतिया ने बताया कि प्रतियोगिता के विजेता खिलाड़ियों को प्रमाण पत्र व स्मृति चिन्ह भेंट कर सम्मानित किया जाएगा। अग्निवीर भर्ती के लिए जनवरी फरवरी 2026 की परीक्षा पास करने वाले सभी उम्मीदवारों को 23 मई को सुबह 5:30 बजे अपने मूल दस्तावेजों सहित सेना भर्ती कार्यालय चरखी दादरी में बुलाया गया है। सेना भर्ती कार्यालय चरखी दादरी के निदेशक कर्नल के संदीप ने बताया कि अग्निवीर क्लर्क SKT भर्ती 2025-26 के परिणाम घोषित हो चुके हैं। उम्मीदवार अपना परिणाम www.indianarmy.nic.in पर देख सकते हैं। इसी के साथ समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
4: ये आकाशवाणी का रोहतक केंद्र है। आइए अब सुनते हैं फिल्मी गाने।

ये चक्रधारी फिल्म का गीत आपने सुना, आशा भोसले और मोहम्मद रफ़ी की आवाज़ें थीं। कवि प्रदीप ने इस गीत को लिखा था, संगीत था अविनाश व्यास का। और अब आपको सुनवाते हैं जीवन रेखा फिल्म का गीत, मोहम्मद रफ़ी ने गाया है, अनजान ने लिखा है, संगीत है जे जगदीश का।

ये था जीवन रेखा फिल्म का गीत, मोहम्मद रफ़ी की आवाज़ थी, अनजान के बोल थे, संगीत था जी जगदीश का। अगला गीत हमने आपके लिए चुना है अग्नि रेखा फिल्म से, लता मंगेशकर ने गाया है, प्रदीप ने रचा है, संगीत है कल्याण जी आनंद जी का।

ये था अग्नि रेखा फिल्म का गीत, लता मंगेशकर ने गाया था, प्रदीप ने लिखा और संगीतबद्ध किया था कल्याण जी आनंद जी ने। अगला गीत आइए सुनते हैं, रेशम की डोरी फिल्म से, मोहम्मद रफ़ी की आवाज़ है। गीत लिखा है इंदिवर ने, संगीतबद्ध किया है शंकर जयकिशन ने।

ये था रेशम की डोरी फिल्म का गीत। आवाज़ मोहम्मद रफ़ी की थी, लेकिन साथ में आपने जो प्रॉम्प्ट करती हुई आवाज़ थी वो सुनी अभिनेत्री सायरा बानो की। शंकर जयकिशन का संगीत और गीत इंदिवर का था। फिल्मी गाने आप तक पहुंच रहे हैं आकाशवाणी के रोहतक केंद्र से।

0: भारत अभियान।
1: निक्षय मित्र तो हम सबका साथ निभाते, टीबी रोगी व परिजन को पोषण, जांच, इलाज और आजीविका संबंधी सहायता पहुंचाते। जब मिल जाएगा सबको अपना निक्षय मित्र तैयार, तब पक्की हो जाएगी हमारी जी और टीबी की हार।
2: निक्षय मित्र, इस अभियान ने एक बड़े चैलेंज से निपटने में टीबी के मरीजों की बहुत मदद की है। आपको जानकर हैरानी होगी, हमारे देश में 10-12 साल के बच्चे भी निक्षय मित्र बनकर टीबी के खिलाफ लड़ाई को आगे बढ़ा रहे हैं।
0: जन जन का रखे ध्यान, टीबी मुक्त भारत अभियान।
1: अधिक जानकारी के लिए नजदीकी आयुष्मान आरोग्य मंदिर जाएं। स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय द्वारा जनहित में जारी।

ये था बात एक रात की फिल्म का गीत। वैसे तो पूरा गीत हेमंत कुमार ने गाया था, लेकिन बीच में एक लहराती हुई सी आवाज़ आपने सुनी थी, महिला स्वर, वो था सुमन कल्याणपुर का, मजरूह सुल्तानपुरी के बोल थे, संगीत था ST बर्मन का। अगला गीत हमने आपके लिए चुना है चौकीदार फिल्म से, आशा भोसले ने गाया है, राजेंद्र कृष्ण के बोल हैं, संगीत है मदन मोहन का।

ये था आशा भोसले का गाया चौकीदार फिल्म का गीत। राजेंद्र कृष्ण ने इसे लिखा था, संगीतबद्ध किया था मदन मोहन ने। और अब सुनते हैं कोहरा फिल्म का गीत। स्वर और संगीत हेमंत कुमार के हैं। गीत लिखा है कैफी आजमी ने।

इंसान और इंसान फिल्म का ये गीत था गीता दत्त की आवाज़ में। ताजदार ताज का गीत और संगीत ओपी नैयर का था। इससे पहले कोहरा फिल्म का गीत आपने सुना था, कैफी आजमी का रचा हुआ, स्वर और संगीत हेमंत कुमार के थे। फिल्मी गाने आप तक पहुंच रहे हैं आकाशवाणी के रोहतक केंद्र से। आपको हमारे केंद्र से प्रसारित होने वाले कार्यक्रम कैसे लगते हैं, आपके विचारों का, सुझावों का, प्रतिक्रियाओं का, मार्गदर्शन का हमारे फोन इन कार्यक्रम श्रोता मंच में स्वागत है। हमारे टेलीफोन नंबर हैं 01262-255-446, 255-447 और 255-448। महीने के अंतिम रविवार को शाम 7:30 बजे से लेकर 8 बजे तक इस कार्यक्रम का प्रसारण होता है। इस बार का ये कार्यक्रम आप सुनेंगे 31 मई को शाम 7:30 बजे, तो सुनना मत भूलिएगा। अगला गीत आपको सुनवाते हैं छोटी सी बात फिल्म से। मुकेश ने गाया है, योगेश ने लिखा है, सलील चौधरी का संगीत है।

मुकेश का गाया छोटी सी बात फिल्म का ये गीत था, योगेश का गीत और संगीत सलील चौधरी का। अगला गीत आइए सुनते हैं दिल अपना और प्रीत पराई फिल्म से लता मंगेशकर और साथियों की आवाज़ों में गाया हुआ। शैलेंद्र के बोल हैं, संगीत है शंकर जयकिशन का।

ये था लता मंगेशकर और साथियों का गाया दिल अपना और प्रीत पराई फिल्म का गीत। अगला गीत मेरे सनम, इस फिल्म से हमने आपके लिए चुना है। आशा भोसले ने गाया है, मजरूह सुल्तानपुरी के बोल हैं, संगीत है ओपी नैयर का।

0: नमस्कार, आकाशवाणी से दोपहर समाचार के साथ मैं जागृति शर्मा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी नॉर्वे के ओस्लो पहुंचे। श्री मोदी आज शाम प्रधानमंत्री योनस गहर स्तुर के साथ द्विपक्षीय वार्ता करेंगे। प्रधानमंत्री मोदी ने कहा, स्वीडन यात्रा से आपसी संबंधों को नई गति मिली। दोनों देश अगले 5 वर्ष में व्यापार को दोगुना करने पर सहमत हुए। कांग्रेस नेता वीडी सतीशन ने 20 मंत्रियों के साथ केरलम के मुख्यमंत्री पद की शपथ ली। पश्चिम बंगाल सरकार ने राज्य सरकार के कर्मचारियों के लिए 7वें वेतन आयोग के गठन को मंजूरी दी। गृहमंत्री अमित शाह ने छत्तीसगढ़ के रायपुर जिले में 400 आपातकालीन वाहनों को रवाना किया। और आईपीएल क्रिकेट में आज शाम चेन्नई सुपर किंग्स और सनराइजर्स हैदराबाद आमने सामने होंगे। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी नॉर्वे के ओस्लो पहुंच गए हैं। प्रधानमंत्री मोदी का ओस्लो में पारंपरिक तरीके से स्वागत किया गया। श्री मोदी नॉर्वे के प्रधानमंत्री योनस गहर स्तुर के साथ द्विपक्षीय वार्ता करेंगे और तीसरे भारत नॉर्डिक शिखर सम्मेलन में शामिल होंगे। हमारी संवाददाता ने बताया है कि ये दौरा नॉर्डिक देशों के साथ भारत के संबंधों को गति प्रदान करेगा।
1: आज प्रधानमंत्री नॉर्वे के राजा हेराल्ड पंचम और रानी सोनिया से मुलाकात करेंगे। इसके बाद वे नॉर्वे के प्रधानमंत्री योनस गहर स्टोरर के साथ द्विपक्षीय वार्ता करेंगे। वे भारत नॉर्वे व्यापार और अनुसंधान शिखर सम्मेलन को भी संबोधित करेंगे। कल प्रधानमंत्री तीसरे भारत नॉर्डिक शिखर सम्मेलन में भाग लेंगे। वर्तमान में भारत और 5 नॉर्डिक देशों के बीच व्यापार का मूल्य $19 अरब है। व्यापार के प्रमुख क्षेत्रों में नवाचार, रक्षा, आर्कटिक और जनसंपर्क जैसे कई क्षेत्र शामिल हैं। संगीता गोडबोले, आकाशवाणी न्यूज, ओस्लो, नॉर्वे।
0: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि स्वीडन की उनकी यात्रा के कई महत्वपूर्ण परिणाम निकले हैं जो द्विपक्षीय संबंधों को एक नई गति प्रदान करेंगे। एक सोशल मीडिया पोस्ट में उन्होंने कहा कि द्विपक्षीय संबंधों को रणनीतिक साझेदारी के स्तर तक ले जाने में ये यात्रा महत्वपूर्ण रही। संयुक्त नवाचार साझेदारी के दूसरे चरण और भारत स्वीडन प्रौद्योगिकी तथा AI गलियारे की शुरुआत से लेकर अगले 5 वर्ष में द्विपक्षीय व्यापार को दोगुना करने का महत्वाकांक्षी लक्ष्य निर्धारित करने तक ये चर्चाएं अत्यंत सार्थक रहीं। उन्होंने स्वीडन की जनता, सरकार और प्रधानमंत्री उल्फ क्रिस्टर्सन का उनके स्नेह और मित्रता के लिए आभार व्यक्त किया। हमारी संवाददाता ने बताया है कि द्विपक्षीय संबंधों को रणनीतिक साझेदारी के स्तर तक पहुंचाने का ये कदम भारत स्वीडन संयुक्त कार्य योजना द्वारा निर्देशित है।
2: इस यात्रा के दौरान 6 प्रमुख उपलब्धियां सामने आईं। पहली उपलब्धि रही भारत स्वीडन संयुक्त कार्य योजना 2026-2030 को अपनाना, जो व्यापार, नवाचार, जलवायु कार्रवाई, रक्षा और इमर्जिंग टेक्नोलॉजीज में सहयोग के लिए एक व्यापक रोडमैप प्रस्तुत करती है। दूसरी बड़ी उपलब्धि रही तकनीकी सहयोग को नई ऊंचाई तक पहुंचाना। इसके तहत ज्वाइंट इनोवेशन पार्टनरशिप 2.0 की शुरुआत की गई और स्वीडन इंडिया टेक्नोलॉजी AI कॉरिडोर यानी CTAC का विस्तार किया गया। तीसरी उपलब्धि रही एक वर्चुअल भारत स्वीडन संयुक्त विज्ञान एवं प्रौद्योगिक केंद्र स्थापित करने पर सहमति। ये केंद्र AI, 6G, क्वांटम कंप्यूटिंग और जीवन विज्ञान जैसे अत्याधुनिक क्षेत्रों पर कार्य करेगा। चौथी बड़ी उपलब्धि अगले 5 वर्षों में दोनों देशों के बीच द्विपक्षीय व्यापार को दोगुना करने का लक्ष्य तय करना रही। पांचवी उपलब्धि रही भारत स्वीडन SME और स्टार्टअप प्लेटफॉर्म का विकास। छठी महत्वपूर्ण उपलब्धि साझा सांस्कृतिक और बौद्धिक विरासत को नई पहचान देना रही। इसके तहत टैगोर स्वीडन लेक्चर सीरीज की शुरुआत की गई, जो गुरुदेव रविन्द्रनाथ टैगोर की वर्ष 1926 की ऐतिहासिक स्वीडन यात्रा की शताब्दी को समर्पित है। इन पहलों के अलावा दोनों देशों ने लीडरशिप ग्रुप फॉर इंडस्ट्री ट्रांजिट यानी LEADIT के तीसरे चरण की घोषणा करी। साक्षी सिंह, आकाशवाणी समाचार, गोथेनबर्ग, स्वीडन।
0: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि भारत निवेश, नवाचार और विनिर्माण के लिए विश्व का सबसे आकर्षक केंद्र बन गया है। श्री मोदी ने स्वीडन की 2 दिन की यात्रा के दौरान गोथेनबर्ग में यूरोपीय उद्योग गोलमेज सम्मेलन को संबोधित करते हुए ये बात कही। प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि भारत पिछले 12 वर्ष से सुधार, प्रदर्शन और परिवर्तन के मूल मंत्र पर काम कर रहा है। श्री मोदी ने स्वीडिश कंपनियों से विनिर्माण, हरित हाइड्रोजन मिशन, स्वच्छ ऊर्जा और अन्य क्षेत्र में उपस्थिति बढ़ाने का आग्रह किया। केरलम के तिरुवनंतपुरम में आज कांग्रेस के वरिष्ठ नेता वीडी सतीशन ने मुख्यमंत्री पद की शपथ ली।
3: ज्ञान वडशेरी दामोदर मेनोन സതീശൻ എന്ന ഞാൻ നിയമം വഴി സ്ഥാപിതമായ ഭാരതത്തിന്റെ ഭരണഘടനയോട് നിർവ്യാജമായ വിശ്വസ്തയും.
0: राज्यपाल राजेंद्र विश्वनाथ आर्लेकर ने यूडीएफ सरकार के 20 नए मंत्रियों को शपथ दिलाई. नई कैबिनेट में शामिल 16 सदस्य पहली बार मंत्री बन रहे हैं. इसमें कांग्रेस पार्टी के 11 प्रतिनिधि हैं, जबकि इंडियन यूनियन मुस्लिम लीग के 5 मंत्री हैं. नई सरकार में शामिल वरिष्ठ नेताओं में पूर्व प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष रमेश चिनीथला, वर्तमान प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष सन्नी जोसेफ, के मुरलीधरन और इंडियन यूनियन मुस्लिम लीग के नेता पी के कुन्हालीकुट्टी शामिल हैं. शपथ ग्रहण समारोह के बाद आज नई बनी सरकार ने अपनी पहली आधिकारिक कैबिनेट बैठक की. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वीडी सतीशन को मुख्यमंत्री पद की शपथ लेने पर बधाई दी है. सोशल मीडिया पोस्ट में श्री मोदी ने कहा कि केंद्र सरकार राज्य के लोगों की आकांक्षाओं को पूरा करने में केरलम की नई सरकार को हर संभव सहयोग का आश्वासन देती है. ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in और हमारे न्यूज ऑन AIR ऐप पर भी उपलब्ध हैं. दोपहर समाचार में आपका फिर स्वागत है. पश्चिम बंगाल सरकार मंत्रिमंडल ने राज्य सरकार, विभिन्न सरकारी बोर्ड, निगमों और अन्य राज्य सहायता प्राप्त निकायों तथा स्कूलों के कर्मचारियों के लिए सातवें वेतन आयोग के गठन को सैद्धांतिक मंजूरी दे दी है. एक महत्वपूर्ण निर्णय में मंत्रिमंडल ने आज राज्य सरकार के सूचना और सांस्कृतिक मामलों के विभाग तथा अल्पसंख्यक और मदरसा विभाग के तहत 1 जून से विभिन्न प्रत्यक्ष लाभ हस्तांतरण को रोकने को भी सैद्धांतिक मंजूरी दी. इन विभागों के तहत छात्रवृत्ति योजनाएं जारी रहेंगी. राज्य सरकार ने राज्य की महिलाओं के लिए छोटी और लंबी दूरी की मुफ्त परिवहन सुविधा को भी स्वीकृत किया है. राज्य की महिलाओं के लिए 1 जून से अन्नपूर्णा योजना शुरू की जाएगी, जिसके तहत प्रत्यक्ष लाभ हस्तांतरण के माध्यम से 3,000 रुपए हस्तांतरित किए जाएंगे. एक ऐतिहासिक फैसले में शुभेंदु अधिकारी के नेतृत्व वाली पश्चिम बंगाल की भाजपा सरकार ने सरकारी नौकरियों में प्रवेश के लिए अधिकतम आयु सीमा बढ़ा दी है. ग्रुप ए पदों पर भर्ती के लिए अधिकतम आयु सीमा अब 41 वर्ष निर्धारित कर दी गई है. ग्रुप बी पदों के लिए ये सीमा बढ़ाकर 44 वर्ष कर दी गई है. ग्रुप सी और ग्रुप डी पदों के लिए अधिकतम आयु सीमा अब 45 वर्ष है. उत्तर प्रदेश में योगी आदित्यनाथ के मंत्रिमंडल ने आज अन्य पिछड़ा वर्ग ओबीसी आयोग के गठन को मंजूरी दे दी. मंत्रिमंडल ने 2 प्रमुख मेट्रो प्रस्तावों को भी मंजूरी दी है, जिसमें आगरा मेट्रो के दूसरे कॉरिडोर के अंतर्गत स्टेशन निर्माण और एलिवेटेड सेक्शन के लिए आवश्यक भूमि का हस्तांतरण शामिल है. केंद्र, राज्य सरकार और उत्तर प्रदेश मेट्रो रेल निगम के बीच चारबाग से वसंत कुंज तक के पूर्वी पश्चिम कॉरिडोर के लिए लगभग 5,801 करोड़ रुपए की अनुमानित लागत वाले त्रिपक्षीय समझौता ज्ञापन को स्वीकृति दी गई. वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने कहा है कि वैश्विक चुनौतियों और अनिश्चितताओं के बावजूद भारत तेजी से आगे बढ़ रहा है. आज नई दिल्ली में भारत व्यापार महोत्सव की वेबसाइट लॉन्च करते हुए श्री गोयल ने कहा कि आगे बढ़ने का उत्साह कभी कम नहीं होना चाहिए. उन्होंने कहा कि विकसित भारत 2047 के लक्ष्य को हासिल करने के प्रति भारत के उद्योगों, व्यापारिक समुदाय और लोगों में हौसला इतना मजबूत है कि दुनिया की कोई भी ताकत भारत को रोक नहीं सकती.
4: विकसित भारत 2047 जो प्रधानमंत्री जी ने हम सबको प्रोत्साहित किया है अमृत काल में मेहनत करने के लिए, वो लक्ष्य बड़ा है पर भारत के उद्योग व्यापार जगत, भारत के लोगों में जो आज उत्साह है और सफलता के लिए जिस प्रकार से पूरा देश 140 करोड़ लोग एकत्र हुए हैं, मुझे लगता है कि कोई ताकत दुनिया की ना हमें रोक पाएगी ना हमारे को थम पाएगी.
0: श्री गोयल ने कहा कि भारत व्यापार महोत्सव का उद्देश्य स्वदेशी व्यापार को बढ़ावा देना और ये सुनिश्चित करना है कि भारतीय सामान और सेवाएं पूरे देश और दुनिया भर में और भी तेजी से फैलें. पत्तन पोत परिवहन और जलमार्ग मंत्री सर्बानंद सोनोवाल ने आज अंतर्राष्ट्रीय महिला समुद्री दिवस के अवसर पर महिला नाविकों के अदम्य साहस को नमन किया है। सोशल मीडिया पोस्ट में श्री सोनोवाल ने कहा कि नीतिगत सुधारों के कारण भारत में महिला नाविकों की संख्या लगातार बढ़ रही है। उन्होंने कहा कि नारी शक्ति देश के विकास और वैश्विक समुद्री क्षेत्र को एक उज्ज्वल समावेशी भविष्य की ओर ले जा रही है। दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने सार्वजनिक परिवहन और ईंधन संरक्षण को बढ़ावा देने के लिए आज मेरा भारत मेरा योगदान में मेट्रो मंडे अभियान के तहत मेट्रो से यात्रा की। उन्होंने सभी दिल्ली वासियों से सार्वजनिक परिवहन का अधिक से अधिक उपयोग करने की अपील की।
5: हम सरकार की ओर से पूरी कोशिश कर रहे हैं कि पब्लिक ट्रांसपोर्ट की कहीं पे कोई दिक्कत ना हो, लास्ट माइल कनेक्टिविटी पे ज्यादा से ज्यादा काम किया जाए और हर व्यक्ति जब थोड़ा थोड़ा भी सहयोग इसमें करेगा तो दिल्ली शहर के लिए ये बेहतरीन होगा। हमारे शहर में पॉल्यूशन से लेकर के हर समस्या का इसका समाधान मिलेगा।
0: ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताज़ा समाचार जानने के लिए आप हमारे सोशल मीडिया हैंडल @AIRNewsHindi को फॉलो कर सकते हैं। ये आकाशवाणी है। गृहमंत्री अमित शाह ने आज रायपुर में 112 नंबर वाली आपातकालीन सेवाओं के लिए 400 नए अत्याधुनिक वाहनों को रवाना किया। छत्तीसगढ़ में पहले ये सुविधा 16 जिलों में थी, अब ये 33 जिलों में उपलब्ध है। 400 नए अत्याधुनिक आपातकालीन वाहन, 33 विशेष निगरानी वाहन तथा 60 नए राजमार्ग गश्ती वाहन प्रदेश के विभिन्न जिलों के लिए रवाना किए गए। इस अवसर पर छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय, विधानसभा अध्यक्ष डॉ. सिंह और उप मुख्यमंत्री विजय शर्मा भी उपस्थित थे।
6: आपातकालीन सेवा डायल 112 अभी तक छत्तीसगढ़ के सिर्फ 16 जिलों में उपलब्ध थी, लेकिन अब राज्य सरकार ने इस सेवा का विस्तार सभी 33 जिलों में कर दिया है। सुरक्षा मानकों और सहायता क्षमता को और मजबूत करने के लिए डायल 112 सेवा में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आधारित स्थान पहचान तकनीक को जोड़ा गया है, जिससे संकट में फंसे व्यक्ति की वास्तविक भौगोलिक स्थिति का सटीक पता लगाया जा सके। महिला सुरक्षा को प्राथमिकता देते हुए इस व्यवस्था में पैनिक बटन और विशेष निगरानी सुविधाएं भी जोड़ी गई हैं। विकल्प शुक्ला, आकाशवाणी समाचार, रायपुर।
0: प्रवर्तन निदेशालय ईडी ने कथित बैंक धोखाधड़ी मामले में आम आदमी पार्टी के नेता दीपक सिंगला को गिरफ्तार कर लिया है। इससे पहले एजेंसी ने इस मामले में आज सुबह दीपक सिंगला के दिल्ली और गोवा में छापेमारी की। उत्तर प्रदेश के लखीमपुर खीरी जिले में आज ट्रक और वैन की टक्कर से हुए सड़क हादसे में 9 लोगों की मौत हो गई। वैन में 2 महिलाओं समेत 10 लोग सवार थे। यह हादसा जिला मुख्यालय से 40 किलोमीटर दूर पीलीभीत बस्ती राजमार्ग पर अदालीसपुर गांव के पास हुआ। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस सड़क दुर्घटना में हुई जान माल की हानि पर दुख व्यक्त किया है। प्रधानमंत्री मोदी ने प्रधानमंत्री राष्ट्रीय राहत कोष से प्रत्येक मृतक के परिजन को 2-2 लाख रुपए और घायलों को 50-50 हजार रुपए की अनुग्रह राशि देने की घोषणा की है। आईपीएल क्रिकेट में आज हैदराबाद में चेन्नई सुपर किंग्स और सनराइजर्स हैदराबाद आमने सामने होंगे। ये मैच शाम 7:30 बजे से खेला जाएगा। मौसम विभाग ने बताया है कि इस सप्ताह उत्तर पश्चिम और मध्य भारत के मैदानी इलाकों में लू की स्थिति बनी रहने की संभावना है। शनिवार तक उत्तर प्रदेश में लू की स्थिति बनी रहने की संभावना है। राजस्थान, पंजाब, हरियाणा, चंडीगढ़ और दिल्ली में भी ऐसी ही स्थिति बनी रहेगी। देश के उत्तर पश्चिमी हिस्सों में अधिकतम तापमान में धीरे धीरे 3 से 5 डिग्री सेल्सियस की बढ़ोतरी का अनुमान है। अंडमान और निकोबार द्वीप समूह, अरुणाचल प्रदेश, असम, मेघालय, तटीय कर्नाटक, केरल और माहे में तेज बारिश की संभावना है। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी नॉर्वे के ओस्लो पहुंचे। श्री मोदी आज शाम प्रधानमंत्री योनास गहर स्टोर के साथ द्विपक्षीय वार्ता करेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा, स्वीडन यात्रा से द्विपक्षीय संबंधों को नई गति मिली। दोनों देश अगले 5 वर्ष में व्यापार को दोगुना करने पर सहमत हुए। कांग्रेस नेता वीडी सतीशन ने 20 मंत्रियों के साथ केरलम के मुख्यमंत्री पद की शपथ ली। पश्चिम बंगाल सरकार ने राज्य सरकार के कर्मचारियों के लिए 7वें वेतन आयोग के गठन को मंजूरी दी। गृह मंत्री अमित शाह ने छत्तीसगढ़ के रायपुर जिले में 400 आपातकालीन वाहनों को रवाना किया। और आईपीएल क्रिकेट में आज शाम चेन्नई सुपर किंग्स और सनराइजर्स हैदराबाद आमने सामने। इसके साथ ही दोपहर समाचार का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
7: ये आकाशवाणी का रोहतक केंद्र है। अब आप खेत खलिहान कार्यक्रम सुनेंगे।

0: भारत अभियान।
1: निक्षय मित्र तो हम सबका साथ निभाते, टीबी रोगी व परिजन को पोषण, जांच, इलाज और आजीविका संबंधी सहायता पहुंचाते। जब मिल जाएगा सबको अपना निक्षय मित्र तैयार, तब पक्की हो जाएगी हमारी जी और टीबी की हार।
2: निक्षय मित्र, इस अभियान ने एक बड़े चैलेंज से निपटने में टीबी के मरीजों की बहुत मदद की है। आपको जानकर हैरानी होगी, हमारे देश में 10-12 साल के बच्चे भी निक्षय मित्र बनकर टीबी के खिलाफ लड़ाई को आगे बढ़ा रहे हैं।
0: जन जन का रखे ध्यान, टीबी मुक्त भारत अभियान।
1: अधिक जानकारी के लिए नजदीकी आयुष्मान आरोग्य मंदिर जाएं। स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय द्वारा जनहित में जारी।
3: बदलो बदलो, आदत बदलो।
4: मशीन में कपड़े डालने से पहले चेक नहीं किया था क्या?
3: बदलो बदलो, आदत बदलो। अब नजदीकी बैंक जाकर फटे पुराने नोट्स बदलिए। अगर बैंक मना करे तो RBI के ओम्बुड्समैन से शिकायत करें। RBI कहता है, जानकार बनिए, सतर्क रहिए।
5: खेत खलियान कार्यक्रम सुनने वाले सारे बण भाइया ने सुरेंद्र भाई की राम राम। भाई देखो, गर्मी का मौसम है और लू चलनी भी शुरू होगी, और ये स्वाभाविक सी बात है कि भाई हमारे यहाँ मई और जो जून का महीना है ये बिल्कुल गर्मी का महीना हो है, और इसमें हमने अपना खुद का भी ध्यान रखना हो है, अपना पशुधन है उसका भी ध्यान रखना हो है, और अपनी जो फसल बाड़ी है उनका भी ध्यान रखना हो है। और देखो, जो हम बात करें बे, जो हमारी चारे वाली फसलें हमने लगा रखी हैं उनमें समय समय पर सिंचाई तो ज़रूर करते रहें, क्योंकि आगे आने वाले समय में जैसे ही मौसम ठीक भी हो जाएगा और थोड़ा बहुत जो गर्मी है वो कम होगी, उस समय पर जो हरा चारा है वो हमने मिलाना शुरू हो जाएगा। और जो कुछ मेहनती किसान भाई हैं और जिनके पास पानी के अच्छे साधन हैं, उन्होंने जो हरा चारा है उसकी बिजाई पहले कर भी रखी है और वो हरे चारे का प्रयोग कर भी रहे हैं, लेकिन उसमें भी इस बात का ध्यान दें कि भाई हमने उसमें भी सिंचाई करते रहना है, क्योंकि कई बार जब हम सिंचाई में कोताही बरत जावे हैं तो वो फिर जो फूंगड़ है वो उनकी सूखनी शुरू हो गया है, चाहे वो हम ज्वार की बात करें, चाहे बाजरे की बात करें, चाहे जो दूसरी हमने चारे के लिए फसल लगाई है उनकी बात करें। बाकी इसमें हमारी जो सब्जी वाली फसलें हैं उनका भी हमने ध्यान रखना है और उसमें भी जो सिंचाई है वो करते रहना है। यानी कि कुल मिलाकर हर बात में यही कहना पड़ेगा, भाई जो गर्मी का मौसम है और उसमें जो सिंचाई है वो करना बहुत ज़रूरी है, और जो ये चिलचिलाती हुई धूप है या जो लू है इससे हमने हर एक फसल को बचाना बहुत ज़रूरी है। और इसी क्रम में भाइयों, एक हमारी फसल है जो बिल्कुल बहुत मोटी फसल, जिसको हम हमारे किसान भाई कहते हैं, भाई गन्ने की जो फसल है, गन्ने की एक ऐसी फसल है जो पूरे साल भर हमारे खेत में है और उसका प्रबंधन हमने शुरू से लेकर आखिर तक करना पड़ा है। और यदि हम इस समय पर मान लो उसका जो प्रबंधन है वो अच्छे से नहीं कर पाते या उसमें कोई कमी रह जाए है, तो फिर जो हमारा हमारी जो पैदावार है, हमारा जो उत्पादन है, उसके ऊपर बड़ा इसका गलत असर हुआ है। इसलिए देखो, जो शुरू वाली बात हम गन्ना फसल की करें तो एक तो जो सिंचाई है वो हमने करते रहना है, क्योंकि गर्मी का मौसम है और गर्मी के मौसम के हिसाब से हमने 5-4 दिन यानी कि सप्ताह के आसपास में जो सिंचाई है वो करते रहना है। एक भाइयों, इस बात का ध्यान रखें कि जो खरपतवार नियंत्रण करना वो बहुत ज़रूरी है, और खरपतवार नियंत्रण में अब तो बहुत अच्छे अच्छे हमारे पास साधन भी आ गए हैं, क्योंकि एक रोटावेटर भी इस तरह का आ रहा है जो बीच का जो हमारे खूड निकले हुए हैं उसमें वो खुदाई कर दे है, और महक के जो पौधे हैं सिर्फ उन उनकी हमारी जो खुदाई है वो कस्सी या कसोले की रह जाए या हम हाथ से भी निकाल सकें। तो एक तो जो खरपतवार का नियंत्रण है वो बहुत ज़रूरी है करना, क्योंकि जब खरपतवार हमारी फसल के अंदर ज़्यादा हो जाए हैं, जैसे हम फिर बाद में पानी डालेंगे या सिंचाई करेंगे, तो वो बहुत ज़्यादा हो जाए हैं और इतने पनप जाएँ कि जो हमारी गन्ने की फसल है उसको दबाव में ले लें हैं और उसका ना फुटाव होने देते और ना ही वो उनको उस फसल को उबरने देते। इसलिए भाइयों, जो खरपतवार का नियंत्रण है वो सबसे पहला इसका काम है। इसमें इस बात का हम ध्यान दें कि भाई जो खरपतवार का नियंत्रण है वो गन्ना फसल में हमने करना बहुत ज़रूरी है। और जो मई का महीना है और आगे जून का महीना है, इसमें पर विशेष ध्यान ये रखना है कि भाई इसमें बहुत ज़्यादा धूप हो गया है और सिंचाई की इसमें बहुत ज़्यादा ज़रूरत पड़े है, क्योंकि गन्ना एक ऐसी फसल है यदि उसमें नमी की जब कमी हो जाए तो फिर जो उसके उत्पादन पे बहुत इसका गलत असर आवा है। बाकी इसमें जो हमने खाद पानी भी देना है, जो कीट नियंत्रण करना है, इन बातों का भी थोड़ा सा जिक्र तो करेंगे, लेकिन उससे पहले सुनेंगे रागनी रणबीर बड़वासिनिया और नीलम चौधरी की

तो भैया ने ये तो सुनी रागनी रणबीर बड़वासिनिया और नीलम चौधरी की गाई हुई। भैया इनकी रागनी तो एक और भी सुनाएंगे, लेकिन जो अपना खेत खलिहान में चर्चा कर रहे थे वह जो गन्ना फसल है उसकी देखभाल के बारे में, तो जो हमारी गन्ने की फसल है उसमें बहुत सारे कीड़े भी हैं जो नुकसान पहुँचा हुए हैं, जो फसल उगते ही जो उनकी आँख हैं उनको भी जो दीमक है वो नुकसान पहुंचा दे है। उसके लिए जिसमें हम सिंचाई करें, एक या 1.25 लीटर के आसपास हमने क्लोरोपारीफास दवाई है वो हमने साथ में जो सिंचाई कर रहे हैं उसमें डाल देंगे, तो जो ये दीमक है उससे हमारी जो फसल का बचाव हो सका है। बाकी जो मोटी फसल है उसमें जो छोटे पौधे हैं उनमें कई बार के देखें कि भाई जो उनकी जो गोब है वो सूख जाए है, और गोब सूखने का एक मुख्य कारण भाई ये है कि भाई फसल के अंदर जो कंसुआ है वो लग जाए है, और कई बार जो चोटी बेदक कीड़े हैं वो भी गोब के अंदर पत्तों में सुराख कर दे हैं और सुरंग सी बन जाए है, उससे जो हमारा पौधा है वो ख़राब हो जाए है। या आगे जाके आने वाले बहुत से ऐसे कीड़े हैं जिनकी रोकथाम हमने करनी पड़ेगी, और रोकथाम के लिए भाई देखो सबसे पहले ज़रूरी तो ये है कि वह जो हमारा प्रबंधन है वो ही सही हो और नमी है वो हमारे पौधों के

रहनी जरूरी है। और कई बार क्या है कि हम चोटी बेदक की बात करें, ये खासकर अप्रैल से जो जून का महीना है उसमें ज़्यादा नुकसान पहुँचा हुए हैं, और ज़मीन की जो नीचे वाली सतह है वहाँ भी इसका नुकसान बना है। पहले तो भाइयों हम कोशिश करें कि जितने भी पौधों में कंसुआ लगा हुआ है उनको निकाल दें, और बाद में जो भी हमको ये स्प्रे करें उसका प्रयोग करें ताकि जो दवाई है पौधे के अंदर जा सके। और कई बार के है कि भाई जो गर्मी ज़्यादा हो गया है और उसके कारण जो हमारे किसान भाई हैं वो निकाल नहीं पाते, तो वो फिर वो कीड़ा कई बार के है कि जो दवाई है वो ऊपर रही रहे और पौधे उस कीड़े तक नहीं पहुंच पाती। इसलिए हमने पहले जो कंसुआ जिन पौधे हम लगे हुआ है उनको हाथ से निकाल के और एक तरफ ले जाकर और गड्ढा खोद कर मिट्टी के अंदर दबा देना है ताकि वो कीड़ा है बाहर ना निकल पाओ और जो दूसरे पौधे हैं उनको ख़राब ना करें। इसके लिए भाइयों हमने देखो सारे जो हमारे किसान भाई हैं ज़्यादातर तो जो कोराजन है उसका प्रयोग कर रहे हैं, इसमें हमने 150 मिलीलीटर दवाई लेनी पड़े है। इसमें जो पानी की मात्रा है वो हमने अच्छी रखनी पड़े है, और वो इसलिए रखनी पड़े भाई जो हमारा पौधा है पूर्ण रूप से तर हो जाए। उसके लिए हमने 400 जो लीटर पानी है वो लेना बहुत ज़रूरी है, और जिस समय हम टंकी ले कर चले हैं या ज़्यादातर जो हमारे किसान भाई हैं वो ट्रैक्टर की टंकी से भी काम करें उसमें 400 लीटर एक किलो के हिसाब से हमने पानी लेना है, और 150 ml दवाई ये हमने लेनी है कोराजन, ये हम उसमें जो फुहारा बना कर मोटा है और जो जड़ हैं उनके अंदर जो सिंचाई है जिसमें मड़की सिंचाई करें उसमें पर जो जड़ हैं उनके साथ साथ में ये डालनी है। इसमें चाहे हम चोटी बेदक की बात करें या जो कंसुआ है इन दोनों कीड़ों की बात करें तो इसमें इनकी रोकथाम हो जाए है। और कई बार ये भी देखना में आया है कि भाई जो आगे आने वाला समय है जिसमें गर्मी ज़्यादा हो जाए है उसमें जो ये कीड़े हैं मान लो ये दिखाई फिर दें तो उसके लिए हम 13 किलो कार्बोफ्यूरान दवाई है ये हमने आगे जाकर जो यानी कि जून का जो महीना है उस समय में आखिर ही में जाकर करना पड़ेगा। 13 किलो जो कार्बोफ्यूरान दवाई है उसको फ्यूराडान भी हम का नाम तो जाना है 3-G के नाम से है, या फिर 8 किलो फोरेट दवाई ये हमने अब नहीं मारनी है भाइयों, ये जून के आखिर में जाकर हम इस दवाई का प्रयोग करें। यदि हम खुड्डों के हिसाब से डालकर मान लो हमने खाद में मिला ली और खुड्डों के हिसाब से डालकर और फिर इसकी सिंचाई कर देनी है तो जो जड़ का कीड़ा है और ऊपर वाला जो कीड़ा है दोनों के दोनों कीड़े इसमें ख़त्म हो जाए। बाकी इसमें देखो ज़्यादातर इसमें जो प्रकोप रव है वो कंसुए का रह है, और जो डिमक वाली जो दवाई है यदि वो हम दे दें हैं तो थोड़ा बहुत असर तो उसका जो कंसुआ है उसके ऊपर भी पड़े है, क्योंकि जो कंसुआ है ज़्यादातर उसका फर्क जब रहेगा जब मान लो जो जड़ है जड़ वाला जो कीड़ा है उसके ऊपर जो क्लोरोपारीफास दवाई हम सिंचाई के साथ दे रहे हैं तो उसमें इसका पूरा फर्क रहेगा, और जो हम मान लो कोराजन दवाई दे रहे हैं तो वो हमने जड़ों के साथ साथ दे कर और उसमें सिंचाई तुरंत करनी पड़ेगी क्योंकि इसमें नमी का होना भी ज़रूरी है, और वो पूरी दवाई जड़ के पास में जो हमने डाली है यदि वो पसीज कर जड़ के अंदर चली जाएगी तो फिर पूरे पौधे को कड़वा कर देगी। और ये दोनों के दोनों जो कीड़े हैं इसमें चाहे हम चोटी बेदक की बात करें या फिर कंसुए की बात करें ये दोनों कीड़े इसी दवाई से ख़त्म हो जाएंगे। और जो मुख्य बात है कि भाई हमने देखो साथ ही साथ खरपतवार का नियंत्रण भी करना है और सिंचाई भी करनी है, और जो ये कीड़े हैं या जो कुछ बीमारी तो खैर अब बहुत कम लग पाऊंगी, बाकी जो कीड़ों का प्रकोप इसमें भी हुआ है इससे भी अपनी जो फसल है उसको बचाना है, और गर्मी की मार से बचाने के लिए हमारे पास एक साधन यही है भाई हम सिंचाई करें। और पहले के होया करता कि भाई हमारे जो पहले किसान थे वो ज़्यादातर खुदाई कर दिया कर दे और जो खुदाई कराया कर दे उसके साथ में फिर मिट्टी लगा दिया कर दे उसमें नमी बनी रहा कर दी, लेकिन वो काम भी हमने करना है तो बाद में करना है, और कम से कम भी जो इस महीने के आखिर में जाकर या फिर जून के आधे तक हम जो मिट्टी लगाने का काम है वो भी कर सकें, वो भी एक मान लो हम सिंचाई कर रहे हैं उसमें बड़ा इसका फर्क रहा है भाई। उस समय रह गया था और भी बात करेंगे इसमें, लेकिन उससे पहले सुनेंगे रागनी रणबीर बड़वासनिया और नीलम चौधरी की गाई हुई।

तो भैया ने ये तो सुनी रागनी रणबीर बड़वासिनी और नीलम चौधरी की गाई हुई। भैया हम खेत खलिहान में चर्चा कर रहे थे भाई जो गन्ना फसल है उसकी देखभाल के बारे में, और इसमें देखो सबसे ज़रूरी बात तो है भाई जो नमी है उसको हमने बना के रखना है, और जो यूरिया का हमने छिड़काव करना है वो समय के हिसाब से करते रहना है। इसमें जो क्षण जो तना छेदक है उसका की जो रोकथाम है वो भी हमने समय के हिसाब से करते रहना है, क्योंकि इस समय जो नमी है उसका रहना बहुत ज़रूरी है। क्योंकि इस समय पर यदि हमारा जो प्रबंधन है, यदि हम खरपतवारों का नियंत्रण करते हैं और सारे काम सही कर दें, तो जो हमारे फुटाव हैं, जो हमारे कल्ले हैं, वो बहुत ज़्यादा हमारी फसल से हमने मिलेंगे। भैया ये कुछ बात थी गन्ना फसल की। शाम ने 6:20 पर भैया ने फिर मिलेंगे सारे भैया ने। राम राम।

आपने सुना खेत खलिहान कार्यक्रम। मीडियम वेव 262.47 मीटर यानी 1143 किलो हर्ट्स पर डीटीएच और न्यूज़ ओन AIR पर ये आकाशवाणी का रोहतक केंद्र है। 3 बजे हैं, हमारे दूसरी सभा के कार्यक्रम अब खत्म होते हैं। FM बैंड 103.5 मेगा हर्ट्स पर आप सुनते रहेंगे विविध भारती मुंबई के कार्यक्रमों का अनुप्रसारण। तीसरी सभा में शाम 5:30 पर मीडियम वेव 262.67 मीटर डीटीएच और न्यूज़ ओन AIR पर आपसे फिर मुलाकात होगी।

मीडियम वेव 262.47 मीटर यानी 1143 किलो हर्ट्ज पर आकाशवाणी का ये रोहतक केंद्र है। स्टूडियो की घड़ी में शाम के 5:30 हुए हैं। अब हमारी आज की तीसरी सभा आरंभ होती है। सभा के आरंभ में आइए सुनते हैं कार्यक्रम युवा संसार।

0: कार्यक्रम युवा संसार सुन रहे हमारे सभी साथियों का स्वागत है। नमस्कार साथियों, मैं आप सभी साथी याचना
1: और आप सभी श्रोताओं को महिमा का भी नमस्कार।
0: और साथियों, आज हम मना रहे हैं विश्व एड्स वैक्सीन दिवस। और अगर हम बात करें तो स्वास्थ्य ही सबसे बड़ा धन है, ये हमारे लिए भी ये कहावत है। और ये और भी सार्थक हो जाती है जब हम एड्स जैसी लाइलाज बीमारी के बारे में सोचते हैं। एड्स आज भी विश्व को सबसे गंभीर स्वास्थ्य

0: समस्याओं में से मानी जाती है। इस बीमारी के प्रति जागरूकता फैलाने और इसकी वैक्सीन के अनुसंधान को प्रोत्साहित करने के लिए प्रत्येक वर्ष 18 मई को हम जो है विश्व एड्स वैक्सीन दिवस मनाते हैं। 1998 में इसकी शुरुआत हुई। इसको उन वैज्ञानिकों, शोधकर्ताओं और स्वास्थ्य कर्मियों को सम्मानित करने के लिए मनाया जाता है जो एड्स की वैक्सीन खोजने में जुटे हुए हैं। अभी तक इसका कोई स्थायी इलाज नहीं खोजा गया है। हालांकि एक इसकी ART यानी कि एंटी रेट्रोवायरल थेरेपी होती है, इसमें इस बीमारी को नियंत्रित किया जा सकता है, लेकिन यह बीमारी को पूरी तरह ख़त्म नहीं कर सकती। इसलिए एक प्रभावी HIV वैक्सीन की आवश्यकता है जो HIV संक्रमण को रोक सके, बीमारी को जड़ से समाप्त कर सके और उसमें सहायक हो। यह दिवस याद दिलाता है कि एड्स के लिए जो हम उसके विरुद्ध लड़ाई लड़ रहे हैं वो अब भी जारी है, और लड़ाई तभी जीती जा सकती है जब हम सब मिलकर जागरूकता, अनुसंधान और करुणा के साथ आगे बढ़ें। एड्स पीड़ितों के साथ भेदभाव नहीं बल्कि सहानुभूति और सहयोग की आवश्यकता होती है।
1: HIV दोस्तों शरीर की रोग प्रतिरोधक क्षमता को कमज़ोर कर देता है, और अगर समय पर उपचार नहीं मिलता तो फिर ये एड्स का रूप ले सकता है। हालांकि आधुनिक दवाओं से इसे काफ़ी हद तक सहायता की जा सकती है, नियंत्रित इसको किया जा सकता है, लेकिन फिर भी यहाँ पर ये समझना हमें चाहिए कि एड्स जो है वो छूने से, साथ में एक दूसरे के बैठने से नहीं फैलता, बल्कि मुख्य रूप से ये असुरक्षित रक्त चढ़ने से या फिर संक्रमित सुई के प्रयोग के कारण फैलता है। तो याचना ने जैसा कि अभी कहा कि सही जानकारी और सावधानी ही इसका सबसे बड़ा बचाव है। अगर हम सब मिलकर जागरूक रहें और वैज्ञानिक अनुसंधानों का समर्थन करें तो वो दिन दूर नहीं जब एड्स जैसी बीमारी को हम पूरी तरह से समाप्त कर पाएंगे और इस पर विजय प्राप्त कर पाएंगे।
0: और साथियों, इसी के साथ जो है आज हम अंतर्राष्ट्रीय संग्रहालय दिवस भी मना रहे हैं। अगर संग्रहालय के मतलब की बात करें तो यह वह स्थान होता है जहाँ अतीत की यादें, सभ्यताओं की धरोहर और मानव जाति की उपलब्धियाँ संजोकर रखी जाती हैं। यह केवल पुरानी वस्तुओं का संग्रह नहीं बल्कि हमारी सांस्कृतिक पहचान का दर्पण है। इसी महत्व को रेखांकित करने के लिए प्रत्येक वर्ष यानी कि आज के दिन हम इस दिवस को मनाते हैं। इस दिवस की स्थापना संग्रहालय परिषद द्वारा 1977 में की गई थी। तब से लेकर अब तक यह दिवस विश्व भर में 150 से अधिक देशों में मनाया जाता है। संग्रहालय जीवंत पाठशालाओं की तरह होते हैं। यहाँ विज्ञान, कला, इतिहास और भूगोल को प्रत्यक्ष रूप से देखकर समझा जा सकता है। छात्रों के लिए यह शैक्षणिक भ्रमण का सर्वोत्तम स्थान है। यहीं पर थे राष्ट्रीय गौरव और सांस्कृतिक विरासत के प्रतीक होते हैं, साथ ही हमें अपनी जड़ों से जोड़े रखते हैं। और अगर हम देखें तो आज के डिजिटल युग में संग्रहालयों ने भी अपना रूप बदला है। अब वर्चुअल संग्रहालय के माध्यम से घर बैठे ही दुनिया भर के संग्रहालयों की सैर की जा सकती है। 3D प्रदर्शनी, ऑगमेंटेड रियलिटी और इंटरैक्टिव डिस्प्ले ने संग्रहालय को अधिक रोचक बनाया है और जीवंत भी बनाया है। संग्रहालय अतीत और भविष्य के बीच सेतु का कार्य करते हैं। हम सभी का यह दायित्व है कि हम इन धरोहरों को सहेजें, सुरक्षित रखें और आने वाली पीढ़ियों को इनसे परिचित कराएं।
1: बिल्कुल सही कहा आपने याचना। संग्रहालय जो है वो सिर्फ पुरानी वस्तुओं का संग्रह नहीं होते बल्कि ये ज्ञान और शिक्षा का महत्वपूर्ण केंद्र बन जाते हैं। यहाँ पर रखी गई ऐतिहासिक वस्तुएं, मूर्तियाँ, चित्रकला और वैज्ञानिक उपकरण जो हैं वो हमारे इतिहास और संस्कृति की झलक हमें दिखाते हैं। और बच्चों के लिए, युवाओं के लिए खास तौर पर संग्रहालय एक सीखने का एक रोचक माध्यम है, जहाँ पर वो पुस्तकों से के जो वास्तविक तथ्य हैं उन्हें देखकर और समझ सकते हैं। हमारे देश में भी कई ऐसे प्रसिद्ध संग्रहालय हैं, जैसे कि राष्ट्रीय संग्रहालय, इंडियन म्यूज़ियम, छत्रपति शिवाजी महाराज वास्तु संग्रहालय, और ये सभी संग्रहालय जो हैं वो भारत की समृद्ध सांस्कृतिक विरासत को सुरक्षित रखने में अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहे हैं।
0: और साथियों, जैसा कि आप सब जानते हैं कि आज सोमवार है और सोमवार के दिन हम आप सभी के लिए लेकर आते हैं कार्यक्रम हेलोजीनियस फोन इन। हमारा जो प्रश्न हम आपसे पूछेंगे, लेकिन उससे पहले हम आप सभी को कुछ नियम बता देते हैं, जिसमें रहेगा कि अगर हमारे पास कोई भी साथी फ़ोन कर रहा है और वो रेडियो सेट से सुन रहा है तो अपने रेडियो सेट से दूरी बनाकर हमारे पास फ़ोन करें। दूसरा ये रहेगा कि अगर हमारे कोई भी दो साथी किसी भी एक प्रश्न का सही जवाब नहीं दे पाते हैं तो उसका जवाब हम आपको देंगे। तीसरा ये रहेगा कि अगर हमारा कोई भी एक साथी लगातार 3 प्रश्नों का सही जवाब दे पाता है तो वो हमारे कार्यक्रम का जीनियस होगा।
1: दोस्तों, आप हमारे साथ इस कार्यक्रम में जुड़ सकते हैं। संपर्क नंबर है हमारे 012-65-446-255-447 और 255-448। शुरुआत करते हैं पहले सवाल से।
0: बिल्कुल, जो रहेगा कि आपको बताना है कि 3 बीघा कॉरिडोर किन देशों के बीच स्थित है। हेलो हेलो हेलो
2: हेलो
0: जी, नमस्कार
2: जी, रवि बोल रहा हूँ। नमस्कार
0: जी रवि जी, आपका स्वागत है। आपको बताना है कि 3 बीघा कॉरिडोर किन देशों के बीच स्थित है।
2: मैं रिपीट करना।
0: 3 बीघा कॉरिडोर किन देशों के बीच स्थित है।
2: 3 बीघा
0: जी, एक बार फिर से दोहराएं।
2: 3 बीघा चीन या बांग्लादेश में
0: होता है। जी नहीं,
2: बांग्लादेश
0: जी, बांग्लादेश तो है और दूसरा देश।
2: दूसरा देश भूटान।
0: जी नहीं, भूटान तो इसका सही जवाब नहीं है, लेकिन ये पड़ोसी राज्य ही
2: बांग्लादेश।
0: है बांग्लादेश और दूसरा देश
2: नेपाल।
0: जी नहीं,
2: तिब्बत।
0: तिब्बत भी नहीं है।
2: ओके, थैंक यू।
0: प्रयास करने के लिए आपका बहुत धन्यवाद। बढ़ते हमारे अगले साथी की ओर। हेलो,
3: गुड इवनिंग मैम, राहुल बात कर रहा हूँ, डिस्ट्रिक्ट झुंझुनू राजस्थान से।
0: जी राहुल जी, आपका स्वागत है। आपको बताना है कि 3 बीघा कॉरिडोर किन देशों के बीच स्थित है।
3: ये वेस्ट बंगाल बांग्लादेश बॉर्डर पे है मैम।
0: जी, बांग्लादेश बोर्ड पे है तो इसलिए हमारे भारत और बांग्लादेश के बीच हो गया।
1: अगला सवाल आपके लिए है कि भारतीय न्यायपालिका के डिजिटल आधुनिकीकरण के लिए AI आधारित चैटबॉट जिसका नाम है सुसहायक, इसे किसने लॉन्च किया है।
3: कौन सा, क्या मैम दोबारा बताना।
1: न्यायपालिका को डिजिटल करने के लिए एक AI चैटबॉट लॉन्च किया गया है, सुसहायक उसका नाम है, किसके द्वारा इसे लॉन्च किया गया है।
3: ये भारतीय मुख्य न्यायाधीश जी सूर्यकांत जी ने।
1: जी, जस्टिस सूर्यकांत, बिल्कुल सही जवाब दिया है आपने।
0: और अगला प्रश्न आपके लिए रहेगा कि कर्नाटका और गुजरात के बाद अंतरिक्ष औद्योगिक नीति को मंजूरी देने वाला राज्य कौन सा बना है।
3: हिमाचल प्रदेश।
0: जी नहीं, ये सही जवाब नहीं है।
3: ठीक है मैम, नहीं आता।
1: कार्यक्रम में हमारे साथ जुड़ने के लिए शुक्रिया।
0: हेलो,
1: सवाल यही, और अब अगले श्रोता की ओर बढ़ते हैं। हेलो
4: हेलो,
1: नमस्कार जी।
4: हेलो
0: हेलो
4: जी, रवि बोल।
0: जी रवि जी, फिर से स्वागत है आपका। आपको
4: पिछले प्रश्न का क्या उत्तर था।
0: 3 बीघा कॉरिडोर या फिर जो हमारा,
4: हाँ जी,
0: उसका जो उत्तर है वो भारत और बांग्लादेश के बीच है ये हमारा, और एक साथी ने बताया है कि वो वेस्ट बंगाल की जो एक डिस्ट्रिक्ट है वहाँ पर लगता है।
4: तो मैंने भी तो बांग्लादेश बताया था, बोले दूसरा
0: मैंने,
4: देश है।
0: मैंने बोला था कि दूसरे देश का भी नाम बताना
1: प्रश्न का है। जो सही जवाब है वो हमें यहाँ मिल चुका है। और आपके लिए अब अगला प्रश्न पूछा गया है
0: कि कर्नाटका और गुजरात के बाद अंतरिक्ष औद्योगिक नीति को मंजूरी देने वाला राज्य कौन सा है।
4: कौन सी नीति मैम।
0: अंतरिक्ष औद्योगिक नीति।
4: आंध्र प्रदेश।
0: जी नहीं, आंध्र प्रदेश तो इसका सही जवाब नहीं है।
4: गुजरात और दूसरा कौन सा बताया था, कर्नाटक के बाद।
0: जी,
4: तमिलनाडु।
0: जी बिल्कुल सही जवाब है आपका, ये तमिलनाडु।
1: तो बढ़ते हैं अब आगे, और अगला सवाल आपके लिए है कि भारत के UPI को अपनाने वाला पहला कैरिबियन देश कौन सा बना है।
4: जमैका।
1: माफ कीजिए, अपना जवाब दोहराएं।
4: जमैका।
1: जी नहीं, ये सही जवाब नहीं है।
4: गुयाना।
1: जी, गुयाना भी सही उत्तर नहीं है। आपको कैरिबियन देश बताना है कि कौन सा बना है, और इसे मिलाने के बाद कुल 10 ऐसे देश होंगे जो भारत के UPI को इस्तेमाल कर सकेंगे।
2: और कौन सा, त्रिनिदाद एंड टोबैगो।

0: कृष्णा स्वामीनाथन।
1: जी बिल्कुल सही और सटीक उत्तर है।
2: और आपके लिए अगला प्रश्न है कि माउंट एल्ब्रूस किस देश में है?
0: कौन सा एल्ब्रूस मैम?
2: माउंट एल्ब्रूस, आपको ये जो पर्वत है आपको बताना है।
0: साउथ अफ्रीका में है।
2: जी नहीं, ये तो सही जवाब नहीं है।
0: थोड़ा हिंट है मैम कोई?
2: जो ये पर्वत है वो यूरोप का सबसे ऊंचा पर्वत है।
0: यूरोप का? ठीक है, नहीं आ रहा मैंने ध्यान में।
2: बढ़ते हैं हमारे अगले साथी की ओर।
1: माउंट एल्ब्रूस से जुड़ा हुआ प्रश्न है, जो कि यूरोप की सबसे ऊंची चोटी है और इस कहां पर ये स्थित है।
2: हेलो
1: हेलो
0: हेलो
2: जी नमस्कार।
0: हेलो जी नमस्कार, ये क्या क्वेश्चन है?
1: आप जी आप अपने रेडियो से अच्छी बोल रहे हैं।
0: हेलो हम रवि बोल रहे हैं।
2: जी रवि जी,
1: कार्यक्रम में कॉल करने के बाद आप अपने रेडियो सेट या फिर टीवी सेट से दूरी बनाकर बात करें।
2: हेलो
3: हेलो
0: हेलो
2: हेलो
0: हाँ जी नमस्कार।
2: जी नमस्कार, रामधारी जी आपका स्वागत है।
0: जी
2: आपको बताना है कि
1: आपकी ओर से काफी शोर है।
0: हाँ जी
2: आपको बताना है कि माउंट एल्ब्रूस किस देश में है?
0: माउंट एल्ब्रूस दक्षिण अफ्रीका?
2: जी नहीं, ये तो सही जवाब नहीं है।
0: तंजानिया?
2: तंजानिया भी नहीं है।
0: ठीक है, धन्यवाद।
2: साथियों इस प्रश्न का सही जवाब है रशिया, और हाल ही में यहाँ पर जो है हमारे एक भारतीय पर्वतारोही हैं अरुणाचल प्रदेश के कबाक यानो, उन्होंने भी इसकी चढ़ाई की है।
1: जी और अब आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल है एक योजना से जुड़ा हुआ, पोषण युक्त खेती और स्वस्थ भोजन को बढ़ावा देने के लिए हाल ही में केंद्र सरकार ने किस राष्ट्रीय पहल को शुरू किया है? हेलो हेलो, पोषण युक्त खेती और स्वस्थ भोजन को बढ़ावा देने के लिए किस राष्ट्रीय पहल को शुरू किया गया है? हेलो हेलो
0: हेलो
1: जी नमस्कार, नाम बताएं।
0: नमस्ते मैम, राहुल बात कर रहा हूँ।
1: जी राहुल, सवाल है आपके लिए, पोषण युक्त खेती और स्वस्थ भोजन को बढ़ावा देने के लिए केंद्र सरकार ने किस राष्ट्रीय पहल को शुरू किया है?
0: राष्ट्रीय पहल ये प्रधानमंत्री पीएम किसान?
1: जी नहीं, न्यूट्रिशन यानी कि पोषण से जुड़ी हुई ये पहल है और स्वस्थ भोजन से जुड़ी हुई ये पहल है।
0: प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना?
1: जी नहीं, ये भी सही जवाब नहीं है।
0: पीएम किसान संपत्ति? ठीक है, नहीं है।
1: जी कार्यक्रम में हमारे से जुड़ने के लिए शुक्रिया। सवाल यही और याचना अब अगले श्रोता की ओर हम बढ़ते हैं आगे। हेलो
4: हेलो नमस्कार।
1: नमस्कार जी, नाम बताएं।
4: हाँ नमस्कार, मैं मेतीपुरा से बोल रहा हूँ, केशव चक्रवर्ती।
1: जी केशव चक्रवर्ती जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। सवाल आपके लिए एक योजना, एक राष्ट्रीय पहल का है कि पोषण युक्त और स्वस्थ भोजन जो है इसको
4: ये तो गुजरात में शुरू हुआ।
1: जी आपको बताना है कि किस पहल को शुरू किया गया है, राष्ट्रीय पहल है ये पोषण युक्त खेती और स्वस्थ भोजन से जुड़ी हुई।
4: ये तो शुरू हुआ आई थिंक 2018।
1: जी नहीं, आपने सवाल सही नहीं सुना है। पोषण युक्त खेती और स्वस्थ भोजन को बढ़ावा देने के लिए केंद्र सरकार ने किस राष्ट्रीय पहल को शुरू किया है?
4: नहीं मैडम, ये आउट ऑफ माय नॉलेज। ओके
1: जी रामधारी जी, हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। माफ कीजिएगा केशव जी, हमारे साथ जुड़ने के लिए शुक्रिया। तो नियमों के मुताबिक दो श्रोता हमारे साथ यहाँ हो चुके हैं। सही जवाब हम बता देते हैं याचना अपने साथियों को, सेहत मिशन नाम की ये जो पहल है इसे शुरू किया गया है।
2: और आप सभी के लिए अगला प्रश्न कि किस भारतीय चेस प्लेयर ने फिडे ग्रैंड स्विस टूर्नामेंट 2025 जीता है?
0: हेलो
2: हेलो,
0: राहुल बात कर रहा हूँ मैम।
2: जी राहुल जी, आपका फिर से स्वागत है। आपको बताना है कि किस भारतीय चेस प्लेयर ने फिडे ग्रैंड स्विस टूर्नामेंट 2025 जीता है?
0: भारत के विश्वनाथ आनंद?
2: जी नहीं।

0: ये सही जवाब नहीं है।
1: ठीक है, नहीं है तो
0: हेलो हेलो, साथियों आप सभी को बताना है कि किस भारतीय, हेलो हेलो हेलो, आप सभी को बताना है कि किस भारतीय चेस प्लेयर ने फिडे ग्रैंड स्विस टूर्नामेंट 2025 जीता है। हेलो,
2: फिडे ग्रैंड चेस टूर्नामेंट से जुड़ा हुआ ये प्रश्न है आपके
0: हेलो
2: लिए।
1: हेलो
0: हेलो
1: हेलो,
0: जी, रवि जी आपका फिर से स्वागत है।
1: हाँ जी,
0: आपको बताना है कि किस भारतीय चेस प्लेयर ने फिडे ग्रैंड स्विस टूर्नामेंट 2025 जीता है।
1: नो
0: जी
1: भारत
0: जी नहीं,
1: तो मैंने किया, मैंने कोई
0: जी ये महिला हैं और आपको बता दें कि ये उनका,
1: वैशाली
0: जी
1: वैशाली
0: जी
1: रमेश बाबू
0: बिल्कुल,
1: रमेश
0: वैशाली रमेश बाबू ने, ये उनका दूसरा लगातार जो
1: जी
0: है वो फिडे ग्रैंड स्विस टूर्नामेंट हासिल किया है उन्होंने।
2: और अगला सवाल आपके लिए है, भारत में झीलों का शहर किसे कहा जाता है? भारत
1: क्या मैम, आवाज
2: में
1: आपकी कट रही है मैम।
2: झीलों का शहर किसे कहा जाता है?
1: झीलों का
2: जी
1: उदयपुर को भी।
2: उदयपुर, बिल्कुल सही जवाब है।
0: और आपके लिए अगला प्रश्न कि किस देश ने अनाई मंगलम कॉपर प्लेट्स भारत को वापस की हैं?
1: इस देश में
0: भारत को अनाई मंगलम कॉपर प्लेट्स यानी कि लेडन प्लेट्स भी उनको बोलते हैं, भारत को वापस की हैं।
1: और यूरोपीय देश है हमारे
0: जी बिल्कुल, ये एक यूरोपियन देश है।
1: इंग्लैंड।
0: जी नहीं, इंग्लैंड तो नहीं है। आपको बता देते कि जो ये प्लेट्स हैं वो राजा राजा चोला जो वन थे उनके राज में थी।
2: इतिहासिक धरोहर के रूप में
0: नीदरलैंड,
2: ये
0: एक बार
2: जो
0: फिर से दोहरा सकते हैं आप?
1: नीदरलैंड
0: जी बिल्कुल सही जवाब है आपका, ये नीदरलैंड्स ने भारत को ये प्लेट्स वापस की हैं। यहाँ
2: जी
0: पर
2: बन।
0: और आप तीन प्रश्नों के सही जवाब देकर बनते हैं आज के इस कार्यक्रम के पहले जीनियस। आप एक बार अपना नाम बता दीजिए।
1: जी मैं रवि बोल रहा हूँ
2: रवि, आपको बहुत बहुत बधाई और कार्यक्रम में हमारे साथ जुड़े।
1: मैम। ये
0: शुक्रिया
1: सोमवार को ही आता क्या प्रोग्राम? बस
2: जी, ये जो हेलो जीनियस कार्यक्रम है ये सोमवार को आप सुन सकते हैं और हमारे साथ जुड़ सकते हैं इस कार्यक्रम में।
1: ओके, थैंक यू।
2: धन्यवाद। तो आज के इस कार्यक्रम के पहले जीनियस बनते हैं रवि, लेकिन अन्य जितने भी श्रोता हैं जो प्रयास कर रहे हैं उन्हें भी हम उम्मीद
0: बधाई
2: करते
0: दे।
2: हैं और प्रोत्साहित करते हैं कि आगे जो प्रश्न हम आपसे पूछेंगे उनके आप सही जवाब दे पाएंगे। और इसी उम्मीद के साथ अगला प्रश्न आपके लिए है, भारत का सबसे ऊंचा जल प्रपात कुंचिकल जल प्रपात किस राज्य में स्थित है? कुंचिकल जलप्रपात भारत के किस राज्य में स्थित है?
1: हेलो महिमा मैम, राहुल बात कर रहा हूँ
2: जी राहुल, स्वागत है आपका। कुंचिकल
1: जी। मैम
2: जलप्रपात भारत के किस राज्य में स्थित है?
1: कौन सा जल प्रपात मैम?
2: कुंचिकल जलप्रपात
1: ये नॉर्थ ईस्ट में है क्या मैम?
2: जी,
1: कोई हिंट?
0: जो आपको बता दें कि ये हमने एक प्रश्न में इस राज्य का नाम भी लिया था।
1: वो सुन
0: जी
1: राजस्थान।
0: नहीं,
2: भारत का जो सबसे ऊंचा जलप्रपात है ये कुंचिकल जलप्रपात किस राज्य में स्थित है?
1: ये मैम गुजरात।
2: जी गुजरात सही जवाब नहीं है।
0: और आपको बता देते हैं कि ये जो राज्य है वो दक्षिण राज्य है।
2: चलिए, उनसे संपर्क हमारा जो है वो टूट गया है। और
0: हेलो हेलो,
3: हेलो नमस्कार, मेरा मैं केशव चक्रवर्ती फिर आया त्रिपुरा से।
2: जी केशव चक्रवर्ती जी, जल प्रपात से जुड़ा हुआ प्रश्न है, कुंचिकल जल प्रपात भारत के किस राज्य में स्थित है?
3: हाँ ये तो कर्नाटक राज्य।
2: कर्नाटक राज्य, बिल्कुल सही जवाब दिया है आप।

0: और आपके लिए अगला प्रश्न है कि किस देश ने पिछले वर्ष इसी महीने इच्छा मृत्यु को वैध बनाने वाला विधेयक पारित किया है?
1: बेट मणि मणि आवर बेट
0: हेलो,
1: मैडम आस्क मणि रिपीट द क्वेश्चन इजीली, आई कांट अंडरस्टैंड इजीली दैट।
0: जी, आपको बताना है कि आपको उस कंट्री का नाम बताना है जिसने पिछले साल इसी महीने जो है यूथनेशिया यानी कि इच्छा मृत्यु को लीगल करने का एक जो है वो पारित किया है, वैध बिल।
1: हाँ, ये नेदरलैंड्स।
0: जी नहीं, नेदरलैंड्स तो इसका सही जवाब नहीं है।
1: यूरोपीय कौन देश की इच्छा मृत्यु मृत्यु मतलब आदेश करें? हाँ,
0: जी,
1: ये मैं ये इंग्लैंड।
0: हेलो,
1: हेलो,
0: एक बार फिर से दोहराएं।
1: हाँ, ये इच्छा मृत्यु ये आयरलैंड, आई थिंक आयरलैंड।
0: जी नहीं, आयरलैंड भी नहीं। आपको बताना है कि पिछले
1: और ये
0: वर्ष,
1: पोलैंड, पोलैंड है, पोलैंड आई थिंक, पोलैंड।
0: पोलैंड भी नहीं है, प्रयास
1: और
0: आपकी ओर से
1: इससे
0: है।
1: यूथेनिशिया, इससे तो वेरी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन।
0: जी,
1: ये तो मैडम सो फार आई नो दैट नेदरलैंड्स।
0: जो वो ये यूथनेशिया को लीगल करते हैं, लेकिन पिछले वर्ष वही मई 2025 में इस देश ने इसके बिल को पास किया है। आपने उस देश का नाम बताना है।
1: देश का नाम तो मैडम आई मेंशनिंग द कंट्री देख मानी
0: जी, आप
1: दैट
0: सही
1: इज
0: जवाब जानते हैं तो।
1: आयरलैंड, आयरलैंड।
0: जी
1: जी
0: नहीं,
1: नहीं,
0: आयरलैंड
1: आयरलैंड
0: प्रयास करने के लिए
1: सही।
0: आपका बहुत बहुत
1: हेलो,
0: धन्यवाद। हेलो
1: गुड इवनिंग मैम, राहुल बात कर रहा हूँ,
0: जी, राहुल जी, आपका फिर से स्वागत है। आपको बताना है कि किस देश ने पिछले,
1: भारत ने मैम।
0: जी नहीं, भारत ने जो वो केस था वो सुप्रीम कोर्ट का था, उसने तब लीगल किया था सिर्फ एक केस के लिए। आपको बताना है कि पिछले वर्ष इसी महीने इच्छा मृत्यु को वैध बनाने वाला विधेयक पारित किया है।
1: मतलब देश बताना है क्या मैम, राज्य बताना है?
0: आपको देश का नाम बताना है जिसने,
1: इंडिया गलत है क्या इसका?
2: जी, भारत में ऐसा कोई बिल पास नहीं हुआ है यूथनेशिया से जुड़ा हुआ एक।
1: चीन?
0: जी नहीं, चीन भी इसका सही जवाब नहीं है,
1: नेपाल?
0: नेपाल भी नहीं है।
2: नियमों के मुताबिक हमारे दो साथी यहाँ हो चुके हैं इस प्रश्न को लेकर, और सही जवाब याचना हम बता
0: जी
2: देते हैं।
0: बिल्कुल, इसका सही जवाब है फ्रांस।
2: तो फ्रांस इस प्रश्न का सही उत्तर है, जहाँ पर यूथनेशिया से जुड़ा हुआ एक बिल पारित किया गया है। और वहीं अब हम भी आगे बढ़ जाते हैं और महोत्सव से जुड़ा हुआ प्रश्न आपसे पूछ लेते हैं। गंगम्मा जतारा महोत्सव किस राज्य में हाल ही में अभी मनाया गया है? गंगम्मा जतारा महोत्सव किस राज्य में मनाया गया
1: हेलो,
2: है?
0: हेलो,
2: हेलो
1: हेलो, नमस्कार मैम, रामधारी बात कर रहा हूँ।
2: जी, रामधारी जी, आपको बहुत बहुत स्वागत है।
1: धन्यवाद।
2: जी, प्रश्न है, गंगम्मा जतारा महोत्सव किस राज्य में मनाया गया है?
1: मैडम आंध्र प्रदेश।
2: आंध्र प्रदेश, बिल्कुल सही, और
1: एक
2: पहले ही
1: बात कहनी
2: प्रयास में
1: करना,
2: सटीक।
1: इसके ऊपर इंप्लीमेंट भी करें तो
2: जी बिल्कुल, बताएं।
1: मैम, प्रश्न का जवाब देने के लिए इतना टाइम जो देते हो ना, इसके बाद में आपको भी पता है कि आगे मतलब सर्च करके बताया जा रहा था, इस और ध्यान दे थोड़ा सा, जिसके ऊपर लगातार ध्यान आपकी तरफ से नहीं दिया जा रहा है।
2: जी, हम कोशिश करेंगे कि हम जो
1: जी,
2: हमारे
1: आपको
2: श्रोता
1: भी
2: हमारे
1: पता
2: साथ
1: है कि
2: जुड़ते
1: जैसे मान
2: हैं।
1: लीजिए मेरे को इस आंसर क्वेश्चन का आंसर नहीं पता था, फिर मैं एकदम जवाब देता हूँ तो कहीं ना कहीं, अब मैंने पढ़ा था ये रिसेंटली ही,
2: जी
1: ये जो आपने प्रश्न पूछा है, इस
2: जी बिल्कुल,
1: और ध्यान दें मैडम, और मतलब अच्छा है ये प्रोग्राम।
2: आपकी इस बात से हम बिल्कुल सहमत हैं, और हम अपने श्रोताओं को भी याचना जो
0: जी
2: है
0: बिल्कुल,
2: सीमित
1: महिमा
2: प्रयास
1: एक मर्यादित लैंग्वेज में भी बात करे तो आपसे अच्छा लगेगा, क्योंकि आपका सीधा नाम लेके कुछ लिसनर बात करते जो अच्छा कहीं भी नहीं लगता है। अब मान लीजिए मैं आपसे नाम लेके बात करूँ, थोड़ा सा रिस्पेक्ट के साथ करें, क्योंकि प्रोग्राम की मर्यादा भी इसी में है।
2: जी। और अब प्रश्नों पर फिर से आ जाते
1: जी
2: हैं
1: जी
2: वापस,
1: बिल्कुल
2: और
1: बिल्कुल
2: अगला
1: बिल्कुल।
2: प्रश्न रामधारी जी आपके लिए है।
0: आपको बताना है कि मिलानो कोर्टिना 2026 विंटर ओलंपिक्स के लिए किसे टॉर्च बियरर चुना गया है?
1: इंडिया की तरफ से, इंडिया
0: जी
1: की तरफ से मैडम है अपने एक जम्मू कश्मीर के खिलाड़ी, अभी मेरे भूल गया मैं, धन्यवाद मैम।
2: कार्यक्रम में हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। और सवाल यही, अगला प्रश्न अगले साथी की ओर बढ़ते हैं इस प्रश्न को लेकर।
0: हेलो हेलो हेलो हेलो
2: हेलो
0: साथियों, बढ़ते हमारे अगले प्रश्न की ओर, जो हमने आपसे पूछा था कि मिलानो कोर्टिनो 2026 विंटर ओलंपिक्स के लिए किसे टॉर्च बियरर चुना गया है।
3: हेलो,
0: हेलो
3: राहुल बात कर रहा हूँ मैम।
0: जी राहुल जी, आपका फिर से स्वागत है। आपने प्रश्न सुना था
3: क्या है दो क्या बोला था? मिलानो कोर्टिया में
0: कॉर्टिना 2026 विंटर ओलंपिक्स के लिए किसे टॉर्च बियरर चुना गया है?
3: कुणाल कोठिया।
0: जी नहीं, ये सही जवाब नहीं है। इसके लिए हमारे दो साथी हो चुके हैं। आपको बता दें कि ये रहेंगे हमारे अभिनव बिंद्रा, जो एक हमारे पहले ही मेडलिस्ट भी हैं ओलंपिक्स में।
2: और अब आगे बढ़ते हैं। अंतर्राष्ट्रीय प्रकाश दिवस हाल ही में अभी कब मनाया गया है? अंतर्राष्ट्रीय
3: हेलो
2: प्रकाश दिवस। हेलो,
4: जी नमस्कार मैडम।
2: नमस्कार जी, नाम बताएं।
4: उमेश बात कर रहा हूँ।
2: जी उमेश, आपका स्वागत है। अंतर्राष्ट्रीय प्रकाश दिवस कब मनाया गया?
4: ये 16 मई को।
2: बिल्कुल सही और सटीक उत्तर है।
0: और आपके लिए अगला प्रश्न कि पृथ्वी पर सबसे दक्षिणी सक्रिय ज्वालामुखी कौन सा है?
4: कोटोपेक्षी।
0: जी नहीं।
2: तो वक्त हमें अब और इजाज़त नहीं दे रहा है याचना कि प्रश्न और उत्तर का सिलसिला हम यूं ही जारी रखें। इस प्रश्न का सही जवाब हम अपने साथियों को बता देते हैं।
0: जी बिल्कुल महिमा, और ये है माउंट एरेबस, जो एंटार्क्टिका का दूसरे सबसे ऊंचा पर्वत है।
2: और यहीं पर इस कार्यक्रम को संपन्न करते हैं। दीजिएगा इजाज़त अपने रेडियो साथी याचना और महिमा को। नमस्कार, नमस्कार।

0: अभी आपने सुना कार्यक्रम युवा संसार, आकाशवाणी का ये रोहतक केंद्र है। स्टूडियो की घड़ी में शाम के 6 बजने को है। कुछ ही पलों में आप सुनेंगे हिंदी में समाचार। ये हिंदी में समाचार दिल्ली केंद्र से रिले किए जाएंगे।
1: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं लवलीन निगम। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और नॉर्वे के प्रधानमंत्री योनास गोरस्टोर ने ओस्लो में प्रतिनिधिमंडल स्तर की वार्ता की। दोनों नेताओं ने भारत नॉर्वे संबंधों को हरित रणनीतिक साझेदारी के स्तर तक बढ़ाने पर सहमति व्यक्त की, जो स्वच्छ ऊर्जा, नीली अर्थव्यवस्था और हरित परिवर्तन के क्षेत्रों में सहयोग बढ़ाने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है।
2: भारत और नॉर्वे की ग्रीन स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप पूरे विश्व के लिए लाभदायक होगा। नॉर्वे आज इंडो पैसिफिक ओशन इनिशिएटिव से जुड़ रहा है। दो बड़े मैरिटाइम देश होने के नाते हम साथ मिलकर मरीन इकोनॉमी, मैरिटाइम सिक्योरिटी और कैपेसिटी बिल्डिंग में सहयोग को मजबूत करेंगे।
1: वार्ता के दौरान दोनों नेताओं ने द्विपक्षीय संबंधों के सभी पहलुओं की समीक्षा की और व्यापार तथा निवेश, चक्रीय अर्थव्यवस्था, नवीकरणीय ऊर्जा, शिक्षा, विज्ञान और प्रौद्योगिकी, कृत्रिम बुद्धिमत्ता, अंतरिक्ष और आर्किटेक्ट क्षेत्र सहित विभिन्न क्षेत्रों में सहयोग को और मजबूत करने पर सहमति जताई। दोनों नेताओं ने भारत EFTA व्यापार तथा आर्थिक साझेदारी समझौते से उत्पन्न होने वाली विशाल अवसरों, विशेष रूप से व्यापार, प्रौद्योगिकी सहयोग और रोजगार सृजन के क्षेत्र में भी प्रकाश डाला। वार्ता के बाद दोनों नेताओं ने एक संयुक्त प्रेस विज्ञप्ति जारी की। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आतंकवाद के खिलाफ भारत के साथ मजबूती से खड़े रहने के लिए नॉर्वे को धन्यवाद दिया। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह आज वियतनाम की राजधानी हनोई पहुंचे। वे आज से वियतनाम और दक्षिण कोरिया की यात्रा पर हैं। सोशल मीडिया पोस्ट में रक्षा मंत्री ने कहा कि इस दौरान सामरिक सहयोग बढ़ाने, रक्षा औद्योगिक साझेदारी मजबूत करने, समुद्री सहयोग सुदृढ़ करने और हिंद प्रशांत क्षेत्र में शांति और स्थिरता को बढ़ावा देने पर ध्यान केंद्रित किया जाएगा। सरकार ने कहा है कि पश्चिम एशिया संकट के दौरान आयात में व्यवधान के बावजूद देश के तेल शोधक कारखाने सामान्य रूप से काम

0: रहे हैं और भारत के पास कच्चे तेल का पर्याप्त भंडार है। पश्चिम एशिया में हाल की घटनाओं पर आज नई दिल्ली में आयोजित अंतर मंत्रालय प्रेस वार्ता को संबोधित करते हुए पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय की संयुक्त सचिव सुजाता शर्मा ने कहा कि देश में पेट्रोल, डीजल, एलपीजी और प्राकृतिक गैस के पर्याप्त भंडार हैं। रसायन और उर्वरक मंत्रालय की संयुक्त सचिव अपर्णा एस शर्मा ने कहा कि खरीफ सीजन के लिए उर्वरक की उपलब्धता सभी राज्यों में 50% से अधिक है। विदेश मंत्रालय खाड़ी के अपर सचिव असीम महाजन ने कहा कि भारतीय दूतावास और वाणिज्य दूतावास 2400 घंटे हेल्पलाइन संचालित कर रहे हैं। इस बीच ईरान के राष्ट्रपति मसूद पेजिश्कियन ने अमेरिका के साथ बातचीत करने के अपने निर्णय को उचित ठहराया है और कहा है कि कूटनीति में गरिमा जरूरी है, लेकिन ईरान अपने राष्ट्रीय अधिकारों की रक्षा करना जारी रखेगा। उधर अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने यूरेनियम के भंडारों, प्रतिबंधों में राहत और पश्चिम एशिया में महीनों से जारी संघर्ष के लिए क्षतिपूर्ति को लेकर बातचीत में गतिरोध रहते हुए ईरान को नई चेतावनी जारी की है। केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो सीबीआई ने अब तक दिल्ली, जयपुर, गुरुग्राम, नासिक, पुणे, लातूर और अहिल्यानगर में नीट परीक्षा पेपर लीक मामले में 10 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। पिछले 24 घंटों में सीबीआई ने 5 जगहों पर तलाश अभियान में कई आपत्तिजनक दस्तावेज, लैपटॉप और मोबाइल फोन जब्त किए। अब तक की जांच में परीक्षा से जारी हुए रसायन विज्ञान और जीव विज्ञान के प्रश्न पत्रों के वास्तविक स्रोत का पता चला है। प्रश्न पत्र लीक होने के आरोपों के बाद परीक्षा रद्द कर दी गई थी। पश्चिम बंगाल सरकार ने संस्थागत भ्रष्टाचार और महिलाओं के खिलाफ अत्याचारों की जांच के लिए 2 जांच आयोगों का गठन किया है। संस्थागत भ्रष्टाचार की जांच करने वाले आयोग की अध्यक्षता कलकत्ता उच्च न्यायालय के सेवानिवृत्त न्यायाधीश बिस्वजीत बसु करेंगे। पूर्व सरकार के दौरान महिलाओं के खिलाफ अत्याचारों की जांच करने वाले आयोग की अध्यक्षता कलकत्ता उच्च न्यायालय की सेवानिवृत्त न्यायाधीश समाप्ति चटर्जी करेंगी। मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी ने बताया कि दोनों आयोग 1 जून से काम शुरू करेंगे। आईपीएल क्रिकेट में आज शाम 7:30 बजे चेन्नई में चेन्नई सुपर किंग्स का सामना सनराइजर्स हैदराबाद से होगा। अंक तालिका में तीसरे स्थान पर मौजूद हैदराबाद जीत दर्ज कर प्लेऑफ के और करीब आना चाहेगा, जबकि चेन्नई की नजर शीर्ष 4 में प्रवेश करने की होगी। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
1: मीडियम वेव 262.47 मीटर यानी 1143 किलो हर्ट्ज पर आकाशवाणी का ये रोहतक केंद्र है। प्रस्तुत है हमारे केंद्र से आज और कल प्रसारित होने वाले कार्यक्रमों की रूपरेखा। पहले आज के शीर्ष कार्यक्रम, पब्लिक स्पीक सुनेगा रात 9:30 बजे जिसे दिल्ली केंद्र से रिले किया जाएगा। साप्ताहिक समीक्षा शाम 6:30 बजे जिसे चंडीगढ़ केंद्र से रिले किया जाएगा। शाम 6:20 पर कृषिगत कार्यक्रम के अंतर्गत डॉक्टर रवि कांत से बातचीत का विषय रहेगा खाली खेतों में चूहे मार अभियान। इसके अलावा शाम 7 बजे फोन इन कार्यक्रम रहेगा चौपाल। रात 10 बजे शास्त्रीय संगीत कार्यक्रम के अंतर्गत आप सुनेंगे सुरेंद्र कुमार का सितार पर बजाया राग यमन। फिल्म संगीत हम आपको सुनवाएंगे शाम 7:30 बजे। फरमाइशों गीतों का कार्यक्रम मन चाहेगी तो आप सुनेंगे रात 10:30 बजे। एक फिल्म से कार्यक्रम प्रसारित किया जाएगा 9:15 पर। सुगम संगीत कार्यक्रम का समय रहेगा 8:25 का। ये थे हमारे आज के शेष कार्यक्रम और अब कल के कुछ प्रमुख आकर्षण। कल 6:50 पर कृषि की बातों में जानकारी दी जाएगी पशुधन की देखभाल विषय पर। कल 7:15 पर विविधा कार्यक्रम प्रसारित किया जाएगा जिसमें आप सुनेंगे कानूनी वार्ता, विषय रहेगा साइबर सुरक्षा की कानूनी पक्ष। वार्ताकार होंगी श्रीमती कामिनी देवी। कल 7:25 पर आप सुनेंगे कार्यक्रम सुबह सवेरे। प्रायोजित कार्यक्रम प्रसारित होगा कल 12:30 और शाम 5:45 पर। युवा संसार इस कार्यक्रम को आप सुनेंगे कल शाम 5:30। कल शाम 6:20 पर कृषि जगत कार्यक्रम में डॉक्टर भूपेंद्र सिंह से बातचीत का विषय रहेगा मधुमक्खी की देखभाल। और शाम 7 बजे ग्रामीण संसार कार्यक्रम में डॉक्टर विक्रमादित्य से बातचीत का विषय रहेगा पर्यावरण संरक्षण में हमारा योगदान। कल 2:30 पर प्रसारित होगा खेत कल्याण जिसमें चर्चा का विषय रहेगा जैविक खेती का महत्व, थारी पसंद। इस कार्यक्रम का प्रसारण समय रहेगा 9:30 का। लोक संगीत कार्यक्रम में कल 8:30 कलाकार होंगे DC सिंह। फिल्म संगीत हम आपको सुनाएंगे कल 9:00 और शाम 7:30। चित्रपट संगीत को आप सुनेंगे कल दोपहर 1:10 पर। फरमाइशों गीतों का कार्यक्रम मन चाहेगी सुनेंगी रात 10:30। एक फिल्म से कार्यक्रम प्रसारित किया जाएगा कल रात 9:15 पर। सुगम संगीत कार्यक्रम सुनेगा रात 8:25 पर। अभी आप सुन रहे थे हमारे केंद्र से आज और कल प्रसारित होने वाले कार्यक्रमों की रूपरेखा। लीजिए सुनिए कुछ गुमशुदा व्यक्तियों के बारे में सूचनाएं। सलोनी जो कि गांव सूरजपुर परोलिया जिला बरेली से लापता है, इनका हुलिया इस प्रकार है। रंगे हुआ लमुतरा चेहरा, हर्षपुष्ट शरीर, कद 5 फुट, सेहत ठीक, पहनावा जो है वो उन्होंने सूट सलवार पहने हैं। कोई भी जानकारी हो तो थाना मछरोली को इनकी जानकारी दें। गांव बंसी जिला रोहतक से राकेश लापता हैं, जिनका होलिया इस प्रकार है। 5 फुट 5 इंच कद है उनका। उम्र 43 साल है। बाएं पैर के पंजे के बीच की उंगली कटी हुई है। कोई भी जानकारी हो तो थाना लाखन माजरा को जानकारी दें। सुनीता कुमारी जो कि भिवानी से लापता हैं और इनका होलिया इस प्रकार है। इन्होंने हरे रंग की साड़ी पहनी है पर पैरों में सफ़ेद रंग की चप्पल है और रंग साफ है। कोई भी जानकारी हो तो आप थाना भिवानी को इनकी जानकारी दे सकते हैं। लीजिए सुनिए एक अन्य सूचना। नेहा जो कि बड़वा जिला भिवानी से लापता है, इनका होलिया इस प्रकार है। कद 5 फुट है। रंगोरा, पैरों में चप्पल पहने हैं, हरा रंग का टॉप पहने हैं और नीली जीन्स पहने हैं। आयु 21 साल है। कोई भी जानकारी हो तो आप थाना जिला भिवानी को दे सकते हैं जानकारी। कुलदीप जो कि लापता है मुंडाल भिवानी से, इनका उलिया इस प्रकार है। उम्र 21 साल, कद 5 फुट 7 इंच, ये गूंगे बहरे हैं और एक कान में इन्होंने बाली पहनी है। पेंट शर्ट जामुनी रंग का पहना है। कोई जानकारी हो तो थाना जिला भिवानी को इनकी जानकारी दें। और अंजू जो कि लापता है भिवानी से, इनका हुलिया इस प्रकार है। रंगोरा, पतला फुर्तला शरीर, ब्लैक रंग का इन्होंने सूट पहना है और प्लाजो पहना है। पैरों में चप्पल पहनी है। कद 5 फुट 28 वर्ष है। कोई जानकारी हो तो थाना भिवानी को इनकी जानकारी दें। अभी आप सुन रही थी गुमशुदा व्यक्तियों के बारे में सूचनाएं। आकाशवाणी का ही रोहतक केंद्र है।
2: दीदी नौकरी लग गई।
3: अरे वाह, बधाई हो। तो अब तो ढेर सारी शॉपिंग।
2: हाँ दी, नया मोबाइल।
3: अरे रुको शहजादे, सैलरी से पहले खर्चे।
2: इंस्टेंट लोन भी तो मिलता है।
3: पहले बजट बनाना सीखो फिर खर्च करो।
2: पर दीप,
3: देखो कमाई का एक हिस्सा हमेशा बचाना चाहिए, लेकिन पार्टी देने से नहीं बचोगे तुम।
2: हाँ दी, पार्टी मेरी, बजट तुम्हारा।
1: आकाशवाणी का रोहतक केंद्र है। अब आप सुनेंगे प्रादेशिक समाचार जिन्हें चंडीगढ़ केंद्र से ले किया जाएगा।

0: कई फैसले लिए। मंत्रिमंडल ने वर्ष 2024-25 के दौरान 17 नवंबर 2021 की अधिसूचना के तहत जारी पिछड़ा वर्ग ए और बी के नॉन क्रीमी लेयर के प्रमाण पत्रों को वैधता देने संबंधी प्रस्ताव को मंजूरी दी। देश के पास कच्चे तेल का पर्याप्त भंडार मौजूद, एलपीजी और तेल की आपूर्ति सुचारू रूप से जारी और चंडीगढ़ प्रशासन ने शहर के पेट्रोल पंपों पर अस्थायी रूप से ईंधन का नियंत्रित वितरण लागू किए जाने संबंधी समाचारों का खंडन किया। अब समाचार विस्तार से। वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने कहा है कि वैश्विक चुनौतियों और अनिश्चितताओं के बावजूद भारत तेजी से आगे बढ़ रहा है। आज नई दिल्ली में भारत व्यापार महोत्सव की वेबसाइट जारी करते हुए श्री गोयल ने कहा कि आगे बढ़ने का उत्साह कभी कम नहीं होना चाहिए। उन्होंने कहा कि विकसित भारत 2047 के लक्ष्य को हासिल करने के प्रति भारत के उद्योगों, व्यापारिक समुदाय और लोगों में हौसला इतना मजबूत है कि दुनिया की कोई भी ताकत भारत को रोक नहीं सकती।
1: विकसित भारत 2047 जो प्रधानमंत्री जी ने हम सबको प्रोत्साहित किया है अमृत काल में मेहनत करने के लिए, वो लक्ष्य बड़ा है, पर भारत के उद्योग व्यापार जगत, भारत के लोगों में जो आज उत्साह है और सफलता के लिए जिस प्रकार से पूरा देश 140 करोड़ लोग एकत्र हुए हैं, मुझे लगता है कि कोई ताकत दुनिया की ना हमें रोक पाएगी ना हमारे को थम पाएगी।
0: श्री गोयल ने कहा कि भारत व्यापार महोत्सव का उद्देश्य स्वदेशी व्यापार को बढ़ावा देना और यह सुनिश्चित करना है कि भारतीय सामान और सेवाएं पूरे देश और दुनिया भर में और भी तेजी से फैलें।

0: हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी की अध्यक्षता में आज चंडीगढ़ में हुई मंत्रिमंडल की बैठक में राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र में एग्रीगेटर लाइसेंस देने के लिए नियमों को मंजूरी देने सहित कई फैसले लिए गए। सरकारी प्रवक्ता ने बताया कि एग्रीगेटर लाइसेंस देने के लिए नियमों को हरियाणा मोटर वाहन नियम 1993 के तहत सड़क परिवहन एवं मुख्य मार्ग मंत्रालय द्वारा जारी दिशा निर्देश और वायु गुणवत्ता प्रबंधन आयोग के निर्देशों के अनुसार मंजूरी दी गई है। यह फैसला राज्य के राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र में पड़ते जिलों में बेहतर परिवहन को बढ़ावा देने, वाहनों से होने वाले प्रदूषण को रोकने के लिए लिया गया है। संशोधित नियमों के तहत इस वर्ष 1 जनवरी से राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र में एग्रीगेटर्स, डिलीवरी सर्विस प्रोवाइडर्स और ई कॉमर्स कंपनियों के बेड़े में शामिल नई गाड़ियां आवश्यक तौर पर बैटरी, सीएनजी या किसी दूसरे स्वच्छतम ईंधन पर से चलने वाली होंगी। नए नियमों के अनुसार एग्रीगेटर्स और डिलीवरी सर्विस प्रोवाइडर को यात्रियों के लिए कम से कम 5 लाख रुपए का बीमा कवरेज, चालकों के लिए कम से कम 5 लाख रुपए का स्वास्थ्य बीमा और वाहन चलाने वाले चालकों के लिए कम से कम 10 लाख रुपए का अवधि बीमा करवाना अनिवार्य होगा। इन नियमों के तहत गाड़ियों में व्हीकल लोकेशन ट्रैकिंग डिवाइस, पैनिक बटन, फर्स्ट एड किट और आग बुझाने का यंत्र लगाना भी अनिवार्य किया गया है। एग्रीगेटर्स को यात्री की मदद और शिकायत दूर करने के लिए 7 दिन 24 घंटे काम करने वाले नियंत्रण कक्ष और कॉल सेंटर भी बनाने होंगे। हरियाणा मंत्रिमंडल ने 17 नवंबर 2021 की अधिसूचना के तहत वर्ष 2024-25 के दौरान जारी पिछड़ा वर्ग ए और पिछड़ा वर्ग बी के नॉन क्रीमी लेयर प्रमाण पत्रों को वैधता देने संबंधी प्रस्ताव को मंजूरी दे दी है। एक सरकारी प्रवक्ता ने बताया कि यह निर्णय हरियाणा लोक सेवा आयोग द्वारा वर्ष 2024 में विभिन्न विषयों में स्नातकोत्तर अध्यापक पीजीटी के 3069 पदों के लिए जारी भर्ती विज्ञापनों के मद्देनजर लिया गया है, क्योंकि 23 जुलाई 2024 को जारी भर्ती विज्ञापन के अनुसार इन श्रेणियों से संबंधित उम्मीदवारों को नवीनतम सरकारी निर्देशों और 16 जुलाई 2024 की अधिसूचना के अनुरूप नए प्रमाण पत्र जमा करने की आवश्यकता थी और पहले जारी किए गए प्रमाण पत्रों को हरियाणा लोक सेवा आयोग द्वारा वैध नहीं माना जा रहा था। इस कारण पंजाब और हरियाणा उच्च न्यायालय के समक्ष कई याचिकाएं भी दायर की गई थी, जो उम्मीदवार 2021 की अधिसूचना के अनुसार नॉन क्रीमी लेयर के अंतर्गत वर्गीकृत थे, वे संशोधित मानदंडों के तहत भी नॉन क्रीमी लेयर श्रेणी में ही बने रहेंगे। प्रादेशिक समाचार आकाशवाणी चंडीगढ़ से प्रसारित किए जा रहे हैं। हमारे बुलेटिनों और ताज़ा समाचारों के लिए आप हमारी वेबसाइट newsonair.gov.in पर लॉग इन कर सकते हैं। यह समाचार हमारे YouTube चैनल और X हैंडल आकाशवाणी न्यूज चंडीगढ़ पर भी उपलब्ध है। हरियाणा मंत्रिमंडल की बैठक में फील्ड कैडर के अधीक्षक के पद के लिए हरियाणा उच्चतर शिक्षा विभाग उप कार्यालय कॉलेज कैडर ग्रुप बी सेवा नियम 2026 को मंजूरी दी। ये नियम आधिकारिक राजपत्र में उनके प्रकाशन की तिथि से लागू होंगे। नए नियमों के अनुसार नियुक्ति के लिए केवल शैक्षणिक योग्यता और अनुभव, पदोन्नति और स्थानांतरण या प्रतिनियुक्ति के माध्यम से तय किया जाएगा। उप अधीक्षक के रूप में 1 वर्ष का अनुभव या सहायक के रूप में 10 वर्ष का अनुभव होना और अधीक्षक के रूप में 1 वर्ष का अनुभव, मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से स्नातक की डिग्री और मैट्रिक में 1 विषय के रूप में हिंदी या संस्कृत या उच्च शिक्षा में 1 विषय के रूप में हिंदी विषय होना अनिवार्य किया गया है। देश के पास कच्चे तेल का पर्याप्त भंडार मौजूद है और सभी रिफाइनरियां सामान्य रूप से काम कर रही हैं। आज नई दिल्ली में पश्चिम एशिया संकट की स्थिति पर हुई अंतर मंत्रालय ब्रीफिंग में केंद्रीय पेट्रोलियम मंत्रालय की संयुक्त सचिव सुजाता शर्मा ने यह जानकारी दी। उन्होंने कहा कि देश में LPG और तेल की आपूर्ति सुचारू रूप से जारी है।
1: हमारी रिफाइनरीज नॉर्मल ऑपरेशन पर है और हमारे पास सफिशिएंट क्रूड इन्वेंट्रीज हैं। पेट्रोल, डीजल, LPG और नेचुरल गैस के सफिशिएंट स्टॉक्स हैं और किसी भी LPG डिस्ट्रीब्यूटरशिप पर या रिटेल आउटलेट पर ड्राई आउट नहीं है, लेकिन कई जगह पर अफवाहों के चलते पैनिक बाइंग देखी जा रही है। ये भी देखा जा रहा है कि जो बल्क सेल था वो पंप सेल पर भी शिफ्ट हो रहा है।
0: उन्होंने कहा कि पश्चिम एशिया संकट पिछले 2.5 महीने से ज्यादा समय से जारी है और हॉर्मुज जलडमरू मध्य में स्थिति अभी भी सामान्य नहीं हुई है। उन्होंने बताया कि कच्चे तेल, प्राकृतिक गैस और LPG की वैश्विक कीमतों में तेजी से बढ़ोतरी हुई है, जिसका असर भारत के आयात पर भी पड़ रहा है। चंडीगढ़ प्रशासन ने शहर के पेट्रोल पंपों पर अस्थायी रूप से ईंधन का नियंत्रित वितरण लागू किए जाने संबंधी प्रसारित समाचारों का

0: खंडन किया है और इन्हें भ्रामक एवं फर्जी बताया है। इन खबरों में स्थानीय आपूर्ति संबंधी बाधाओं का हवाला देते हुए दोपहिया वाहनों के लिए 500 रुपए तथा चौपहिया वाहनों के लिए 1500 रुपए तक ईंधन सीमा निर्धारित किए जाने का दावा किया जा रहा है। चंडीगढ़ के उपायुक्त निशांत कुमार यादव ने स्पष्ट किया है कि चंडीगढ़ प्रशासन द्वारा पेट्रोल अथवा डीजल की बिक्री पर किसी प्रकार की कोई सीमा या प्रतिबंध लगाने संबंधी कोई आदेश जारी नहीं किया गया है। उन्होंने कहा कि चंडीगढ़ में ईंधन का पर्याप्त भंडार उपलब्ध है और तेल कंपनियों ने पुष्टि की है कि आपूर्ति बिना किसी बाधा से सुचारू रूप से जारी है। जींद के राजकीय महाविद्यालय में आज 59वें वार्षिक पुरस्कार वितरण समारोह का आयोजन किया गया। चौधरी रणबीर सिंह विश्वविद्यालय के कुलपति प्रोफेसर डॉक्टर रामपाल सैनी पुरस्कार वितरण समारोह में मुख्य अतिथि के रूप में शामिल हुए। उन्होंने शैक्षणिक, खेल, सांस्कृतिक, एनसीसी, एनएसएस और अन्य गतिविधियों में उत्कृष्ट प्रदर्शन करने वाले 450 से अधिक विद्यार्थियों को पुरस्कार देकर सम्मानित किया। समारोह के पश्चात मीडिया से बातचीत करते हुए डॉक्टर रामपाल सैनी ने महाविद्यालय के प्राचार्य डॉक्टर सत्यवान मलिक की प्रशंसा की। उन्होंने कहा कि राजकीय महाविद्यालय विद्यार्थियों के सर्वांगीण विकास के लिए निरंतर काम कर रहा है।
1: बड़ी खुशी की बात है कि इस कॉलेज ने अपनी जो धरोहर है, अपनी जो परंपरा है, उसको मेंटेन करके विद्यार्थियों के सर्वांगीण विकास का बीड़ा उठा रखा है। मैं इसके लिए यहाँ के प्रिंसिपल डॉक्टर सत्यवान मलिक जी और उनकी पूरी टीम को बहुत बधाई देता हूँ। ये भी बड़े कमाल की बात है कि कॉमर्स के तीनों टॉपर इसी कॉलेज के हैं, दूसरे पीजीडीसीए का टॉपर इसी कॉलेज के हैं और भी बहुत से विद्यार्थी हैं। खेल एक्टिविटीज में भी, स्पोर्ट्स में भी, एनसीसी एनएसएस में भी और पढ़ाई में भी।
0: अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने भारत व्यापार महोत्सव की वेबसाइट जारी की। श्री गोयल ने कहा, वैश्विक चुनौतियों और अनिश्चितताओं के बावजूद भारत तेजी से आगे बढ़ रहा है। हरियाणा मंत्रिमंडल ने राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र में एग्रीगेटर लाइसेंस देने के लिए नियमों को मंजूरी देने सहित कई फैसले लिए। मंत्रिमंडल ने वर्ष 2024-25 के दौरान 17 नवंबर 2021 की अधिसूचना के तहत जारी पिछड़ा वर्ग ए और बी के नॉन क्रीमी लेयर के प्रमाण पत्रों को वैधता देने संबंधी प्रस्ताव को मंजूरी दी। देश के पास कच्चे तेल का पर्याप्त भंडार मौजूद, एलपीजी और तेल की आपूर्ति सुचारू रूप से जारी और चंडीगढ़ प्रशासन ने शहर के पेट्रोल पंपों पर अस्थायी रूप से ईंधन का नियंत्रित वितरण लागू किए जाने संबंधी समाचारों का खंडन किया। इसी के साथ समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
2: मिडवेव 262.47 मीटर यानी 1143 किलो हर्ट्ज पर आकाशवाणी का ये रोहतक केंद्र है। स्टूडियो की घड़ी में शाम के 6:20 और 15 सेकंड हुए हैं। प्रस्तुत है कार्यक्रम कृषि जगत।

0: किसान भाइयों के पास रोटावेटर है या सुपर सीडर जैसी जो मशीनें आई हुई हैं, उनसे हम जो जुताई कर रहे हैं उससे क्या हुआ है कि जो नीचे वाले सोत हैं वो गहराई तक नहीं उठ पाते, इसलिए हमने उसकी जो गहरी जुताई है वो करना बहुत ज़रूरी है। और गहरी जुताई करने के लिए जो ये समय है ये सबसे बहुत सुनहरा टाइम है। इस समय में जो हमारे किसान भाई हैं वो इसका फ़ायदा उठाएं। मान लो हम जितनी भी अच्छी गहरी जुताई करेंगे सुबह सुबह जाकर बखत से जाकर ने अपना ट्रैक्टर है या जिन भाइयों के पास बैलों का साधन है वो ले जाकर कोशिश ये करें कि भाई हम उसकी जो गहरी जुताई है अपने खेत की करते हैं। और फिर एक बहुत ज़रूरी काम यह भी है भाइयों जिसकी हम पूरे साल तक सिफारिश कर रहा हूँ, वो है कि भाई देखो मिट्टी है हमारे खेत की उसकी क्या तासीर है वो हमने नहीं पता, क्योंकि ये सारी की सारी चीज़ें उस समय हमने पता लग गया है जिस समय हम उसकी जांच करा लें। एक उदाहरण के तौर पे एक बात कहना चाहूँगा मैं कि मान लो हमारा कोई बुखार बन गया और हम उसका जब तक सैंपल नहीं कहीं देंगे उसका ये नहीं पता लगेगा भाई ये किस तरह का बुखार है या इसके अंदर मान लो कोई टाइफाइड है या कोई दूसरी चीज़ है, तो जब तक उसकी पूरी जांच नहीं हो जाती जब तक उस बीमारी का कोई पता नहीं लगता। इसी प्रकार हम कुछ खर्चे ऐसे भी हैं एक किसान भाई के पास जो बार बार हमने खर्चे नहीं करने चाहिए लेकिन हम उन खर्चों को कर रहे हैं, उनको इसलिए कर रहे हैं कि हमने पता नहीं है। मान लो कुछ हमारे स्थान ऐसे हैं जहाँ पे जो DAP है वो कम डालना चाहिए लेकिन वहाँ किसान भाई ज़्यादा ज़्यादा DAP डाल रहे हैं, किसी चीज़ की खेत में कमी नहीं है फिर भी हम उसको डाल रहे हैं, तो उस चीज़ का भाई जब पता चल लगा हमने जिस समय हम अपने खेत की मिट्टी की जाँच करवा लेंगे। और रही बात फिर आ जाए बात कि भाई जो हमारा ट्यूबवेल है, ज़्यादा हमारे पास ट्यूबवेल के साधन हैं कि भाई जो हम खेत के अंदर पानी लगा रहे हैं वो कौन सा है और उस पानी के अंदर कौन से पोषक तत्व हैं, क्योंकि कुछ ज़मीन और मिट्टी के जो आपस का जो तालमेल है, कुछ खेतों में कुछ भाइयों ने ये भी कंधे हुए हमने सुना होगा कि भाई इस जगह पर जो मिट्टी और पानी का मेल है, ज़मीन भले ही थोड़ी ही कमज़ोर है लेकिन मिट्टी और पानी का जो मेल है उसके कारण इस जगह पर फसल अच्छी हुआ है, तो वो उस अच्छी होने का एक मुख्य कारण ये है कि भाई उसके अंदर मान लो किसी पोषक तत्व की कमी है और उसको पानी पूरा कर रहा है, तो वो फिर वो कमी पूरी हो जाएगी तो फिर हमारी निश्चित रूप से जो फसल है वो अच्छी होगी और हमारी पैदावार भी बढ़ेगी। इसलिए एक आम सिफारिश भाइयों ये एक रीज़ा है कि भाई हरेक किसान भाई मिट्टी की और पानी की अपनी जाँच ज़रूर करावे, क्योंकि ये बिल्कुल निःशुल्क हुआ है, हर उपमंडल स्तर पर हुआ है और उसमें करना के है कि हमने हम अपने खेत में गए एक किला जैसे उसमें हमने 5 या 6 जगह पे ध्यान ये रखना है कि उस जगह पे जैसे पहले कोई कुरडी जैसे गोबर की खाद है वो डली हुई ना हो, विशेषकर वहाँ ज़्यादा गड्ढा ना हो, पानी की ज़्यादा मार ना बनती हो या ज़्यादा ऊंचा ना हो, यानी कि एक समतल ही जगह पर 4-5 जगह से हम नमूने ले लें फिर उसको मिला लें और मिलाने के बाद फिर उसमें तो हम आधी किलो मिट्टी रख के एक पन्नी में डाल लें या फिर कोई ऐसी चीज़ हो जिसके अंदर कोई दूसरी चीज़ ना मिली हुई हो उसके अंदर डाल कर ना और हम जो प्रयोगशाला है उसमें दिया हुए, उसके शायद हमने हफ्ता या 10 दिन के बाद हमारी जो मिट्टी की जांच का जो सर्टिफिकेट है वो मिल जाएगा, उसके अंदर हमने ये पता लग जाएगा वह किस पोषक तत्व की कितनी कमी है और वो किस चीज़ से पूरी होगी। तो इसलिए हमने मिट्टी की और पानी की जांच करानी ज़रूरी है। और पानी की जांच के लिए भैया ने बता दें कि भाई एक बोतल ले लें साफ़ सुथरी ले लें और उसको पहले गर्म पानी से धो लें और फिर 1-1.5 घंटे तक अपना जो ट्यूबवेल है वो चला के जब उसका जो एक सही पानी है उस पानी को ले लें, क्योंकि कुछ किसान भाई क्या करें हैं कि एक बार ट्यूबवेल चलाया ट्यूबवेल चलाने के साथ वो सैंपल ले लिया उसके अंदर कुछ नला का पानी हो गया है कुछ ऊपर धारा का हो गया है कुछ यानी कि अलग अलग ही तासीर का पानी हो है जो हमारे ट्यूबवेल का असली पानी नहीं होता, इसलिए हमने उस पानी को लेना है जब ट्यूबवेल 1-1.5 घंटे तक चाल ले उसके बाद हमने पानी लेना है, मिट्टी और पानी की दोनों की हम जांच करा लें उसके बाद फिर ये हम निर्णय लें कि भाई हमने अपने खेत के अंदर कौन सा खाद कितना डालना है, वो भी वो जो लैब वाले वो सारी की सारी चीज़ है वो बता दें या अपने जो ADO साहब हैं या सब डिवीज़न लेवल पर जो अपने अधिकारी बैठे हैं उनसे दिखा कर हम अपनी ज़मीन की तासीर के बारे में पूर्ण रूप से जान सकते हैं। बाकी हमारा एक आध काम और भी है जिसमें एक मुख्य काम ये भी है भाई देखो हम सारा साल परेशान रहा हाँ और जो चूहे हैं वो पूरे के पूरे साल हमारी जो फसल है उसको भी बहुत ज़्यादा को बर्बाद करते हैं, हमारी फसल को काट के गिरते हैं। तो उनको मारने का एक जो सामूहिक अभियान है यदि वो चलाया जाए तो इस चीज़ से भी हम बहुत ज़्यादा कुछ बच सके हैं। और इसके बारे में क्या कुछ हमने मान लो तरीका अपनाना है, किस तरीके से करना है, उसमें एक बार डॉक्टर रविकांत जी आए थे, ये पूर्व प्रसारित बातचीत है भैयो, इसको सुनो और जो चूहे मारने का जो अभियान है उसके बारे में अपनी जो जानकारी है वो प्राप्त करें। तो भाई सुनो ये बातचीत है।
1: भाइयों आज की हमारी बातचीत का विषय रहेगा खाली खेतों में चूहे मार अभियान, और इसके लिए आज स्टूडियो में हमने आमंत्रित किया है डॉक्टर रविकांत जी को। आप जीव विज्ञान विभाग हरियाणा कृषि विश्वविद्यालय हिसार से पधारे। डॉक्टर साहब आपका स्टूडियो में स्वागत है।
2: धन्यवाद। भारत एक कृषि प्रधान देश है
1: जी,
2: जिसकी कृषि जलवायु विभिन्न प्रकार की है। जैसे आपने सुना होगा कोस कोस पर बदले वाणी और चार कोस पर पानी, ये बिल्कुल यथार्थ कहावत है। और भारत की लगभग 70% आबादी कृषि और कृषि से जुड़े हुए कार्यों से संबंधित है। चूहे जो है सदियों से मनुष्य के साथ रहते आ रहे हैं और लगातार वो हमारी फसलों को और भंडार ग्रहों को नुकसान पहुंचाते हैं
1: जी।
2: आज का जो हमारा विषय है खाली खेतों में क्या है चूहे मार अभियान चलाना या चूहों की रोकथाम करना, तो उसके लिए सबसे पहले हम क्या करेंगे कि हमें सबसे पहले क्या है प्रजातियों की पहचान करनी है
1: जी।
2: पहचान करने से पहले एक उपाय और करना होता है कि हम अगर खेतों में जाते हैं तो देखते हैं कि हमें बिल मिलते हैं, तो सबसे पहले हमें जो जिंदा बिल हैं कि जिनमें चूहे रह रहे हैं उनकी संख्या का अनुमान लगाना होता है। उसके लिए एक दिन पहले हम कोई लकड़ी का फट्टा लेकर चूहे के बिलों को क्या है मिट्टी से ढक देते हैं और पूरी रात छोड़ने के बाद सुबह देखते हैं कि उसमें से मिट्टी कितने चूहों ने बाहर निकाल रखी है। उसका तात्पर्य यह है कि उसमें जो चूहे हैं, जो बंद बिल है उसका मतलब है कि उसमें चूहे जगह छोड़ चुके हैं, वहां दवाई डालने की जरूरत नहीं है, आपकी दवाई का पैसा खराब होगा
1: जी।
2: सिर्फ जो जिंदा बिल हमें मिलते हैं हम वही आगे दवाइयां डालेंगे
1: जी।
2: उससे पहले बाद में हम क्या करते हैं चूहों की प्रजातियों की पहचान कर लेते हैं कि जैसे शुष्क जलवायु और बरानी क्षेत्रों में हमें भारतीय जरबिल मिलता है।
0: भाइयों बातचीत जो बाकी की बची हुई है वो भैया ने जरूर सुनवाएंगे, लेकिन उससे पहले सुनेंगे साप्ताहिक समाचार समीक्षा, और साप्ताहिक समाचार समीक्षा के तुरंत बाद भैया ने सुनवाएंगे ये बाकी की बची हुई बातचीत।

0: ਇਹ ਆਕਾਸ਼ਵਾਣੀ ਹੈ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਸੁਣ ਰਹੇ ਹੋ ਵਿਵਿਧ ਭਾਰਤੀ ਦਾ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਕੇਂਦਰ FM 107.2 MHz ਤੇ। ਸਰੋਤਿਓ ਲਓ ਹੁਣ ਸੁਣੋ ਹਰਿਆਣਾ ਰਾਜ ਦੀ ਹਫ਼ਤਾਵਾਰੀ ਸਮਾਚਾਰ ਸਮੀਖਿਆ।
1: प्रस्तुत है हरियाणा राज्य की साप्ताहिक समाचार समीक्षा। लेखक हैं वरिष्ठ पत्रकार संजीव शर्मा, वाचिका अमन सैनी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने राष्ट्र सर्वोपरि, कर्तव्य सुख से ऊपर को ध्यान में रखकर देशवासियों को भविष्य की जरूरतों के मद्देनजर बचत का संदेश दिया है। प्रधानमंत्री ने इस संदेश के बाद समूचा देश एकजुटता के साथ खड़ा हो गया है। भारतवासियों ने भी यह दिखा दिया है कि उनके लिए पहले देश है। देश अगर सुरक्षित होगा तो उसमें रहने वाले नागरिक समय सुरक्षित हो जाएंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने हाल ही में हैदराबाद में एक कार्यक्रम के दौरान देशवासियों को सात अपीलें करके बड़ा संदेश दिया है। पश्चिम एशिया में बढ़ते तनाव, कच्चे तेल की कीमतों में तेजी और बढ़ते आयात बिल के बीच प्रधानमंत्री मोदी ने लोगों से कुछ समय के लिए अपनी सुविधाओं में छोटी छोटी कटौती करने की अपील की है ताकि देश की अर्थव्यवस्था को मजबूती मिल सके। प्रधानमंत्री ने कंपनियों और दफ्तरों से कहा कि जहां संभव हो वहां वर्क फ्रॉम होम को बढ़ावा दिया जाए। इससे पेट्रोल और डीजल की खपत कम होगी, ट्रैफिक का दबाव घटेगा और प्रदूषण में भी कमी आएगी। उन्होंने लोगों से बस, मेट्रो, कारपूल जैसी सुविधाओं का अधिक इस्तेमाल करने की भी अपील की जिससे ईंधन पर निर्भरता कम हो सके। भारत अपनी जरूरत का ज्यादातर सोना विदेशों से आयात करता है जिससे विदेशी मुद्रा भंडार पर बड़ा दबाव पड़ता है। उन्होंने लोगों से गैर जरूरी सोने की खरीदारी कुछ समय के लिए टालने की अपील की। इससे देश की अर्थव्यवस्था को काफी राहत मिल सकती है। घरों में खाने के तेल की अधिक खपत को कम करने और उसका सीमित उपयोग करने से आयात बिल में कमी आएगी। प्रधानमंत्री ने लोगों से मेड इन इंडिया उत्पादों को प्राथमिकता देने, विदेशी ब्रांड्स पर जरूरत से ज्यादा निर्भरता कम करते हुए स्थानीय उद्योगों को मजबूती प्रदान करने तथा आत्मनिर्भर भारत अभियान को आगे बढ़ाने के लिए प्रधानमंत्री ने अपील की है। उनकी इस अपील के बाद जहां देश की जनता ने अमल करना शुरू कर दिया है, वहीं विपक्ष ने इस मुद्दे पर राजनीति करने का प्रयास किया, लेकिन देशवासियों ने विपक्ष के एजेंडे को खारिज कर दिया। प्रधानमंत्री द्वारा वर्क फ्रॉम होम के पीछे ईंधन की बचत व ट्रैफिक के दबाव को कम करना, पेट्रोल व डीजल की खपत को कम करने के पीछे पब्लिक ट्रांसपोर्ट को बढ़ावा देना, खाने में तेल के इस्तेमाल को कम करने के पीछे आयात बिल कम करना मुख्य उद्देश्य रहा है। इसी प्रकार रासायनिक खाद पर निर्भरता को हटाने के पीछे प्राकृतिक खेती को बढ़ावा देना, विदेश यात्रा न करने के पीछे घरेलू पर्यटन को बढ़ावा देना, विदेशी ब्रांड का इस्तेमाल कम करने के पीछे स्वदेशी को बढ़ावा देना है। प्रधानमंत्री की इस अपील का असर हरियाणा में भी देखने को मिल रहा है। हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी के काफिले में पहले जहां 10 से अधिक गाड़ियां थी, वहीं अब उन्होंने गाड़ियों की संख्या 4 कर दी है। सरकार ने अब अपनी बैठकें वर्चुअल मोड पर करने का फैसला किया है। हरियाणा के कैबिनेट मंत्री रणबीर गंगवा ने भी अपना काफिला कम कर दिया है। पानीपत के विधायक प्रमोद विज ट्रेन से यात्रा करके चंडीगढ़ पहुंचे तो वहीं करनाल के सांसद एवं केंद्रीय मंत्री मनोहर लाल भी नई दिल्ली से चंडीगढ़ ट्रेन की सवारी करके पहुंचे। हरियाणा के कैबिनेट मंत्री अरविंद शर्मा जहां साइकिल चलाकर भाजपा कार्यालय पहुंचे तो वहीं उचाना के विधायक देवेंद्र अत्री बस में सफर करके अपने हल्के में गए। हरियाणा के राज्यपाल प्रोफेसर असीम घोष के नेतृत्व में चलने वाली हरियाणा रेडक्रॉस सोसायटी के वाइस चेयरमैन अंकुश मिगलानी ने सभी जिला सचिवों तथा कर्मचारियों को सप्ताह में 2 दिन पैदल, साइकिल से अथवा दोपहिया वाहन से कार्यालय आने के लिए कहा है। हरियाणा के अन्य कई विभाग भी अब ईंधन की बचत के उद्देश्य से सप्ताह में 1 दिन कार फ्री डे मनाएंगे। हरियाणा में कई निजी क्षेत्र के दफ्तरों में भी सरकार की इस पहल का असर देखने को मिल रहा है। कई कंपनियों ने अपने यहां कोरोना काल की तरह वर्चुअल बैठकें शुरू कर दी हैं और कई जगह कर्मचारी गाड़ी शेयरिंग पर आ रहे हैं। प्रधानमंत्री मोदी ने किसानों से प्राकृतिक खेती अपनाने की अपील की है ताकि यूरिया और अन्य रासायनिक उर्वरकों के आयात पर निर्भरता कम हो सके। हरियाणा ने इस दिशा में पहले ही शुरुआत कर दी है। प्रदेश के कई जिलों में जहां प्राकृतिक खेती करवाई जा रही है, वहीं हरियाणा सरकार इस खेती से पैदा होने वाले उत्पादों की बिक्री के लिए अलग से 10 मंडियां शुरू करने जा रही है। इससे प्राकृतिक खेती करने वाले किसानों को प्रोत्साहन मिलेगा। एक तरफ जहां प्रधानमंत्री ने देशवासियों को बचत की अपील की है, वहीं दूसरी तरफ साधनों को बढ़ावा देने पर भी काम शुरू हो चुका है। प्रधानमंत्री के विदेश दौरे के दौरान अबुधाबी नेशनल ऑयल कंपनी और भारतीय रणनीतिक पेट्रोलियम रिजर्व लिमिटेड के बीच हुए समझौते के तहत UAE भारत के रणनीतिक भंडारों में 3 करोड़ बैरल तक क्रूड ऑयल का भंडारण करेगा। इसके अलावा दोनों देशों के बीच एलपीजी की आपूर्ति को लेकर भी एक महत्वपूर्ण समझौते पर हस्ताक्षर किए गए हैं। इसके अलावा रूस की सरकारी तेल कंपनी रोसनेफ्ट भारतीय समूह रिलायंस इंडस्ट्रीज को प्रतिदिन लगभग 5 लाख बैरल कच्चे तेल की आपूर्ति करेगी। भारत सरकार के इन समझौतों से देश भविष्य की जरूरतों को पूरा तो करेगा ही, लेकिन वर्तमान में की गई बचत देशवासियों के भविष्य को सुरक्षित करने में अहम भूमिका निभाएगी। ऐसे में प्रत्येक देशवासी का यह फर्ज बनता है कि वह अपनी आने वाली पीढ़ियों को ध्यान में रखते हुए आज से ही बचत की आदत डाले। इसी के साथ समाचार समीक्षा समाप्त हुई।
2: तो भैया ने ये तो सुनी साप्ताहिक समाचार समीक्षा। और देखो, जैसा कि हम बात करें भाई, समय के हिसाब से यदि हम काम करते रहे हैं तो जो आज हम काम कर रहे हैं उसका जो परिणाम है वो हमने आगे आने वाला जो समय है उसमें देखने मिला है। और देखो, बार बार एक चीज़ की सिफारिश करें जावे हैं कि भाई जो जैसे चूहे मारने वाली बात ही करें, तो उसमें जब चूहे मारने वाला जो अभियान है यदि वो समय रहता होगा तो फिर उसका जब फायदा है, क्योंकि फिर बाद में जो फसलें हैं वो बड़ी बड़ी हो जाएंगी और जो चूहा है वो हमारी जो काबू से बाहर हो जाएगा। और इसी प्रकार जो समय के हिसाब से जो भैया थी बात करी भाई मिट्टी की पानी की जांच कराने की, क्योंकि समय के बाद यदि हम कोई भी काम कर रहे हैं तो फिर उसका जो परिणाम है वो हमें अच्छा नहीं मिलता, क्योंकि समय के हिसाब से ही जुताई और समय के हिसाब से ही यदि हम बिजाई कर रहे हैं तो उसका जब फायदा होगा। तो भैया देखो, ये जो बाकी की बची हुई बातचीत है वो सुनो।
3: पहले हम कोई लकड़ी का फट्टा लेकर चूहे के बिलों को क्या है मिट्टी से ढक देते हैं और पूरी रात छोड़ने के बाद सुबह देखते हैं कि उसमें से मिट्टी कितने चूहों ने बाहर निकाल रखी है। उसका तात्पर्य है कि उसमें जो चूहे हैं, जो बंद बिल हैं, उसका मतलब है कि उसमें चूहे जगह छोड़ चुके हैं, वहां दवाई डालने की जरूरत नहीं है, आपकी दवाई का पैसा खराब होगा
4: जी।
3: सिर्फ जो जिंदा बिल हमें मिलते हैं हम वहीं आगे दवाइयां डालेंगे
4: जी।
3: उससे पहले बाद में हम क्या करते हैं, चूहों की प्रजातियों की पहचान कर लेते हैं कि जैसे शुष्क जलवायु और बरानी क्षेत्रों में हमें भारतीय जरबिल मिलता है। जरबिल और चूहों की एक थोड़ी सी क्या है, एक पहचान होती है कि जरबिल की जो पूंछ होती है वो झुब्बेदार होती है।
4: अच्छा।
3: और जो चूहे की पूंछ होती है वो एकदम नुकीली होती चली जाती है, टेपर्ड होती है
4: जी।
3: ये मुख्यतः पहचान है। तो जो भारतीय जरबिल है, टटेरा इंडिका जिसका साइंटिफिक नेम है, ये बरानी और शुष्क क्षेत्रों में मिलता है। मुख्यतः ये क्या है, बीज और हमारी दालें वगैरह खाता है। अगर इनको ये ना मिले तो ये कीड़े मकोड़े भी खा के गुजारा कर लेता है। दूसरा जो हमारा मरुस्थलीय जरबिल है उसका नाम है मैरियोनस हुरियानी। ये मुख्यतः मरुस्थलीय इलाकों में मिलता है जहाँ पर बिल्कुल भी कमांड एरिया नहीं है हमारा। और ये देखने में बड़ा सुंदर लगता है, ये कंगारू की तरह अपने दोनों पिछले पैरों पर खड़ा हो जाता है और अगले दोनों पैरों को हवा में उठा लेता है। ये इसकी मुख्यतः पहचान है
4: जी।
3: जो सिंचित भूमि के अंदर जो चूहे की हमें स्पीसीज मिलती हैं उसमें पहली है कोमल रोहे वाला चूहा, जिसको नाम दिया हमने रेटस मेल्टाडा। ये हमारे क्या है, लगभग जहाँ जहाँ सिंचित क्षेत्र हैं, नहरी क्षेत्र हैं, वहाँ आपको देखने को मिलेगा। उसके बाद है छोटी घूस बेंडिकुटा बेंगालेंसिस। ये हमारे क्या है क्षेत्रों में सबसे ज़्यादा नुकसान पहुँचाने वाली चूहे की प्रजाति है। अगर हमने इसके एक सर्वे के अंदर ये पता लगाया कि इसने अपने बिलों के अंदर लगभग 10 से 15 किलो प्रति बिल अनाज भंडार करने की क्षमता रखता है।
4: अच्छा।
3: और एक हेक्टेयर के अंदर लगभग 20 से 25 बिल भंडार इसके पाए गए हैं, तो अनुमान लगा सकते हैं कि ये कितना नुकसान करते हैं
4: जी।
3: इसके अलावा सिंचित क्षेत्रों में एक छोटी चूहिया और मिलती है जिसको नाम दिया निजोकिया इंडिका। यह भी क्या है, हमारे क्षेत्रों में काफी नुकसान पहुंचाती है। और छोटी चूहिया से तो आप सभी वाकिफ ही होंगे, ये हमारे खेतों में भी मिलती है, घरों में भी मिलती है, और ये लगभग क्या है हमारे बेडरूम तक भी पाई जाती है।
4: बिल्कुल।
3: एक तो सबसे बड़ी चीज है कि चूहे लगभग जितना खाते हैं उसका 10 गुना खराब कर देते हैं।
4: अच्छा।
3: खाएंगे 10 ग्राम, खराब करेंगे 100 ग्राम
4: जी।
3: क्यों, क्योंकि इनके जो दांत होते हैं ऊपर और नीचे के, जिसको हम बोलते हैं इंसाइजर्स, वो लगातार बढ़ते रहते हैं। अगर वो दांत नहीं घिसाएंगे तो ये इनकी खोपड़ी के बाहर निकल जाते हैं और इनको मार डालते हैं।
4: अच्छा।
3: इसीलिए ये क्या करते हैं, लगातार कुतरते रहते हैं। इनको कुछ भी कुतरने को मिल जाए ये उसको कुतरते रहते हैं, जिसमें हमारी फसलें भी आ जाती हैं, हमारे बागान भी आ जाते हैं, हमारे पेड़ की छालें भी आ जाती हैं, और नहीं तो अगर ये घरों में आस पास क्या है, हमारे जो उपकरण है उनकी तारें वगैरह भी काट डालते हैं। ये इनकी एक परेशानी है जिसको ये सॉल्व करने के लिए लगातार कुतरते रहते हैं
4: जी।
3: अब अगर हमने देखा सर्वे के अंदर कि खरीफ और रबी दोनों ही फसलों के अंदर पहला जो नुकसान करते हैं ये बोए हुए बीज का करते हैं, कि किसान तो बीज बो जाता है
4: जी,
3: लेकिन देखता है कि थोड़े दिनों बाद उसमें क्या है, कुतरे हुए बीज मिलते हैं, तो उसका एक तो क्या है, बीज बोने का टाइम ही निकल गया, जो महंगे बीज आते हैं वो चूहने खराब कर दिए। उसके बाद जब नई नई कोंपलें आती हैं, जब दूधिया कोंपलें आती हैं, चूहे उनको बहुत ज़्यादा काटते हैं तो खराब कर देते हैं। फिर जब हमारी मिल्की स्टेज आती है, दाना पकने वाली स्टेज आती है, तब ये नुकसान करते हैं
4: जी।
3: और इस समय जब हमारे खेत खाली हो चुके हैं तो सबसे पहले हमें ये देखना है कि हमारी जिंदा बिल कितने हैं, उनमें दवाइयाँ डालनी हैं। और हम अपने खेतों को तो अच्छे से साफ कर देते हैं, लेकिन लापरवाही हो जाती है मेड़ के ऊपर कि ये पड़ोसी की आधी है, ये आधी मेरी है, या जो डोले होते हैं खेतों के आसपास, जो नहरी डोले होते हैं उसमें झाड़ियां उगी होती हैं, हम उनको सफाई नॉर्मली नहीं कर पाते, तो वहां आप देखेंगे कि चूहे अपना क्या है, एक परमानेंट स्थान बनाकर रहते हैं, उस तरफ हमारी निगाह ही नहीं जा पाती। जब चूहे रोग मार अभियान चलाएं तो हमें क्या है?

0: रोग मार अभियान चलाया जाए, ठीक है, उनकी रोकथाम के लिए एक अभियान चलाना पड़ता है कि पूरे के पूरे गांव को एकजुट होकर क्या है उन्हें कंट्रोल करना पड़ेगा। हम इनको बिल्कुल पूरी तरह से खत्म नहीं कर सकते क्योंकि ये भी एक जीव परिस्थितिकी का एक अहम हिस्सा है। इनको हम मैनेज करते हैं, इनको हम क्या है एक लेवल तक कम कर लेते हैं ताकि परिस्थितिकी भी बनी रहे।
1: जी, दूसरा इसका नुकसान की हम बात कर रहे थे कि ये फसल काट के, बीज काट के, पौधों को काट के इस तरह से नुकसान पहुंचाते हैं। इसके अलावा इनसे कुछ बीमारी आदमियों को भी लगती है, वो भी एक नुकसान है।
0: चूहों से होने वाली बीमारियों को हमने नाम दिया जूनोसिस।
1: जी,
0: जैसे आपने सुना होगा कि बहुत समय पहले प्लेग आया था, सूरत के अंदर भी ये फैला था और भुज के अंदर जब 26 जनवरी के दिन आपने सुना था कि बहुत बड़ा एक भूकंप आया था, उसके बाद में क्या है वहाँ पे प्लेग फैल गया था। तो इसमें एक पिस्सू होता है, उस पिस्सू के काटने से ये प्लेग फैलाते हैं। इसके अलावा टाइफस जो कीटाणु होता है, जो टाइफाइड के लिए हमारा एक महत्वपूर्ण कीटाणु माना जाता है, ये उसको भी फैला देते हैं क्योंकि नालियों में से निकल कर आते हैं, हमारे क्या है खाद्य पदार्थों को काट जाते हैं और प्रॉपर धो ना पाने की वजह से हमें पता ही नहीं चलता और हम उनको खा लेते हैं, तो वो बीमारियां फैलाने का ये काम करते हैं।
1: मतलब ये तो ऐसा नुकसान है जो दिखाई नहीं देता।
0: हाँ, ये अप्रोक्स रूप से होने वाले नुकसान है जो हमें पता भी नहीं चलता और हम उनसे ग्रसित हो जाते हैं।
1: वो जब कोई बड़ी बीमारी फैल जाए, कोई दिक्कत हो जाए, फिर ध्यान में वो हो अगर हम ये कर लेते तो ये
0: बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल सही काटा।
1: सब पहले तो जिस तरह हम बात करेंगे जो खाली खेत हुए हैं, अब उसमें हम किस तरह के रोकथाम करें, फिर बात करेंगे भंडारण का।
0: जो हमारे खाली खेत हैं उनमें हम पिंजरे वगैरह नहीं लगा सकते क्योंकि बहुत बड़ा एरिया हो जाता है। पिंजरे लगाने की जो रोकथाम विधि है उसको बोलते हैं भौतिक विधि। ये भंडार घरों में या घरों में ही लगाई जाती है। इसमें हम क्या करते हैं कि पहले दिन हम पिंजरे रख देते हैं धोकर साफ करके और उनका ढक्कन खुले रख देते हैं क्योंकि इनमें नई चीज़ों के लिए क्या होती है एक शर्म होती है जिसको हम शाइनेस बोलते हैं। ये नज़दीक नहीं जाएंगे। पिंजरे में हम क्या है बेट रख कर और उसको खुला छोड़ देते हैं, ये उसके अंदर आते हैं, खाते हैं और निकल कर चले जाते हैं, तो उनको ये अपरिचित नहीं लगता। 3 दिन के बाद हम क्या करते हैं उसमें क्या है नई बेट रखते हैं और उसका क्या है ढक्कन बंद कर देते हैं ताकि उसमें ज़्यादा से ज़्यादा चूहे फंस जाएं। और एक बात का ध्यान ये रखना होता है कि एक बार अगर पिंजरे के अंदर चूहा फंस जाए तो दोबारा उसको पानी से धोकर इस्तेमाल करना है, वरना उसमें ऐसी गंध रह जाती है कि चूहे उसमें अंदर आते ही नहीं हैं। दूसरी जो हमारे खेतों में सबसे बढ़िया जो विधि रहती है वो रहती है रासायनिक विधि। रासायनिक विधि के अंदर हम 2 तरह के क्या है रसायनों को इस्तेमाल करते हैं। पहला है तीव्र रसायन जिनका असर एकदम से कहते हैं फटाफट होता है। इसमें जो हमारा केमिकल होता है जिसको हम लोकल भाषा में काली दवाई के नाम से बोलते हैं जिंक फॉस्फेट। जिंक फॉस्फाइड क्या है 2% यानी कि 20 ग्राम प्रति किलोग्राम की दर से बेट में मिलाकर दी जाती है।
1: जी डॉक्टर साहब, ये बेट का थोड़ा सा बताओ।
0: बेट का हम बताते हैं कि बेट को देने का तरीका भी एक बहुत बढ़िया हमने इजाद किया है यूनिवर्सिटी के कि सबसे पहले बेट दी जाए, पहले 3 दिन तक क्या है कोई जहर नहीं मिलाना है क्योंकि चूहों के अंदर बेट शाइनेस होती है। ये कोई भी जो नई चीज खाते हैं पहले उसको चखते हैं, अगर वो इनको ठीक लगे तब ये भर पेट खाते हैं वरना उसको नहीं खाते हैं, चक्कर छोड़ देंगे। तो पहले 3 दिन क्या करें आप बेट दीजिए कि उसमें सूखा अनाज है, थोड़ा सा खाने वाला तेल है, गुड़ है, मिलाकर उसकी गोलियां बनाकर आप जगह जगह रख दीजिए कि चूहे उसको क्या है खाएं, उनको अच्छा लगेगा। फिर 3 दिन बाद जब 4th दिन आता है तो उसमें क्या है 20 ग्राम प्रति किलोग्राम की दर से जिंक फॉस्फाइड आपने मिला देनी है। और ये ध्यान रखना है कि कोई पालतू जीव जैसे छोटे मेमने हैं, भेड़ बकरियां हैं या बछड़ा है, कुत्ता बिल्ली है, वो बेट को ना खाए कि बेट को या तो बिल के अंदर डाल दें या उसको कहीं ओट में रख दें और छोटे बच्चों की पहुंच से दूर रखें कि गलती से भी वो बेट कहीं छोटे बच्चे ना निगल लें। तो ये हमने ध्यान रखना होता है। इसमें सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या आती है कि तीव्र जहर है और इसमें गंध आती है। अच्छा। कि एक बार अगर चूहे मर गए तो उनके शरीर से गंध आनी शुरू हो जाएगी, तो आपने क्या करना है खेत में नजर मारते हुए उन मरे हुए चूहों को उठाकर एक जगह दफना देना है। जो दूसरा है वो है हमारा धीमा जहर। इसमें आते हैं हमारे ब्रोमोडियोलोन और ब्रेडीफेकम नाम के केमिकल जिनकी मात्रा बहुत कम ली जाती है 2 मिलीग्राम प्रति किलोग्राम की दर से। मैं रिपीट कर रहा हूं 2 मिलीग्राम प्रति किलोग्राम।
1: मतलब ये कि छोटी से भी कम,
0: एक चुटकी से भी कम।
1: जी जी
0: लेकिन

0: ये बहुत बढ़िया असर है, ये गंधहीन है, स्वादहीन है, इसमें बेट शाइनेस नहीं आती। देने का तरीका वही है कि पहले दो दिन आप सिंपल बेट दें, उसमें जहर ना मिलाएं, तीसरे दिन क्या है आप इसके अंदर अपना बेट को इंट्रोड्यूस कर दें। उससे क्या होगा कि ये थोड़ा थोड़ा करके खाएंगे और ये धीमा असर होता है और ये क्या है बाहर जाके, बिलों से बाहर जाके अपने आप क्या है, इनको सफोकेशन होती है, इनके सांस लेने में दिक्कत होती है, जीक उठता है, तो ये मर जाते हैं। ये जो ब्रोमियोडिलोन है, रेट किल के नाम से बाजार में बनी बनाई भी मिलती है, लेकिन वो किसानों के लिए बहुत महंगी पड़ जाती है। तो फार्मूला मैंने आपको बता ही दिया है कि आप क्या है 2 मिलीग्राम प्रति किलोग्राम की दर से अपनी बेट में मिला लें। बेट में आप दलिया ले सकते हैं, क्योंकि थोड़ा अगर आप आटा लेंगे तो कुतरने में दिक्कत होती है, मुंह में चिपक जाता है, तो कोई भी दलिया, चाहे आप गेहूं का लें, जौ का लें, बाजरे का लें, या मक्की के दाने मिला लें उसमें, उसमें फिर क्या है थोड़ा सा मीठा तेल मिला लें और गुड़ मिला लें और हल्के पानी के हाथ से उसकी गोलियां बना लें
1: जी।
0: फिर जो है बेट बनाने के लिए हमें कुछ सावधानियां बरतनी होती हैं, क्योंकि ये बहुत ही तीव्र जहर हैं कि हमेशा क्या है ऐसा बर्तन लें कि जिसका कहीं दोबारा इस्तेमाल ना हो। दूसरा, हाथों में ग्लव्स पहने जाएं बेट बनाते वक्त, और जब आप बेट बना रहे हो तो अपने आस पड़ोस में छोटे बच्चों को ना रखें। जब भी बेट डाली जाए उनको बिलों में डालें या ऐसी जगह डालें कि जहां कोई भी छोटा पशु या बच्चे वहां ना पहुंच पाए। कि कई बार क्या होता है कि थोड़ा बहुत हल्का फुल्का नशा कर लेते हैं, ठीक है, तो जब भी बेट बनाने की प्रक्रिया किसान भाई कर रहे हैं तो उससे पहले या उसके बाद किसी भी प्रकार का नशा ना करें। कि मान लीजिए कि गलती से भी क्या है बेट का कोई अंश आपके शरीर में चला गया तो नशे की मात्रा उसके असर को कई गुना तक बढ़ा देती है
1: जी।
0: सबसे पहले आप ये देखें कि आपने बेट कौन सी ली है, कि जिंक फॉस्फाइड लिया है या ब्रोमियोडोलोन लिया है। तो अगर गलती से भी कुछ ऐसा हो जाए तो तुरंत प्रभाव से क्या है नज़दीकी चिकित्सा केंद्र में जाकर उन्हें बता दें कि ये बेट बनाई गई थी और इसका दुष्प्रभाव हमारे शरीर पर आ गया है
1: जी।
0: बेट बनाने के बाद में जो बची हुई गोलियां हैं उनको खुले में कभी भी ना फेंके, उनको गड्ढा खोदकर मिट्टी में दबा दें। इससे क्या होगा कि जो हमारे पक्षी हैं जैसे मोर, चिड़िया वगैरह दाना चुगने वाले हैं, वो गलती से बेट को नहीं खा पाएंगे
1: जी।
0: तो ये सावधानियां हमें क्या है चूहे मार अभियान चलाते वक्त क्या है जरूर ध्यान में रखनी चाहिए।
1: डॉक्टर साहब, एक बात और भी है कि जिस तरह नुकसान की हम बात कर रहे थे कि इस बीमारी भी फैले है, और ये देखा गया है कि सांप हैं वो भी इनके बिल में आ जाए इन सूंघते सूंघते।
0: हमने दो विधियों को तो डिस्कस कर लिया, भौतिक विधि, रासायनिक विधि। एक है जैव विधि
1: जी,
0: कि जो सांप हैं वो चूहों को कंट्रोल करने के सबसे बढ़िया उपाय हैं। सांप हमारे मित्र हैं, कि एक डर होता है सांप दिखाने की हमने मार दिया, उनको नहीं मारे। देखो चूहे बिल में रहते हैं और सांप ऐसे जीव हैं जो बिल में जाके चूहों की रोकथाम कर सकते हैं
1: जी।
0: इसके अलावा बिल्ली हैं
1: जी।
0: तीसरा है छोटी उल्लू, जिसको देसी भाषा में हम कोतरी बोलते हैं
1: जी।
0: चूहे क्या है रात को ज़्यादा खेतों में एक्टिव होते हैं, बिलों से बाहर निकलते हैं, अपना क्या है चलते रहते हैं। तो जो छोटे उल्लू हैं या उल्लू प्रजाति के जीव हैं वो रात में क्या है इनका शिकार करते हैं और इनको कंट्रोल करते हैं। डॉक्टर बाली, आपको ये जानकर बड़ी हैरानी होगी कि एक जोड़ी चूहा अगर उसके ऊपर कंट्रोल ना किया जाए तो 1 साल के अंदर वो 12,000 चूहों के परिवार का जन्मदाता बन जाता है
1: जी।
0: कि अगर जीव ने उसको कंट्रोल कर लिया, एक जोड़ी खत्म कर दी, तो देखिए उसने 12,000 चूहे खत्म कर दिए। ना कोई जहर डालना पड़ा, ना कोई उसके अंदर क्या है कोई भौतिक विधि पिंजरे वगैरह लगाने पड़े
1: जी।
0: इसके अलावा आजकल क्या है एक सोनार वेव्स के साथ क्या है हमारे कुछ डिवाइस आए हैं जो अल्ट्रासोनिक वेव्स को रिलीज करते हैं। इससे क्या होते हैं चूहे परेशान हो जाते हैं और वो अपनी जगह छोड़कर चले जाते हैं, लेकिन उनके क्या है जगह छोड़ी जा सकती है लेकिन वो क्या है
1: खत्म
0: नहीं हो सकते हैं, वो थोड़ा महंगा भी पड़ता है
1: जी। इसके अलावा अपने खेत से निकल के
0: दूसरे के खेत में चले
1: जहां उनको।
0: इसके अलावा हमारे कुछ रिसर्च हुई है अभी, उसमें कुछ हमारे एसेंशियल ऑयल्स बड़े इसमें कारगर सिद्ध हुए हैं।
1: अच्छा।
0: खास करके अगर हम घरों के अंदर और हमारे जो गोडाउन्स हैं उनमें इसका इस्तेमाल करते हैं तो चूहे वहाँ पे क्या है उनकी गंध सहन नहीं कर पाते हैं और वो जगह छोड़कर चले जाते हैं। इसमें सबसे बढ़िया हमारा जो रिजल्ट आया है वो नीलगिरी के तेल का है।
1: अच्छा
0: सस्ता है, हम खुद भी बना सकते हैं नीलगिरी का तेल, और आस पड़ोस में पंसारी के पास भी ये मिल जाता है, जिसको हम इंग्लिश में यूकेलिप्टस ऑयल बोल देते हैं, सफेदे का तेल, सफेदे की पत्तियों में एक गंध होती है जिसको घरों में खेतों में कई बार हमारे किसान भी इस्तेमाल करते हैं कि जुखाम हो गया तो सफेदे के पत्ते डालकर उसकी भाप ले लेते हैं तो हमारी नाक खुल जाती है। तो नीलगिरी का तेल अगर क्या है 2% के हिसाब से क्या है, पानी में घोल कर हम छिड़काव कर दें अपनी बोरियों में, गोडाउन्स में, यहाँ जहाँ हमारे घरों के आसपास, तो उसकी गंध से क्या ये नहीं आ पाते हैं। या हमारे जो नेफ्थलीन की जो बोल आती हैं, गोलियाँ आती हैं, उनको कपड़े में बांध के हमारे जहाँ उपकरण है या हमारे घरों में कहीं गोडाउन बनाए गए हैं वहाँ पे भी बांध दें तो उस नेफ्थलीन के गंध से क्या है चूहे नहीं आ पाते हैं। तो ये बहुत ही बढ़िया उपाय हैं, इससे हमें ना तो कोई नुकसान होता है और पूरी तरह से प्राकृतिक हैं, ऑर्गेनिक हैं, और हमें कोई नुकसान भी नहीं होता, खर्चा भी बहुत कम आता है।
1: जी डॉक्टर साहब, इसमें जो भंडारण किए हुए हमारे हैं, अगर किसी ने भाई ने भंडारण कर रखे अपने घर में किसी कमरे में जिस तरह भंडारण कर लेते हैं, तो उसमें किस तरह इसकी रोकथाम करें?
0: पहली बात तो हमें ये देखना है कि जो हमारे भंडार घरें हैं उनके क्या है, दीवारें पक्की होनी चाहिए, लिपाई होनी चाहिए, फर्श पक्के होने चाहिए
1: जी।
0: दूसरा क्या है कि जो खिड़की दरवाजे हैं उनमें पतली सी लोहे की क्या है आप पत्तियां लगा दें ताकि चूहा दरवाजा कुतर के अंदर ना जा सके
1: जी।
0: फिर जैसे मैंने आपको बताया नीलगिरी के तेल को आप वहाँ छिड़क दें, बहुत बढ़िया रिजल्ट रहते हैं, थोड़े दिन में अपने आप उड़ के कम हो जाता है और हमें अगर सूंघ भी लें तो कोई दिक्कत नहीं होती है ऐसी कि कोई नुकसान हो जाए। फिर हम पिंजरे भी वहाँ लगा सकते हैं और बोरियों की ओट में जहाँ हमारे दूसरे जीव ना जा सके वहाँ पे हम ब्रोमियोडोलोन को डाल सकते हैं। अगर जिंक फॉस्फाइड डालते हैं तो उसकी तेज़ गंध क्या उठती है और घर में वो ठीक नहीं रहती है। तो ब्रोमियोडोलोन क्या रासायनिक विधि होगी, दूसरी एसेंशियल ऑयल में हमारा नीलगिरी का तेल हो गया उसको इस्तेमाल कर सकते हैं, और तीसरी जो भौतिक विधि है उसमें पिंजरे लगा सकते हैं। पिंजरे लगाने का एक ध्यान रखना है कि दीवार के साथ पिंजरे लगाएं, बीच कमरे में रखा हुआ पिंजरा कोई काम नहीं देगा, क्योंकि चूहे रात को जो दीवारें होती हैं उनके साथ साथ चलते हैं, थिग्मोटैक्टिक बिहेवियर है इनका, तो उसी के साथ साथ रहेंगे, और पिंजरा अगर दीवार के साथ रखा होगा तो वो उसमें फंस जाएंगे। कमरे के बीच में रखा हुआ पिंजरा क्या है उसमें फंसने के चांसेस बहुत कम हो जाते हैं। और एक चीज का ध्यान और रखना है कि पिंजरे को बैक टू बैक लगाना है कि दोनों मुंह पिंजरे के, दो पिंजरों के मुंह एक दूसरे के विपरीत दिशा में हो, ताकि चूहा जिस भी डायरेक्शन से आए और उसके फंसने के चांसेस क्या है ज्यादा से ज्यादा रहें। पिंजरे में अगर चूहा फंस जाता है तो टाइमली उसको निकाल दें और उसको धोकर दोबारा रखें, वरना उसकी गंध की वजह से दूसरे बार उसमें चूहे नहीं आएंगे।
1: बिना दुला नहीं रखना,
0: बिना दुला रखना है, बिल्कुल साफ रखना है उसने, ये आपने ध्यान रखना है
1: जी। तो डॉक्टर साहब, जिस तरह आपने बताया है कि चूहों का बहुत ज़्यादा नुकसान है, ना सिर्फ खेती में बल्कि बीमारी फैलाने में भी इनका काफ़ी योगदान रहता है, तो ऐसी परिस्थिति से बचने के लिए भाई अपना एक अभियान के रूप में इसने चलाना, और ख़ासतौर पर इसी जगह जहाँ पर खेती नहीं हो रही है, बाढ़ है, नहर के किनारे है, या कोई श्यामलात की ज़मीन है, वहाँ पर ज़रूर ध्यान दें जहाँ पर ये अपना परमानेंट घर बना के रहे हैं। तो ये अभियान के रूप में इसमें चलाओगे तो काफ़ी हद तक आप इसने कंट्रोल कर सके हैं और अपनी खेती ने, अपने अनाज ने बचा रखेंगे। तो इस सब जानकारी के लिए डॉक्टर रवि कांत जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद।
0: धन्यवाद।
2: तो भैया ने ये तो सुनी बातचीत भाई, जो चूहे मारने का अभियान है, और डॉक्टर साहब ने किस तरह बताया भाई, जो चूहे हैं वो बहुत ज़्यादा नुकसान हमारी फसल को करते हैं और इनकी जो अक्षमता है जन्म देने की वो भी बहुत ज़्यादा है। और भाई सुनेंगे एक रागनी, श्रीता चौधरी अपनी पार्टी के साथ।

0: भाइयों, ये सुनी रागनी श्रीता चौधरी अपनी पार्टी के साथ, और इसी रागनी के साथ जो कृषि जगत कार्यक्रम का समय है वो या समाप्त, थोड़ी ही देर में आप कार्यक्रम सुनेंगे ग्रामीण संसार।
1: जब व्यापार के प्रचार की हो बात तो अपनाएं आकाशवाणी का साथ। हर दिल, हर घर और हर जन, हर वर्ग को जोड़ने का है साधन। विश्वसनीय, असरदार और हम सब का हम सफर आकाशवाणी रोहतक है सदा तत्पर। हमारी आवाज आपका प्रचार, हो जाए समृद्ध होने को तैयार। अपने ब्रांड को विज्ञापन के जरिए जन जन पहुंचाने के लिए आज ही संपर्क करें आकाशवाणी रोहतक।
2: सबके लिए सामाजिक सुरक्षा, अटल पेंशन योजना, मोदी जी का संकल्प।
3: योजना उन नौजवानों के लिए है ताकि आप जब 60 साल के होंगे आपको कभी किसी के सहारे की जरूरत न पड़े, आप अपना बुढ़ापा भी गौरव के साथ बिता सको।
2: अब तक इस योजना से 8 करोड़ 85 लाख से अधिक लाभार्थी जुड़ चुके हैं। अगर आप भी 18 से 40 साल की उम्र के हैं तो मासिक अटल पेंशन सहित 3 गारंटीड फायदों के लिए अपनी बैंक शाखा से संपर्क करें।
0: आकाशवाणी का यूरो तक के अंदर भाई कार्यक्रम सुनेंगे ग्रामीण संसार, और भाइयों ग्रामीण संसार में आज फोन इन कार्यक्रम है। चौपाल से भाइयों से बातचीत करेंगे और उसमें जो भी हमारे श्रोता भाई हैं वो फ़ोन करें, अपना सुझाव दें, कोई कार्यक्रम में किसी प्रकार की कोई हमारे से कमी रह जाए तो उसके बारे में भी ज़रूर बताएं ताकि हम जो उन कमियों को सुधार सकें, और आप के जो भी सुझाव हों वो हमने ज़रूर उतना अवगत कराऊँ। भैया ने फ़ोन इन कार्यक्रम में जो फ़ोन करना है वो करना है 012-62 रोहतक का STD कोड है 255-446, 255-447 और 255-448, ये 3 फ़ोन लाइन हैं, और 012-62 रोहतक का STD कोड है। आप इस पर फ़ोन करके और हमारे से जो संपर्क है वो करें और अपना जो सुझाव है वो भाई दें। हेलो हेलो
4: भाई पुनिया साहब, राम राम।
0: जी राम राम। बादल जी कैसे हो?
4: जी मैं बादल सिंह गिल, गांव पांडू पिंडारा, जिला सीध।
0: परिचय तो हमने दे दिया गिल साहब आपका।
4: आधा दिया था, आधा हमने दे
0: ना दिया। चलो कोई बात नहीं, और सुनाओ हमारे कार्यक्रम कैसे हैं?
4: है जी,
0: कार्यक्रम कैसे हैं? कोई सुझाव आपका, क्योंकि आप बहुत पुराने श्रोता है हमारे।
4: कार्यक्रम के तो कल सुना था हमने आपका ग्रामीण संसार।
0: अच्छा,
4: इसमें लहरा सिंह अत्री जी से जो बातचीत सुनवाएगी।
0: हाँ,
4: मैं को वो लटकाट दिया, बहुत बढ़िया लगी।
0: लटकाट दिया, चलो बहुत अच्छी।
4: दसवीं भाई थे।
0: हाँ,
4: एक बलजीत था।
0: हाँ,
4: अरे अपने अनिल शर्मा पंडित जी।
0: अच्छा अच्छा,
4: जिन्होंने इतना बढ़िया इंटरव्यू दिया लहरा सिंह जी का।
0: हाँ,
4: की पुरानी जो कविता थी वो याद आएगी मारे।
0: अच्छा
4: हाँ, वो बहुत पुराने कवि रहे लहरा सिंह अत्री।
0: हाँ, लहरा सिंह अत्री जी
4: तीनों समाधान दिया,
0: बहुत पुराने कवि हैं।
4: कि आगे भी आपको बातचीत सुनाऊंगा।
0: हाँ,
4: मिलाकर मैं बात करवा।
0: चलो बहुत अच्छी बात है, ये आपका जो सुझाव है ये भी देखो

0: पहले ही हमने ये कोशिश करी है कि भाई जो हमारे पुराने श्रोता हैं, जो हमारे पुराने कवि हैं, कवि कुछ पुराने
1: जी
0: लेखक हैं,
1: बिल्कुल
0: उनसे यदि हम मिलते रहे, जो हमारी पुरानी याद हैं उनको भी हम ताज़ा करते रहें।
1: तीन चार आदमी अलग अलग प्रश्न पूछे हैं तो मजा आ जाए
0: बिल्कुल
1: पूछने
0: बिल्कुल। देखो ये जो डायलॉग प्रोग्राम होता है ना गिल साहब, ये बहुत अच्छा
1: में।
0: होता है और ये इसमें दिल लगे है और अगले की जो पूरी भावना है वो भी उसका पता लगे है, क्योंकि ये लैणा सिंह अत्री जी एक बहुत पुराने कवि हैं।
1: बिल्कुल मैं जो ना ज्यादा पढ़ाई नहीं करता, मैं गुरु से सुनता रहा हूँ। बहुत बढ़िया। और एक जो हरियाणी फिल्म अभी सुन रहा था, पर्सन अपनी अपनी में दलजीत भाई ने
0: हाँ
1: कार्यक्रम की इतनी बढ़िया रौनक लगा दी, बहुत बढ़िया।
0: चलो अच्छी बात है,
1: इसलिए दलजीत भाई को हमारी तरफ से बहुत बहुत शुभकामनाएं।
0: चलो बहुत बहुत
1: लेकिन एक कहना
0: शुभकामनाएं।
1: कि आपके कोई बातचीत सुना हो ना, तीन चार अनाउंसर इकट्ठे मिलकर बातचीत करें तो मजा आएगा।
0: गिल साहब देखो ये हर बार तो संभव नहीं हो पाता, क्योंकि ये तो आप भी समझदार हो, तीन चार जैसे आदमी इकट्ठे हो गए एक बार, ये तो
1: नहीं
0: कदे
1: नहीं नहीं
0: कदे कदा
1: बुढ़िया
0: वो
1: साहब
0: मौका बना है,
1: ने
0: कोशिश करेंगे हम बाकी।
1: बुढ़िया साहब ये तो आप रहे बाहर की रिकॉर्डिंग करी थी, स्टूडियो में जो आप रिकॉर्डिंग करो ना
0: हाँ
1: उसकी बात कर रहा हूँ मैं।
0: उसमें जैसे मान लो फिर तीन चार एकदम आ तो नहीं सकते ना, कई बार ये तो
1: तो
0: वो
1: मैं
0: है
1: जितने भी आपके ज्यादा से ज्यादा ले रहे जितने भी आपके
0: नहीं, जैसे हमारे जैसे हम उसी के पास जैसे लैणा सिंह अत्री जी के पास गए तो दो चार साथी मिलकर, और इसी तरह के जो हमारे पुराने कवि हैं उनसे मिलने की हम कोशिश करेंगे, उनके
1: मैं
0: घर पर
1: आप
0: कर ले।
1: बात समझ गया। मैंने कहा स्टूडियो में आओ ना आप, तीन चार कंपेयर मिलकर अगर बातचीत कर लो, अगर उपलब्ध हो तो
0: हाँ
1: अच्छा लगे।
0: हाँ मान लो तीन नहीं हो तो दो हों, इस तरह
1: दो
0: में
1: हो
0: थोड़ा
1: अच्छा
0: फर्क हो जाए।
1: लगे
0: बिल्कुल
1: बिल्कुल।
0: चलो चलो
1: ठीक है
0: सुझाओ
1: भाई साहब, राम
0: जी।
1: राम।
0: राम राम जी, राम राम गिल साहब। हेलो हेलो, राम राम
1: भाई
0: जी,
1: जी राम राम।
0: राम राम जी, नाम बताओ।
1: रवि बोल रहे थे प्रजापत गांव संगा।
0: हाँ जी
1: बिल्कुल ठीक ठाक भाई साहब, अपने अपना आकाशवाणी परिवार की छुड़ाओ।
0: बिल्कुल ठीक है भाई, अपनी सुनाओ और ये सुनाओ भाई हमारे कार्यक्रम कैसे आपको लग रहे हैं।
1: कार्यक्रम जी एक नंबर के, कन वाला भी लैणा सिंह वाला भी एक नंबर का था
0: हाँ
1: कार्यक्रम।
0: वो गिल साहब ने भी बताया कि भाई जो उनसे बातचीत करी बहुत अच्छी लगी, और इस तरह के हमारे
1: ओ
0: प्रयास रहेंगे कि भाई जो हमारे श्रोता
1: हाँ
0: हैं उनसे हम इसी तरह के जो कार्यक्रम है वो सुनाते रहें, और कोई
1: हाँ
0: आपका
1: या
0: सुझाव है
1: करो
0: तो बताइए।
1: करो जी, पुराने कलाकार हैं, इनकी बात बहुत कामान की बात है। अगर
0: हाँ देखो जो उनका पुराना तजुर्बा है ना, ये
1: हाँ
0: एक बहुत ज़रूरी चीज़ है, और आज के समाज में जो पुरानी बातें, देखो नई बात तो बहुत सारे सुना देंगे लेकिन जो पुरानी बात है वो तो सिर्फ पुराने आदमी सुना सके हैं।
1: पुराने आदमी ज्यादा लोग, और बात भी सही है जी उनकी, बात
0: हाँ
1: बिल्कुल एक नंबर की है।
0: बिल्कुल, तो देखो कुछ नया और कुछ पुराना का जो मिलावट ही है ना वो रह जाए तो वो इज्जत बढ़िया लग गए।
1: या तो जी आई जी। और
0: हाँ
1: अच्छा सुरेंद्र भाई एक रागनी की फरमाइश, कई दिन हो गए फूट
0: बोलो,
1: चले बड़े बड़े घर का ले तो बदनामी का टीका कोई अपने सर पर ना
0: किसकी है
1: ले।
0: या?
1: भाई भाई साहब कई दिन हो गए सुनाई, कलाकार भूल गए
0: अच्छा
1: रागनी अपने दर पक्की से यार।
0: अच्छा चलो नोट कर ली, इसने एक दो दिन में सुनवा देंगे, जैया हमारे पास उपलब्ध हुई तो जरूर सुनवा देंगे हम।
1: और ना आग ने अपना जरूर रद सही है, पक्की
0: हाँ
1: बात
0: ये
1: है
0: पक्की बात हो तो ये भी सुन लो, ये बात पक्की है कि भाई आपको सुनवाई जाएगी। देखो आप नियमित श्रोता हो, दोपहर वाले कार्यक्रम में या शाम वाले में आपको एक दो दिन के अंदर सुना दी जाएगी, दो तीन दिन के अंदर।
1: को भी सुना दीजिए, 24 घंटे प्रोग्राम सुना है,
0: चलो
1: फिर किसी टाइम सुना
0: चलो
1: दीजिए।
0: ठीक है जी, धन्यवाद जी,
1: राम राम भाई
0: राम
1: साहब।
0: राम जी, राम राम। हेलो हेलो हेलो हेलो हेलो
1: राम राम साहब,
0: जी, राम राम जी, नाम बताओ।
1: मुगाम कुलो इतर में स्कूल नंबर
0: रमेश जी, हाँ रमेश जी
1: तो
0: सुनाओ कार्यक्रम कैसे लगे हैं, सबसे पहले तो ये बताओ आप।
1: प्रोग्राम जी बहुत बढ़िया लागे रानी भाई ने प्रार्थना करी दी जी, उसने जी शनिवार वाले दिन जी सारी दिन जानी थी
0: हाँ
1: आपकी पसंद का सबसे बढ़िया प्रोग्राम लागे जी।
0: चलो बहुत बढ़िया बात है, देखो कोशिश ये रहे है कि भाई हम बढ़िया से बढ़िया जो प्रस्तुति है वो दे सकें, और जितने भी साथी हैं सबका ये रब है, जितने भी हमारे श्रोता हैं उनके हम नाम भी बोलने की कोशिश करें, और आप चिट्ठी भी डाल लिया करो, और कोई आपकी विशेष फरमाइश हो तो रागनी की वो बताओ, वो भी जरूर पूरा करने की कोशिश करें। हैं कोई बात नहीं, अनपढ़ है तो पत्र तो किसी पर लिखवा सको हो, और किसी
1: आपकी सारी पसंद साहित्य की मारेगी तो मुझे वो तकरीबन गणेशन तब वो बात आऊँ।

0: उसका बाद बदल कर गा रखी थी
1: अच्छा।
0: हाँ और ये जो शुक्र शनिवार शुक्र और बृहस्पतिवार वाले दिन जी तक अभी जो सुबह प्रोग्राम नहीं आलोक सुनी
1: हाँ
0: बस जब की बात थी जी हरदन जी के खिस्से की बृहस्पतिवार वाले दिन सुबह पर अगले दिन शुक्रवार दिन की वही बात सुनवा दी थी तभी ये बात
1: देखो कई बार क्यों है कि देखो इनको प्रस्तुत करने वाले अलग अलग हों हैं, कई बार के है कि वो ये जैसे आज वो अलग हाथ लग गई और वो उसने रख दी, हो सके है कि वो ऊपर से उठा ली और वो उसी जो दूसरा आदमी है उसके भी वो हाथ लग जाए, कई बार हो जाता है। लेकिन कोशिश ये रहे है रमेश भाई कि हम इसको थोड़ा सा बदल बदल कर करें, क्योंकि एक बात कोई बार बार हम सुनवाते रहे तो फिर वो अच्छा नहीं लगता, हम भी महसूस करें इस बात ने, लेकिन एक आध बार हो जाता है ये। हाँ कौशिक साहब से करी थी बात,
0: उम्र का भी पता चल गया, गांव का भी पता चल गया जी।
1: कैसी लगी आपको?
0: बहुत बढ़िया लगी जी, लेकिन जो संता वाली बात सुनवाओ हो जी उसकी रिकॉर्डिंग बहुत गड़ी है जी।
1: किस वाली?
0: चांदी राम कोशिश है उस जो ये बात सुनवा अगर अंतान वो अंत नहीं है जी।
1: हाँ।
0: फिर तो भी मारे मान सौर के साथ
1: आ हाँ हाँ
0: दो साल तक ये बात सुनते आ रहे हैं जी, तो बहुत पुराना कलाकार है
1: चांदी राम। हाँ चांदी राम जी पुराने कलाकार हैं, लेकिन क्या है कि इनकी उस कह बात हमारे पास ये हो सिर्फ रिकॉर्डेड
0: ना जी, बहुत गणी है।
1: चलो जो अलग होंगे तो अलग भी करने की कोशिश करेंगे, कई बार के है कि एक दो रागनी जो ऐसी हो है जो कुछ फेमस से हो जाने श्रोताओं के, उसी के बारे में फोन आए जा है जी ये रागनी एक बार दोबारा सुनवा दो, और फिर कुछ हमारे जो श्रोता भाई हैं वो ये कहने लग जाए हैं अगजीनन बार बार सुनवाओ हो, ये दोनों तरफ की बात हो जाए हैं रमेश जी कई बार।
0: 2007-11 ये पीछे कलाकार ना जी बहुत बढ़िया गायकी कर रखी है, लेकिन
1: चलो नहीं कोशिश करेंगे ये कोई बात नहीं, मैं नहीं सुनवाते क्योंकि कई साल
0: अपना खेत ताला प्रोग्राम दा दो पर मोहन राजेंद्र मार ने बढ़िया रखनी सुनाई कुमार सैनी और साथी बहुत बढ़िया सुनाई।
1: हां
0: हर शनिवार ने फिर राम राम राजा प्रसाद जो कर्ण सिंह की सुनी बहुत बढ़िया लगी।
1: हां कर्ण सिंह भटगामिया की है वो।
0: हां जी बहुत बढ़िया प्रोग्राम
1: है। हां उसकी कई बार सिफारिश आई कि भाई वो रागनी सुनवाओ।
0: हां जी मन ने भी करी थी जी।
1: हां तो वो मैंने आपको भी कहा था कि भाई वो हम जरूर सुनवाएंगे और हम जो सारे साथी हैं ये कोशिश कर रहे हैं कि भाई जिस चीज़ की सिफारिश आवे वो जरूर पूरी करने की कोशिश कर रहे हैं रमेश
0: जी।
1: चलो चलो बहुत अच्छी बात है, और पत्र लिखा करो और अपना जो सुझाव है कार्यक्रम संबंधी वो बताया करो हमने। ठीक है राम राम रमेश भाई। हेलो
2: हेलो
1: हाँ जी
2: राम राम
1: जी। जी राम राम, नाम बता दो जी।
2: धर्मचंद जी।
1: धर्मचंद कहाँ से जी?
2: गांव पोपड़ा से जी, जिला करनाल में जी।
1: जिला करनाल। धर्मचंद जी कैसे हो?
2: बिल्कुल जी ठीक जी।
1: अच्छा उम्र कितनी अपनी?
2: उम्र जी 2 मार्च 1956 जी है जी।
1: वाह जी वाह, वाह जी वाह, बहुत उम्र है और स्वस्थ हैं।
2: हाँ जी बहुत दिन में फोन मिला जी।
1: चलो धर्मचंद जी बहुत बढ़िया बात है, आपका फोन लग गया, आपकी उम्र का पता लग गया। तो
2: कल लैणा सिंह का जी अत्री का प्रोग्राम सुना था जी।
1: हाँ
2: प्यारे मानस भी हैं जी।
1: चलो
2: वो
1: अच्छी बात,
2: असंध में है जी वो।
1: हाँ
2: वो कोपड़ा असंध ब्लॉक में पड़ा है जी।
1: हाँ आपका गांव भी असंध में ही है।
2: हाँ जी
1: धर्मचंद जी ऐसा है कि वो जो कवि हो है ना,
2: हाँ जी,
1: और चाहे लेखक हो कवि हो या कोई गायक हो वो सबके प्यारे हो, हमारे भी इतने प्यारे हैं अग्नि, और जब बताता है हम फिर उनके पास पहुंचे घर पे
2: अग्नि। कोशिश करता रहूं।
1: चलो अच्छी बात है, कोई सुझाओ धर्मचंद जी, और आदमी भी लाइन पर हैं उसमें फिर दिक्कत ही आवे, ये कह दे मतलब भी बात करो हो आप, कोई सुझाओ तो। हाँ सुझाओ बताओ आप।
2: हाँ पंडित तुलेराम की रागनी है जी, राजा नर्मद जी, मैंने बहुत पुरानी सुनी थी जी उनकी आवाज में रेडियो में जी। भीम हाँ राजा नल की जी, भीम सैन नर क्या स्वयंवर राज्यों के मंडप है जी।
1: अच्छा जी
2: नारद ऋषि इंद्र का।
1: चलो गायक कौन है इसका?
2: श्री तुलेराम जी।
1: तुलेराम जी गायक, गायक दूसरा हो कदे पंडित तुलेराम जी बनाई हुई हो?
2: हाँ मन तुलेराम की आवाज में भी सुनी है।
1: अच्छा चल देखते हैं ये हम राजा नल के किस्से की आज, बाकी हाँ। राजा नल के किस्से की दो रागनी तो दोपहर में भी सुनवाई है हमने।
2: हाँ हाँ जी सुनाई थी।
1: हाँ देखो कई बार

0: क्या होगा कि वो रागनी जो मान लो आपने कहीं सुनी है और उसको हम सुनवा नहीं पाते, कई बार होगा कि हमारे पास नहीं हो उसका कारण।
1: हाँ जी न्यू हाँ जी एक बार मैंने सुनी थी जी, और तो कोई नहीं।
0: चलो
1: चलो जी
0: अच्छी,
1: लंबी बात हो जाएंगी,
0: चलो
1: जाऊँ
0: चलो,
1: मैं।
0: धन्यवाद जी, धन्यवाद रामचंद्र जी,
1: राम राम
0: राम राम जी। हेलो हेलो हेलो
2: आप जिस व्यक्ति,
0: हेलो,
1: हेलो
0: हाँ जी नाम बताओ
1: जी, सुरेंद्र भाई जी को मेरा प्यार भरा
0: जी।
1: नमस्कार
0: जी राम राम जी, नाम बताओ
1: जी। मैं गांव बाग और महेंद्रगढ़ से प्रकाश अम्बाव तो बोल रहा हूँ सर।
0: जी। प्रकाश जी कैसे हो?
1: बहुत बढ़िया सर, आप बताएं कैसे
0: बिल्कुल, हमारे कार्यक्रम
1: जी।
0: कैसे लग रहे हैं प्रकाश जी आपको?
1: हाँ सर, कार्यक्रम अच्छे लग रहे हैं सर। ये जैसे मैं तो धन्यवाद देना चाहूँगा दलजीत भाई जी को, और अनिल भाई जी को, बलजीत भाई जी को, और इनके से इनके सहयोगी हैं संपूर्ण भाई जी को देना चाहूंगा।
0: बिल्कुल
1: इन्होंने बड़ी मेहनत करके लहणा सिंह अत्री जी का और चांदीराम कौशिक जी का जो भेंट वार्ता ले घर से जाके लाए थे, बहुत अच्छा लगा हमको सुना जब।
0: अच्छा,
1: और सर एक रिक्वेस्ट और थी कि
0: नहीं
1: अपने
0: रिक्वेस्ट,
1: केशवराम
0: केशवराम
1: जी का और रह गया, इनका और कराओ कैसे भी।
0: जी का
1: हाँ जी, इनका बाकी रह गया, दो का तो हो गया है।
0: एक आध बार तो इनका इंटरव्यू ले तो लिया प्रकाश
1: वो पहले का है
0: जी,
1: सर, एक ही है पहले का, वो
0: हैं?
1: संपूर्ण भाई के साथ ये जैसे लाइव प्रोग्राम था नहीं अभी ताजा का,
0: हाँ
1: इस डाल को ये किस्से की राजनीति जैसे हो गाते थे ना,
0: हाँ
1: पर वो सुनाते थे उस टाइप
0: हाँ
1: का। कोई नया करवाओ कोई एक दो कार्यक्रम,
0: इस तरह का कार्यक्रम।
1: वो जो एक किस्से की राजनीति जो सुनाते थे ना, हाँ उस पर थोड़ा सा कुछ दो चार प्रोग्राम और बना दें जो।
0: इसमें प्रकाश जी क्या बन रहा है कि कुछ जो रागनियां हैं ना, वो
1: जी
0: जो जैसे किस्से की थी और केशवराम जी इसको प्रस्तुत कराया कर दे, इस कार्यक्रम को एक किस्से की रागनी
1: हाँ
0: वो
1: करा
0: चलाया
1: देंगे
0: कर
1: सर
0: दे,
1: जी।
0: तो उनके यहाँ से आकाशवाणी से जाने के बाद ये प्रोग्राम लगभग आपने लालोक बहुत कम जा पाया है,
1: हाँ जी हाँ जी
0: और अब वो जो रागनियाँ हैं ना वो दाएं बाएं हो रही हैं, वो हर एक का समझ में नहीं आती, क्योंकि कई बार किस्से हैं क्यों वो किसी एक किसी दूसरे कलाकार की पाजिया, वो दूसरी दूसरे कलाकार की पाजिया, तो इसलिए मैच सा नहीं सही सेट बैठ रहा इस तरह का। नहीं, कोशिश ये ज़रूर है कि भाई हम एक किस्से की सुनवाएं, लेकिन इसका यही कारण है कि भाई कई तो जो ये गायक हैं ना वो गायक
1: जी
0: अलग अलग हैं, उनकी रागनियाँ अलग अलग हैं, तो चलो प्रयास करेंगे इसका है।
1: हाँ सर।
0: चलो ठीक है प्रकाश
1: सर जी
0: जी,
1: नमस्कार
0: जी
1: जी,
0: नमस्कार, राम राम जी।
1: नमस्कार
0: हेलो
1: जी।
0: हेलो
1: और
0: जी, नमस्कार, नाम बताओ जी।
1: रामदेव
0: रामदिया,
1: जी
0: रामदिया कैथल से,
1: मटोर
0: मटोर जिला कैथल। हाँ
1: जी,
0: रामदिया जी बोलो,
1: कार्यक्रम पसंद है जी आपके सभी।
0: सभी कार्यक्रम पसंद हैं?
1: हाँ जी, आप सभी कार्यक्रम सुनवाते तो कोई सुरेंद्र जी,
0: हाँ
1: ना
0: क्या थे या क्या कही आपने?
1: मंगलवार को भी आपने जी टैप रख दिया जी, रिकॉर्डिंग सुनवाई थी
0: अच्छा
1: 12 मई को जी।
0: अच्छा
1: हाँ जी
0: देखो कई बार ये हो जाए, बाकी कोई आपकी पसंद हो तो बताओ।
1: आपकी पसंद में भी जी आपने रिकॉर्डिंग सुनवाई, कल भी आपने रिकॉर्डिंग सुनवाई थी,
0: नहीं रिकॉर्डिंग किस चीज़ की?
1: इतनी सी दिक्कत में जी।
0: नहीं कृषि जगत में, कृषि जगत तो लाइव जाता है, ये तो सीधा प्रोग्राम हो गया।
1: लास्ट रिकॉर्डिंग थी कल तो भी जी,
0: चलो ये तो कोई बात नहीं, बाकी आपका कोई सुझाव हो तो और बताओ, कोशिश करें।
1: लाइव पर सभी सभी
0: हाँ
1: कार्यक्रम
0: क्या,
1: लाइव शो कर दिया,
0: नहीं लाइव तो बैठ के हम करते ही ना।
1: लास्ट रिकॉर्डिंग सुनवाई
0: चलो
1: थी
0: कोई
1: जी।
0: बात नहीं, और कोई आपका सुझाव हो तो रामदिया जी बताओ।
1: हाँ मैं को जी अपना रिकॉर्डिंग सुनवाई थी, अप्रैल में भी लाइव सुनवाई थी जी अपना।
0: अच्छा, चलो आगे ध्यान करेंगे। ठीक है जी रामदिया जी। हेलो
3: हेलो
0: हेलो, हाँ जी
3: हाँ जी, अब ठीक हो जी।
0: बिल्कुल ठीक है जी, आप कौन बोल रहे हो?
3: बोलो
0: क्या नाम बताया? रतनी,
3: हाँ
0: हाँ जी बोलो।
3: बोलना क्यों, एक सरखने वाला गीत ने और न्याग्रा शब्द है
0: हाँ
3: का को खोलना नाला बताओ ना।
0: देखो जी, वो खोलने वाला ने भी जरूर ढूंढेंगे, बाकी वो उसकी सिफारिश ज्यादा हुआ है जो इनका है ने, मास्टर जिया का गीत है वो, रामफल शर्मा जिया का,
3: हाँ रामपाल शर्मा का,
0: हाँ तो उसका उसकी बड़ी सिफारिश रहे है भाई ये भजन सुनवाओ। हम कोशिश कर रहे हैं कि हफ्ते में 10 दिन में एक बार तो उसको सुनवाने की जरूर कोशिश करें। हाँ
3: वो तो सुहा तो जो हो तो ठीक है, तो उसका खोल नहीं आओ ना, गेल कोई और ढूंढो ना।
0: अच्छा
3: हाँ एक बार अभी था वो।
0: अच्छा
3: कई साल हो जो गेले खोल दिया था।
0: अच्छा
3: हाँ
0: चलो चलो इसको ढूंढेंगे जी, जरूर कोशिश करेंगे रतनी जी इसका।
3: पूरी करते नहीं तब
0: ना जी करेंगे। कौन सा गांव आपका
3: करेंगे वो उसकी मेरे संकी सुनाई कही थी वो सुनाई तुमने।
0: कौन सी कहाँ से बोल रहे हो आप?
3: बहनी सुरजन
0: से। तो मेर सिंह जी की कौन सी कही थी आपने बताओ?
3: पानी कही थी बेरा ना गाड़ी कित ले जाओगी,
0: बेरा ना छोड़ो या गाड़ी मने कित ले जाओगी है। चलो दो या तीन दिन के भीतर आप सुनिए प्रोग्राम, आपने जरूर सुनवाएंगे।
3: और उसका खोल नाला तो यो जी को
0: जरूर टोएंगे जी। ठीक है जी, राम राम जी।
3: राम राम जी।
0: ठीक है जी। हेलो
2: राम राम भाई
0: जी। राम राम जी, नाम बताओ।
2: सुंदरपाल कोसी गांव केलंगा से
0: जी। सुंदरपाल जी कैसे हैं?
2: है भैया की
0: जी, कैसे लग रहे हैं प्रोग्राम कौशिक साहब?
2: मैं तो जी सुनो देख लो सारे
0: नहीं, बिल्कुल हैं। सुनो हो बहुत पुराने आप हमारे श्रोता, इसमें कोई दो राय नहीं है, लेकिन हम तो बार बार ये पूछेंगे जी हम क्या इसमें सुधार करें कि आपको और हमारे प्रोग्राम जो अच्छे लगे। सुंदरपाल जी
2: भाई साहब अगर जब परिवर्तन करो ना तो एक प्रोग्राम सा रखियो।
0: हाँ।
2: बुढ़ा खातर,
0: उसका नाम है
2: बुढ़ा खातर। बुढ़ा खातर आज पर कोई सुझाव बताओ प्रोग्राम था।
0: अच्छा
2: तो बुढ़ा खातर कोई प्रोग्राम चलाओ।
0: अच्छा चलो चलो कौशिक साहब आपका सुझाव नोट कर लिया।
2: हम बुढ़े हो गए पर बुढ़ा खातर सही है
0: कोई? ना नहीं बुढ़े तो आप सोए नहीं ने। आप
2: हो गया
0: कितनी उम्र होगी?
2: 68
0: हो गए। तीस साल और नहीं होंगे, एक सेंचुरी तो मारोगे
2: तो मास्टरी नब्बा पकड़ जाएगा तो।
0: ना ना पकड़ जाओगे कोई नहीं।
2: स्वास्थ्य
0: आप ये हाँ
2: मतलब आपने ये जो मास्टर की राग नहीं सुना हो ना कई दिन पर बढ़िया तो मास्टर की तो सब इन्हें मैं दो पर सुना दिया करो।
0: कौन सी जी?
2: ये एक तो बात है कि
0: कनब ऋषि के डेरे में ये मास्टर रामफल जिया की है।
2: मास्टर सतवीर की है।
0: हाँ शायद उनकी भी शायद मास्टर जिया की। ठीक है रणबीर जी इनकी सतवीर जिया की भी है कनब ऋषि के डेरे में। ठीक है तो दो तीन दिन के अंदर आपको सुनवा देंगे ये कौशिक साहब।
2: ठीक है जी धन्यवाद। कम से कम 15 फोन तो उठाया करो।
0: क्या जी
2: ये 10-10 मिनट में
0: देखो ये आप कर रहे हो ना बात, बीच में भी और साथी लाइन पे हैं।
2: ठीक
0: है धन्यवाद। हेलो हेलो हेलो हेलो हेलो
4: हेलो
0: हाँ जी नाम बताइए।
4: राम
0: राम राम जी नाम बता दो एक बार।
4: नाम तो महीपाल है जी।
0: महीपाल
4: गांव बधाणा जी।
0: गांव बधाणा
4: हाँ।
0: जी महीपाल जी प्रोग्राम कैसे लगते हैं हमारे
4: प्रोग्राम? तो बढ़िया जी मैं कथन थोड़ी रखी।
0: अच्छा
4: एक चूक ही रह जाए जी थोड़ी।
0: वह चूक की बताओ ने, हम तो चूक की खातिर तो पूछा आपने।
4: ये राग नहीं एक आधी कली रह जाए पिछली जी पत्थड़ी जी।
0: अच्छा जो लास्ट वाली जो कई बार कली रह जाए है ये कहो हो ना आप।
4: कल जो बलजीत भाई थे खेत खलियान में
0: हाँ।
4: संदीप कुमार थे बहुत बढ़िया रागनी थी रहेगी
0: हाँ।
4: कली रहेगी धनुआ
0: में। देखो नहीं दोनों रागनियां में तो नहीं रहनी चाहिए, एक कली एक रागनी में तो हो सके रह जाए क्योंकि समय
4: आधी पलड़ी में रहेगी प्रतापी पसली में रहेगी जी।
0: ऐसा है कई बार क्या है कि टाइम हो जाए ना जब और टाइम होने के बाद फिर उसमें जो अगला कार्यक्रम का मान लो कहीं बार से प्रसारित हो रहा कार्यक्रम तो उसमें कई बार रह जाती है। ये कोई वो बात नहीं कि भाई हम ये नहीं कहते कि भाई जानी जरूरी है क्योंकि हमारा कार्यक्रम जैसे चल रहा है और इसमें मान लो किसी साथी का फोन आ जाए 30 की जगह 30.5 भी हो जाए तो ये उसमें फिर 31 करने में बड़ी मुश्किल हो जाए है क्योंकि जो सारा जो कार्यक्रम का समय है वो बंधा हुआ है। हाँ जी महीपाल जी
4: कल जी वो अतरे की बात सुना ही नहीं आपने।
0: हाँ
4: आपको नहीं गया हलवा खाने?
0: कोई नहीं मैं तेरे दूर आ जाऊंगा। आप बुलाओ कभी हम आवांगे आपके पास, कोई नहीं हमारे जीत। देखो हमने तो इतने बढ़िया जो हमारे पुराने श्रोता है
4: ना,
0: नहीं कोई बात नहीं, जो हमारे पुराने श्रोता है ना

0: उनकी जो आवाज है ना वो हमारे लिए अलवार पूरी सब कुछ उसी में आ जाए है, सही तो बात है ये। जब हमारे श्रोता ये बात कहें ना भाई हमने आपके प्रोग्राम अच्छे लगे हैं और इसमें मान लो कोई सुझाव दे दें भाई ये कमी और है ये और पूरी कर दो, हम लोग है सबसे बढ़िया वो चीज।
1: ये धर्मेंद्र भाई,
0: हाँ जी,
1: ये जो सोचने बाणी दया बाणी बोधरी सिंह जी,
0: जी जी रत्नी,
1: रत्नी ये जो रागनी मांग रही है ना,
0: हाँ जी
1: ये रागनी आप थोड़ा सा कुनिया राजेंद्र करिए कि खड़की है कि है कैसे चांद दी पने रागनी है।
0: अच्छा देखो हम तो ढूंढ इसके हैं उसके जब मिल गई तो सुनवा देंगे, कोई ऐसी बात नहीं मान लो। और
1: जो बढ़िया फिर मां का स्टम दिया रागनी जो है पक्की है,
0: हो जाती है कई बार मान लो
1: राजेंद्र
0: जो श्रोता है ना कहीं और से सुन ले वो फिर हमने कह देख भाई ये रागनी सुनाओ, कई बार वो हमारी और किसी कलाकार की मिल जाए तो हम कोशिश करते हैं कि उसको सुनवाने की कोशिश करें, ऐसी बात नहीं है।
1: और एक रागनी फरमाइश मेरी सुन भाई,
0: हाँ बताओ
1: ये बड़वास नहीं है रणबीर की
0: कौन
1: आज का बोले आज राखी पैगंबर भाई का।
0: देखो जो रणबीर बड़वासिनी की रागनी आज भी दो सुनाई है, देखो बार बार
1: सुनाई बड़ी बढ़िया रागनी सुनाई पिंगला पर थी।
0: हाँ नहीं ये जरूर सुनाओगे, ये रागनी शायद एक हफ्ता भी ना होया इसने चाली ने। चलो कोई नहीं इसको सुनवाने की पूरी कोशिश करेंगे हैं।
1: बहुत बहुत
0: ठीक है, धन्यवाद जी महिपाल जी,
1: धन्यवाद।
0: हेलो
2: हेलो
0: जी, नाम बताइए।
2: राजवीर बोल रहा हूँ जी, काम पानवान
0: राजवीर जी।
2: हाँ जी
0: जी,
2: ये जी प्रोग्राम तो बहुत बढ़िया कहने की जरूरत नहीं।
0: हाँ
2: एक करण सिंह मकड़ोलिया रागनी की फरमाइश थी।
0: करण सिंह मकड़ोलिया
2: बुढ़ो आदमी है 96 साल को मानका से।
0: कौन सी रागनी सुनना चाहूं?
2: करण सिंह की वो चस्तसोरी बात बोलती हूँ मेरा
0: चीस लाख री चस्तसोरी।
2: हाँ
0: राजा हरिश्चंद्र का किस्सा ही रागनी है जी।
2: हाँ हरिश्चंद्र का किस्से।
0: इसको आप प्रोग्राम नियमित रूप से सुन रहे होगे ना?
2: हाँ जी।
0: तो 2 या 3 दिन में आपकी सिफारिश को पूरा कर दिया जाएगा जी।
2: बहुत बहुत धन्यवाद होगा सुरेंद्र भाई।
0: नहीं कोई धन्यवाद वाली कोई बात नहीं, जो हमारे श्रोताओं को बढ़िया लगा हमारा तो यही धन्यवाद है भाई, हम उसको पूरा करें।
2: ठीक है जी और
0: जी बिल्कुल राम राम जी। हेलो हाँ जी नाम बताइए, नाम बताइए।
3: हेलो
0: हेलो हेलो, शायद उनका फोन ही कट गया। हेलो हेलो हेलो हेलो हेलो हेलो हेलो।
3: हाँ जी सुरेंद्र जी नमस्कार।
0: जी नमस्कार जी, नाम बताओ।
3: चंदगीराम बावजी गांव दरौली डिस्ट्रिक्ट रेवाड़ी।
0: चंदगीराम जी
3: जी,
0: पुराना
3: श्रोता हूँ मैं आपका बहुत।
0: बिल्कुल पुराने श्रोता हो और कार्यक्रम कैसे लगे हैं, क्या सुझाव है आपका?
3: हाल तो लठी गाइड जी और सब मैं जो संपूर्ण जी राह पर नहीं जी सारा गया था।
0: अच्छा
3: उनकी समीक्षा सुनाई फिर संपूर्ण जी अनपुर परीक्षा सुनाई।
0: अच्छा
3: और ये उत्तर हरियाणा में से ना यही रागनी डोगनी बोल रही है ना बड़ा बड़ा बड़ा आदमी, ये कोई अच्छी बात है। मैं दक्षिण हरियाणा से रेवाड़ी से बोल रहा हूँ। हमारे तो ध्यान दक्षिण हरियाणा से थोड़ी सी बात कर लिया, एक मंदरगढ़ का ही फोन आया था फिलहाल।
0: चलो कोई ईसा है चंद्रग्राम जी, आप अपनी सिफारिश बताओ, देखो हम उसको भी पूरी करने की कोशिश करेंगे, हमारे लिए जो सारे स्रोत
3: हैं। मैं तो ऐसा हूँ संस्कृत कार्यक्रम का, 2006 में संपूर्ण जी आगे साथ प्रमाणी स्कूल में था एज ए क्रिक।
0: अच्छा
3: जब से मैं उसको संपर्क में हूँ अभी मेरा उनका संपर्क टूट रहा है, तो संपूर्ण जी से
0: चलो
3: मेरे प्रेम पित्र है।
0: चलो चलो चलो अच्छी बात
3: शर्मा जी। हाँ जी बहुत बढ़िया काल भी उनकी आवाज सुन के मैं बहुत बढ़िया थी।
0: चलो
3: और मैं रागनी रुगनी का इतना शौकीन भी नहीं हूँ।
0: चलो कोई नहीं सांस्कृतिक
3: पुराने है ना ये।
0: हाँ
3: बार बार उत्तरी हरियाणा में बोलते हैं ना ये गाना सुनाओ ये गाना सुनाओ ये गाना।
0: हाँ।
3: क्या अच्छी बात नहीं उसी साथ दुनिया के लिए।
0: चलो रागनी भी जो सुनते हैं ना वो अच्छी रागनी है, धार्मिक है, हमारी संस्कृति से जुड़ी हुई जो चीज है।
3: अवस्था का हिसाब से सब सुरेंद्र जी।
0: हाँ नहीं कई नहीं धार्मिक धार्मिक चीज जो हमारी संस्कृति से जुड़ी हुई हो।
3: ध्यान रखें और बारी पैसा आपसे निवेदन है।
0: चलो कोई नहीं धन्यवाद।
3: आप
0: हेलो हेलो हेलो हेलो
4: हेलो।
0: हाँ जी नाम बताओ।
3: हेलो
0: जी, नाम बताइए।
3: हेलो
0: हेलो
3: हाँ जी
0: जी, नाम बताओ।
3: मनोहर लाल बहु कल्याण जी।
0: मनोहर लाल जी,
3: हाँ जी
0: जी।
3: प्रोग्राम तो बढ़िया बढ़िया है जी, बात सुनते सुनते बुढ़ा हो गया।
0: अच्छा
3: हाँ, इतना बढ़िया प्रोग्राम है, सांग सुना दो जी। बढ़िया
0: सांग कौन सा है बताओ।
3: अच्छा लगा
0: तुम्हें वो सुना दो जी। अच्छे लागे तो सारे अच्छे लागे, लेकिन जो हमारे श्रोता है वो सुने, उनने जो अच्छा लगता हूँ उसकी और कोशिश करा। हमें
3: राजा हरिचंद का सुना दो जी।
0: राजा हरिश्चंद्र का।
3: हाँ जी,
0: चलो ये पहले जावे है अपने यहाँ से।
3: हाँ जी,
0: राजा हरिश्चंद्र का जो सांग है वो जावे है अपने आड़ते हैं। चलो कोई नहीं, जरूर कोशिश करेंगे इसकी। हम राजा हरिश्चंद्र का जो सांग है उसको खोजबीन कर उसको ढूंढने की कोशिश करेंगे। तो धन्यवाद मनोहर लाल जी, आपने जो सांग के बारे में ये कहा। बे जो हमारे श्रोता हैं और भी जिनकी जो सिफारिश हैं, पूरी पूरी कोशिश यही की जाएगी बे जो हमारे श्रोता हैं उनकी सिफारिशों को पूरा किया जा। और भाई जो ग्रामीण संसार कार्यक्रम है उसका समय भी समाप्त हो गया। सुरेंद्र भाई ने भी जाजे दो, सारे बाण भैया ने राम राम।

अभी आपने सुना कार्यक्रम ग्रामीण संसार। मेरी वीप 262.47 मीटर यानी 1143 किलो हर्ट्ज पर आकाशवाणी का ही रोहतक केंद्र है। स्टूडियो की घड़ी में शाम के ठीक 7:30 हुए हैं। वक्त हो चला है फिल्म संगीत का। कर्म का आगाज कर रहे हैं स्वतन फिल्म के गीत के साथ आवाज़ें हैं लता मंगेशकर और किशोर कुमार की।

लता मंगेशकर और एस पी बाला सुब्रमण्यम की युगल स्वरों में आइए आपको सुनाते हैं एक दूजे के लिए फिल्म का एक खूबसूरत सा गीत, बोले आनंद बख्शी के संगीत लक्ष्मीकांत प्यारेलाल का।

कार्यक्रम की अगली प्रस्तुति फिल्म प्रेम रोग से है। आवाज़ है लता मंगेशकर की, बोल संतोष आनंद का, संगीत दिया है लक्ष्मीकांत प्यारेलाल ने।

खिताब लीजिए, सुने फिल्म का गीत। आवाजें हैं लता मंगेशकर और शब्बीर कुमार की। इस गीत को लिखा है आनंद बख्शी ने, संगीत दिया है आर डी बर्मन ने।

लता मंगेशकर और शब्बीर कुमार के स्वरों में अभी आपने गुलामी फिल्म का एक गीत सुना। आइए आपको सुनाते हैं जुर्म फिल्म का एक गीत। आवाज़ें हैं कुमार सानू और साधना सरगम की, बोल हैं इंद्र की और संगीत है राजेश रोशन का।

अभी आपने सुना कुमार सानू और साधना सरगम की स्वरों में जुर्म फिल्म का एक गीत। इसके बोल लिखे थे इंद्रवर्णी और संगीत यथा राजेश रोशन ने। इसी के साथ फिल्म संगीत का यंग यही समाप्त होता है। रात 10 बजे हम आपको रात 10:30 पर हम आपको सुनाएंगे फरमाइशी कार्यक्रम मन चाहे गीत। मीणादेव 262.47 मीटर यानी 1143 किलो हॉर्स पर आकाशवाणी का यह रोहतक केंद्र है। स्टूडियो की घड़ी में रात्रि के 8:25.04 हुए हैं। प्रस्तुत है सुगम संगीत। इस कार्यक्रम में आज हमारे कलाकार हैं हुकम चंद। तो आइए सुनते हैं कार्यक्रम की पहली गज़ल हुकम चंद की आवाज़ में।

0: इसी गज़ल के साथ सुगम संगीत कार्यक्रम यही संपन्न होता है। आकाशवाणी का ही रोहतक केंद्र है। स्टूडियो की घड़ी रात के 8:45 होने को हैं। अब आप सुनेंगे हिंदी और अंग्रेजी में समाचार।
1: नमस्कार, दिल्ली आकाशवाणी से समाचार संध्या के साथ मैं लवलीन निगम। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नॉर्वे के प्रधानमंत्री योनस गॉर स्टोर से ओस्लो में वार्ता की। द्विपक्षीय संबंधों को स्वच्छ ऊर्जा और समुद्री अर्थव्यवस्था पर केंद्रित करते हुए पर्यावरण अनुकूल रणनीतिक साझेदारी के स्तर तक ले जाने पर सहमति। प्रधानमंत्री मोदी को नॉर्वे के राजा हेराल्ड पंचम ने सर्वोच्च नागरिक सम्मान ग्रैंड क्रॉस ऑफ द रॉयल नॉर्वेजियन ऑर्डर ऑफ द मेरिट से सम्मानित किया। सरकार का निर्यात लक्ष्य इस वर्ष $1 ट्रिलियन। केंद्रीय मंत्री जितेंद्र सिंह ने अमरीकी उद्योग प्रतिनिधिमंडल के साथ परमाणु ऊर्जा सहयोग और भारत में निजी निवेश के अवसरों पर वार्ता की। पश्चिम बंगाल सरकार ने भ्रष्टाचार और महिलाओं पर अत्याचारों की जांच के लिए 2 जांच आयोग गठित किए। और आयुष मंत्रालय ने अत्यधिक गर्मी के संबंध में जन स्वास्थ्य परामर्श जारी किया। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की नॉर्वे की पहली यात्रा के दौरान दोनों देशों ने भारत नॉर्वे संबंधों को पर्यावरण अनुकूल रणनीतिक साझेदारी में उन्नत करने की घोषणा की है। आज ओस्लो में प्रधानमंत्री योनस गॉर स्टोर के साथ प्रतिनिधिमंडल स्तर की वार्ता के बाद संयुक्त बयान में प्रधानमंत्री मोदी ने इस बात पर प्रकाश डाला कि ये साझेदारी स्वच्छ ऊर्जा से लेकर जलवायु लचीलापन, समुद्री अर्थव्यवस्था लेकर हरित शिपिंग तक के क्षेत्रों में सहयोग को बढ़ावा देगी। उन्होंने आशा व्यक्त की कि भारत की क्षमता, गति और प्रतिभा का उपयोग करते हुए नॉर्वे की प्रौद्योगिकी और पूंजी के सहयोग से भारतीय कंपनियां वैश्विक समाधान विकसित करेंगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आतंकवाद के खिलाफ भारत के साथ मजबूती से खड़े रहने के लिए नॉर्वे का आभार व्यक्त किया।
2: मैं पिछले वर्ष नॉर्वे आने वाला था, लेकिन पहलगाम में हुए आतंकी हमले के कारण वह यात्रा स्थगित करनी पड़ी। उस कठिन समय में नॉर्वे ने आतंकवाद के विरुद्ध भारत के साथ मजबूती से खड़े होकर सच्ची मित्रता का परिचय दिया। आज जब मैं नॉर्वे आया हूँ तो मैं इस सॉलिडेरिटी के लिए हृदय से आभार व्यक्त करता हूँ।
1: हाल ही में लागू व्यापार और आर्थिक साझेदारी से परिणाम सुनिश्चित करने के लिए आज ठोस कदम उठाए गए। विशेष रूप से उच्च तकनीक, कृत्रिम बुद्धिमत्ता और स्टार्टअप के क्षेत्र में सहयोग की परिकल्पना की गई ताकि साझेदारी को भविष्य के लिए तैयार किया जा सके।
2: रिसर्च, एजुकेशन और इनोवेशन भी हमारे संबंधों के मजबूत पिलर्स बने हैं। आज हमने सस्टेनेबिलिटी, ओशन एनर्जी, जियोलॉजी और हेल्थ जैसे क्षेत्रों में रिसर्च कोऑपरेशन बढ़ाने पर सहमति बनाई। इंजीनियरिंग, एआई, साइबर और डिजिटल जैसे सेक्टर में हम अपनी यूनिवर्सिटी और स्टार्टअप इकोसिस्टम को जोड़कर अपने पार्टनरशिप को फ्यूचर रेडी बनाएंगे।
1: द्विपक्षीय बैठक में उच्च तकनीक, स्वास्थ्य समाधान, डिजिटल स्वास्थ्य और डिजिटल सार्वजनिक अवसंरचना के क्षेत्रों में कई समझौता ज्ञापनों पर हस्ताक्षर किए गए। एक त्रिकोणीय सहयोग समझौते पर भी हस्ताक्षर किए गए। इसके अंतर्गत भारत और नॉर्वे संयुक्त रूप से भारत के डिजिटल सार्वजनिक अवसंरचना का उपयोग करते हुए वैश्विक दक्षिण के देशों को मानव विकास समाधान प्रदान करेंगे। नॉर्वे के प्रधानमंत्री ने आज एक महत्वपूर्ण बयान में संघर्षों से घिरे विश्व में सहयोग बढ़ाने के महत्व पर जोर दिया। दोनों नेताओं ने नियम आधारित विश्व व्यवस्था में अपने साझा विश्वास और संवाद तथा कूटनीति के प्रति प्रतिबद्धता को दोहराया।
2: भारत और नॉर्वे दोनों

0: रूल्स बेस्ड ऑर्डर, डायलॉग और डिप्लोमेसी में विश्वास रखते हैं। हम एकमत है कि मिलिट्री कॉन्फ्लिक्ट से किसी भी मुद्दे का समाधान नहीं निकल सकता, यूक्रेन हो या पश्चिमी एशिया। हम संघर्ष की शीघ्र समाप्ति और शांति के हर प्रयास का समर्थन करते हैं। हम इस बात पर भी एकमत है कि बढ़ते हुए ग्लोबल चैलेंजेस के समाधान के लिए ग्लोबल इंस्टीट्यूशंस का रिफॉर्म अनिवार्य है।
1: प्रधानमंत्री मोदी को नॉर्वे के महामहिम राजा हेराल्ड पंचम द्वारा रॉयल नॉर्वेजियन ऑर्डर ऑफ द मेरिट का ग्रैंड क्रॉस प्रदान किया गया। केंद्रीय मंत्री अमित शाह, जगत प्रकाश नड्डा, पीयूष गोयल, मनोहर लाल और किरेन रिजिजू सहित कई अन्य मंत्रियों ने आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को नॉर्वे के सर्वोच्च सम्मान से सम्मानित किए जाने पर बधाई दी। गृहमंत्री ने कहा कि 32वां अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कार प्रधानमंत्री मोदी के नेतृत्व के विस्तार का प्रतीक है। स्वास्थ्य मंत्री जगत प्रकाश नड्डा ने कहा कि यह सम्मान मोदी के सशक्त नेतृत्व और विश्व भर में भारत के बढ़ते सम्मान को दर्शाता है। विद्युत मंत्री मनोहर लाल ने कहा कि यह सम्मान वसुधैव कुटुंबकम के चिरस्थायी सिद्धांतों के माध्यम से वैश्विक सद्भाव को मजबूत करने के प्रति श्री मोदी की अटूट प्रतिबद्धता को दर्शाता है। प्रधानमंत्री मोदी ने कहा है कि स्वीडन के उनके यात्रा के कई महत्वपूर्ण परिणाम निकले हैं जो द्विपक्षीय संबंधों को एक नई गति प्रदान करेंगे। सोशल मीडिया पोस्ट में उन्होंने कहा कि द्विपक्षीय संबंधों को रणनीतिक साझेदारी
2: को मजबूत करना है। श्री मोदी इटली की प्रधानमंत्री के साथ प्रतिनिधि मंडल स्तरीय वार्ता करेंगे जिसमें समुद्री सुरक्षा और मजबूत कनेक्टिविटी प्रमुख विषय होंगे। इटली भारत को केवल यूरोप ही नहीं बल्कि पूरे भूमध्य सागरीय क्षेत्र तक पहुँच प्रदान करता है। आपूर्ति श्रृंखला साझेदारी और रक्षा सहयोग के दृष्टिकोण से यह अत्यंत महत्वपूर्ण माना जा रहा है। यह 5 देशों की यात्रा केवल कूटनीतिक प्रयास नहीं है, ये भारत के भविष्य के ऊर्जा मार्गों, AI साझेदारी, सेमीकंडक्टर पहुंच, रक्षा निर्माण और वैश्विक हितों को सुरक्षित करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। रोम से आकाशवाणी के लिए सुपर्णा भाटिया।
1: ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं।

0: जनगणना के पहले चरण में हाउस लिस्टिंग और हाउसिंग सेंसस यानी आपके मकान की गणना होगी। आइए आपकी साझेदारी से इसे सफल बनाएं और विकसित भारत 2047 की ओर एक और कदम बढ़ाएं।
1: समाचार संध्या में आपका फिर स्वागत है। वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने कहा है कि भारत ने इस वर्ष $1 ट्रिलियन और अगले 5 वर्ष में $2 ट्रिलियन के निर्यात का लक्ष्य रखा है। उन्होंने कहा कि यही आत्मनिर्भर भारत की सच्ची पहचान होगी। नई दिल्ली में एक कार्यक्रम में श्री गोयल ने कहा कि वैश्विक चुनौतियों के बावजूद इस वर्ष निर्यात $863 अरब तक पहुंच गया है। केंद्रीय मंत्री ने कहा कि विकसित भारत 2047 के लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए भारत के उद्योगों, व्यापार समुदाय और लोगों में जो जोश है, उसे दुनिया की कोई भी ताकत रोक नहीं सकती। उन्होंने कहा कि भारत की अर्थव्यवस्था लगातार बढ़ रही है और निर्यात भी बढ़ रहा है।
2: भारत का बना हुआ सामान, भारत से दी हुई सेवाएं और अधिक तेजी से आगे बढ़े। हम संतुष्ट ना हो कि हम विश्व की सबसे तेज गति से आगे बढ़ने वाली अर्थव्यवस्था है, कभी संतुष्ट ना हो और आगे बढ़ा छलांग लेने की सोच और क्या कर सकते हैं उसके लिए पूरे समय हमें सोचते रहना पड़ेगा, काम करते रहना पड़ेगा, नई चीजों को आगे लेके जाना पड़ेगा।
1: भारत में परमाणु क्षेत्र में निजी निवेश और उद्योग सहयोग के उभरते अवसरों के बारे में उच्च स्तरीय अमरीकी उद्योग प्रतिनिधि मंडल ने आज विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्री डॉ. जितेंद्र सिंह से चर्चा की। प्रतिनिधि मंडल के इस दौरे में अमरीकी परमाणु उद्योग के वरिष्ठ प्रतिनिधि, व्यावसायिक हितधारक और नागरिक परमाणु ऊर्जा तथा उन्नत प्रौद्योगिकी में भारत अमरीका सहयोग से जुड़े अधिकारी शामिल थे। इस अवसर पर डॉक्टर सिंह ने कहा कि भारत और अमेरिका के बीच आज विज्ञान, प्रौद्योगिकी

0: स्वच्छ ऊर्जा और उभरते क्षेत्रों में मजबूत और भविष्योन्मुखी साझेदारी है। डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने विकसित भारत 2047 की परिकल्पना के अंतर्गत भारत के दीर्घकालिक स्वच्छ ऊर्जा लक्ष्यों का उल्लेख करते हुए कहा कि भारत का लक्ष्य 2047 तक अपनी परमाणु ऊर्जा क्षमता को वर्तमान 8.8 गीगावाट से बढ़ाकर 100 गीगावाट करना है। सरकार ने कहा है कि पश्चिम एशिया संकट के कारण आयात में व्यवधान के बावजूद देश में तेल शोधक कारखाने सामान्य रूप से काम कर रहे हैं और भारत के पास कच्चे तेल का पर्याप्त भंडार है। पश्चिम एशिया में हाल की घटनाओं पर आज नई दिल्ली में आयोजित अंतर मंत्रालय प्रेस वार्ता को संबोधित करते हुए पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय की संयुक्त सचिव सुजाता शर्मा ने कहा कि देश में पेट्रोल, डीजल, LPG और प्राकृतिक गैस का पर्याप्त भंडार है।
1: कमर्शियल LPG की सप्लाई 70% पर अभी बनी हुई है। मार्च के महीने से लेकर अभी तक लगभग 7,37,000 PNG कनेक्शंस को गैसिफाई किया गया है। 2,76,000 कनेक्शंस के लिए इंफ्रास्ट्रक्चर क्रिएट किया जा चुका है और 7,76,000 से अधिक ऐसे कंज्यूमर्स हैं जिन्होंने PNG कनेक्शन के लिए अपने आप को रजिस्टर कराया है।
0: इस बीच सरकार ने YouTube के उन वीडियो का खंडन किया है जिसमें दावा किया जा रहा है कि भारत में केवल 9 दिन का तेल भंडार बचा है। पत्र सूचना कार्यालय की तथ्य जांच इकाई ने दावे को भ्रामक बताते हुए कहा कि देश में लगभग 60 दिन के कच्चे तेल का भंडार है और शोधन क्षमता भी पर्याप्त है। पश्चिम बंगाल सरकार ने भारतीय जनता पार्टी के चुनावी वादों के अनुरूप संस्थागत भ्रष्टाचार और महिलाओं पर अत्याचारों की जांच के लिए 2 जांच आयोगों का गठन किया है। मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी ने राज्य मंत्रिमंडल की मंजूरी के बाद आज इस फैसले की घोषणा की। संस्थागत भ्रष्टाचार के जांच आयोग की अध्यक्षता कलकत्ता उच्च न्यायालय के सेवानिवृत्त न्यायाधीश बिस्वजीत बसु करेंगे। पूर्व सरकार के कार्यकाल के दौरान महिलाओं पर अत्याचारों पर गठित आयोग की अध्यक्षता कलकत्ता उच्च न्यायालय के सेवानिवृत्त न्यायाधीश समाप्ति चैटर्जी करेंगी। मुख्यमंत्री ने बताया कि दोनों आयोग 1 जून से काम शुरू करेंगे। केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो CBI ने अब तक दिल्ली, जयपुर, गुरुग्राम, नासिक, पुणे, लातूर और अहिल्यानगर से नीट परीक्षा पेपर लीक मामले में 10 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। पिछले 24 घंटों में CBI ने 5 स्थानों पर तलाश अभियान में कई आपत्तिजनक दस्तावेज, लैपटॉप और मोबाइल फोन जब्त किए। ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in और हमारे न्यूज़ ऑन AIR ऐप पर भी उपलब्ध हैं।

0: investment opportunities in India. And amid extreme heat conditions, Ministry of Ayush issues advisory to prevent heat-related illnesses. That is all in the news at 9. Good night.
1: मीडियम वेव 262.47 मीटर यानी 1143 किलो हर्ट्ज पर आकाशवाणी का ये रोहतक केंद्र है। प्रस्तुत है कार्यक्रम एक फिल्म से। इस कार्यक्रम के अंतर्गत आज हम आपको सुनवा रहे हैं बरेली की बर्फी फिल्म के कुछ चुनिंदा गीत। तो आइए सुनते हैं कार्यक्रम का पहला गीत। आवाजें हैं अरिजीत सिंह और समीरा कोपरिका कर की।
2: मिलवा दो ना प्लीज, एक बार मिलवा दो, एक बार मिलवा दो।

0: ऐसे तुम हो ना बिट्टी, तुम्हें चाहने वाले, प्यार करने वाले बहुत मिल जाएंगे जिंदगी में।
1: तुम भी तो जानते हो ना हमें इतने टाइम से, तुम्हें तो नहीं हुआ हमसे प्यार।

समीरा की आवाज़ में अभी आपने ये सुना। आइए सुनते हैं कार्यक्रम का अगला गीत। इस गीत को गाया है देव नेगी, पावनी पांडे और श्रद्धा पंडित ने।

0: कार्यक्रम का अंतिम गीत आयुष्मान खुराना की आवाज में।
1: आएगा

0: आयुष्मान खुराना की आवाज़ में अभी आपने की सुना। इसी गीत के साथ एक फिल्मी कार्यक्रम ही संपन्न होता है। इस कार्यक्रम के अंतर्गत अभी आपने सुने बरेली की बर्फी फिल्म के कुछ चुनिंदा गीत। मीडियम वेव 262.47 मीटर यानी 1143 किलो हॉर्स पर आकाशवाणी का ये रोहतक केंद्र है। स्टूडियो के अड़मी रात की 9:30 होने को है। अगला कार्यक्रम दिल्ली केंद्र से लिया किया जाएगा।
1: Public speech.

0: नमस्कार, पब्लिक स्पीक में आपका बहुत बहुत स्वागत और अभिनंदन। इन दिनों अगर आपके घर में जनगणना कर्मी आकर आपके मकान के बारे में जानकारी हासिल कर रहे हैं तो घबराने की जरूरत बिल्कुल भी नहीं है, क्योंकि उनका सहयोग करें और पूरी जानकारी उन तक पहुंचाएं, क्योंकि देशव्यापी जनगणना 2027 के पहले चरण का काम तेजी से चल रहा है, जिसमें मकान सूचीकरण और मकानों की गणना की जा रही है। इस बार जनगणना कार्यों में पहली बार शुरू की गई है स्वगणना सुविधा, जिसे जनता से काफी उत्साहजनक रिस्पॉन्स भी मिल रहा है। काफी राज्यों में स्वगणना का जो विकल्प है वो समाप्त हो चुका है और कुछ राज्य अभी बचे हैं। ये पहल जनगणना कार्यों के डिजिटलीकरण की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम माना जा रहा है। और इसे कैसे भरना होगा, किस तरह के सवाल इसमें पूछे जा रहे हैं, अगर आपके मन में कोई भी सवाल है तो तुरंत हमें कॉल कीजिए, क्योंकि आज के कार्यक्रम में हम मकान सूचीकरण और आवास गणना पर परिचर्चा प्रस्तुत कर रहे हैं। तो आइए कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हैं। मैं हूं आपके साथ फरहत नाज, और आज आपके सवालों का जवाब देने के लिए हमने आमंत्रित किया है गृह मंत्रालय की महापंजीयक और जनगणना आयुक्त कार्यालय में उप महापंजीयक रुशाली वराडे जी को। नमस्कार रुशाली जी, कार्यक्रम में आपका बहुत बहुत स्वागत और अभिनंदन।
1: नमस्कार और धन्यवाद।
0: श्रोताओं, हमारी फोन लाइंस खुल चुकी हैं, आप हमारे विशेषज्ञ से सवाल पूछ सकते हैं। नंबर है 0112331041, 0112371717, 0112371706 और 0112331444 पर आप प्रश्न पूछ सकते हैं। इसके अलावा आप हमारे प्रश्न व्हाट्सएप नंबर 9289094044 पर भी भेज सकते हैं। नंबर एक बार फिर सुन लें, 9289094044 पर आप सवाल भेजते रहिए। सोशल मीडिया एक्स पर #AskAIR का इस्तेमाल करके भी आप प्रश्न पूछ सकते हैं। तो आइए कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हैं, और रुशाली जी, सबसे पहला प्रश्न हमारा आपसे ही है कि पहले चरण का काम तेजी से शुरू हो गया है, मकान सूचीकरण और मकानों की गणना किस तरह की जा रही है इसमें, और किस तरह के सवाल इसमें जनता के लिए चुने गए हैं?
1: जी, जैसे अभी आपने कहा कि इस बार पहली बार हम स्वगणना की उपलब्ध फैसिलिटी उपलब्ध है पब्लिक के लिए, तो काफ़ी राज्यों में स्वगणना का पीरियड ख़त्म हो चुका है, जो कि हमने 15 दिन के लिए रखा था, और 1 महीने का समय है जो कि प्रगणक घर घर जाके सारी इन्फॉर्मेशन कलेक्ट कर रहा है। तो कुछ 7 या 8 स्टेट में हमारी स्वगणना कंप्लीट हो चुकी है और HLO का काम भी कंप्लीट हो चुका है। कुछ राज्यों में स्वगणना अभी चल रही है। तो क्वेश्चन के बारे में अगर हम कहें तो जैसे नाम है इस फेज का मकान सूचीकरण एवं मकानों की गणना, तो इसमें हम सिर्फ मकानों की गणना करेंगे और मकान की हालत कैसी है, घर कैसा है और घर में क्या क्या सुविधाएं उपलब्ध है, जैसे पीने का पानी कहाँ से आता है, पीने का पानी कैसे है, टॉयलेट की सुविधा है या नहीं, बाथरूम की सुविधा है या नहीं, घर में कितने लोग रहते हैं, कितने कपल्स रहते हैं, रूम्स कितने हैं घर पे, और घर में एसेट्स क्या है, जैसे कि रेडियो है या नहीं, टेलीविजन है या नहीं, 2-व्हीलर 4-व्हीलर है या नहीं, तो इस तरह के सवाल पूछे जाएंगे।
0: जी रुशाली जी, और सबसे पहले हमारे लिसनर हमसे जुड़ गए हैं दिल्ली से, धर्मवीर जी। जी धर्मवीर जी।
2: नमस्कार मैडम।
0: नमस्कार।
2: हाँ, एक्सपर्ट को भी नमस्कार। मैं धर्मवीर गाने का दिल्ली से बोल रहा हूँ। मेरे सवाल में मैं ये पूछना चाहूंगा कि घर घर जाके आप इसके लिए इंक्वायरी करेंगे, जानकारी लेंगे, और कुछ घरों में जाने का मतलब ये है कि घरों में महिलाओं का होना, क्या जो आपके जाएंगे वर्कर तो उसमें एक महिला भी होगी साथ, पहला सवाल। दूसरा सवाल ये, जो अगर कोई दिव्यांग है, दिव्यांग का मतलब ये है कि वो अगर उसके पास स्मार्टफोन नहीं है तो वो कैसे अपने, जो पहले आपने कहा था कि इसमें खुद भी ये दर्ज कर सकता है, और इसके लिए हमें क्या क्या, अब मैं कित अगर कोई फ्रॉड आ जाता है इंक्वायरी करने के लिए, तो ऐसे में हम क्या पहचान करें कि ये आदमी फ्रॉड है कि ये सरकार के भेजा गया आपका वर्कर है। धन्यवाद।
0: धर्मवीर जी ने 3 सवाल पूछे हैं रुशाली जी। सबसे पहला सवाल उनका ये है कि अगर महिलाएं घर में मौजूद हैं तो क्या कोई महिला कर्मी भी जनगणना कर्मी के साथ मौजूद रहेंगी?
1: तो पहला जो क्वेश्चन है आपका, महिला अलग से तो नहीं होगी, क्योंकि हमारे जो प्रगणक होंगे वो जनरली होते हैं जो स्कूल के टीचर्स होते हैं या स्टेट गवर्नमेंट ऑफिशियल्स होते हैं। हम लोग इंस्ट्रक्शन जरूर देते हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा महिलाओं को इसमें अपॉइंट करें, क्योंकि उनको इन्फॉर्मेशन एक फेथफुली अच्छी इन्फॉर्मेशन मिलती है, बट ये कंपलसरी नहीं है और हर घर में एक ही आदमी जाएगा, क्योंकि ऑलरेडी हमें पूरे इंडिया के लिए 31 लाख प्रगुणकों की ज़रूरत है। तो इतने सारे लोगों के साथ मतलब और एक महिला जाना इट्स मतलब संभव नहीं है। लेकिन जो तीसरा सवाल है मैं इसी के साथ जोड़ देती हूँ, जो फ्रॉड वाली बात इन्होंने पूछी है धर्मवीर जी ने, तो फ्रॉड की कोई ये नहीं है, क्योंकि प्रगणक के पास अपना आई कार्ड होगा, उसके पास चार्ज ऑफिसर का सिग्नेचर होगा, उस पर स्टैम्प होगा, प्लस क्यूआर कोड होगा आई कार्ड पे, और अपॉइंटमेंट लेटर पे भी क्यूआर कोड स्कैन कर सकते हैं। तो क्यूआर कोड स्कैन होने के बाद हमारी वेबसाइट उस पर आ जाएगी और वेबसाइट पे उसकी डिटेल्स आपको दिख जाएंगे, तो फ्रॉड की बिल्कुल दिक्कत नहीं है। हालांकि हो सकता है, लेकिन उसके लिए आप अपने चार्ज ऑफिसर को या लोकल ऑफिसर से बात कर सकते हैं।
0: और दूसरा सवाल इन्होंने पूछा है कि दिव्यांग व्यक्ति फॉर्म कैसे भर सकते हैं।
1: जी, तो दिव्यांग व्यक्ति के लिए जैसे पहले ही बताया मैंने, स्वगणना एक अतिरिक्त फैसिलिटी हम दे रहे हैं, ये कंपलसरी नहीं है। प्रगणक हर घर जाके इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करेगा, अगर आपने स्वगणना की है तो भी प्रगणक घर घर जाके फिर से वो वेरीफाई करेगा। तो अगर दिव्यांग कोई है वो इन्फॉर्मेशन नहीं दे सकता तो कोई डरने की जरूरत नहीं है, प्रगणक वहां पे जरूर जाएगा और इन्फॉर्मेशन लेके आएगा।
0: और अब हमारे दूसरे लिसनर हरियाणा से हमारे साथ जुड़ गए हैं, राजेंद्र जी। जी राजेंद्र जी
3: नमस्कार। जी जागृति जी को और विशेषज्ञ जी को नमस्कार।
0: नमस्कार, मैं फरहत नाज बात कर रही हूँ राजेंद्र जी,
3: सॉरी जी,
0: लेकिन मैं आपका नमस्कार जागृति जी को भी पहुँचा दूंगी।
3: जी जी, और मैं ये जानना चाहता है अगर कोई गलत जानकारी देता है या तो कोई उस पे कोई कार्रवाई होगी, या जैसे कोई नोटिस दिया जाएगा जनगणना के बारे में, मकान के बारे में, उस पे क्या कार्रवाई हो सकती है? और जो 33 सवाल पूछे जाते हैं उसमें कुछ ही मेरे से कुछ 2-3 ही सवाल पूछे गए थे, और मुझसे ये पूछा गया था कि आप टीवी देखते हो, तो मैंने उनसे मेरे को ये पूछ लिया था कि आप रेडियो सुनते हो, तो मैंने कहा रेडियो मैं पहला ऐसा शख्स कह रहे मिला है इसके बारे में भी।
0: तो इनका सवाल था कि रेडियो सुनते हैं कि नहीं, इस तरह के जो सवाल हैं वो पूछे गए थे।
1: जी, एक तो पहला मुझे लगता है इनका सवाल था गलत जानकारी के बारे में, तो पहले मैं बता दूं कि गलत जानकारी अगर कोई देता तो सेंसस एक्ट में ये प्रोविजन है कि उसे कोई पनिशमेंट मिलती है। बट उससे ऊपर जो इम्पोर्टेंट बात है कि सेंसस की इन्फॉर्मेशन बहुत ही कॉन्फिडेंशियल है, सेंसस एक्ट में ये मेंशन है कि उसकी पूरी इन्फॉर्मेशन गोपनीय रखी जाएगी। तो जनरली लोग सही जानकारी देते हैं, और सेंसस एक्ट में ये भी प्रोविजन है कि लोग अपने बिलीफ से अपने नॉलेज से सही जानकारी दे। जो डेटा रिलीज होता है वो एक एग्रीगेट लेवल पे रिलीज होता है, तो आपकी इन्फॉर्मेशन पर्सनल इन्फॉर्मेशन लीक होने की कोई भी संभावना नहीं है। तीसरा जो है, जो हमारे 33 सवाल है वो नोटिफाई हो चुके हैं, गवर्नमेंट के गैजेट में नोटिफाई हो चुके हैं, तो उसमें जो भी सवाल है वो सारे उतने ही एनुमरेटर को पूछने हैं और उनका ही जवाब रिस्पोंडेंट को देना है। ये बिल्कुल सही कहा कि टीवी का सवाल उसमें है, रेडियो का सवाल उसमें है, रेडियो आप किस पे सुनते हैं ये भी उसमें पूछा गया है कि आप मोबाइल पे सुनते हैं या आपके पास रेडियो सेट है या फिर आप कार में सुनते हो। उसी तरह टीवी का भी अलग अलग आप कैसे देखते हो, मतलब दूरदर्शन है आपके पास, फ्री डिश या डीटीएच है या फायर स्टिक है, केबल कनेक्शन है, तो अलग अलग सवाल उसमें है।
0: और अगर किसी भी तरह की हमारे श्रोता दिक्कत उठा रहे हैं तो आप मकान सूचीकरण और मकान गणना अनुसूची के लिए वेबसाइट जो पोर्टल दिया हुआ है sec.census.gov.in पर लॉग इन कर सकते हैं, और आप सारे सवाल जो है वो इसमें आपको शो हो जाएंगे किस तरीके के सवाल जो है जनगणना कर्मी पूछ रहे हैं, ताकि आपको आसानी होगी उस समय आपका सवालों का जवाब देने में। और रोशाली जी, एक और प्रश्न हमारे पास आया है कि क्या जनगणना में सभी के लिए शामिल होना आवश्यक है?
1: बिल्कुल, जैसे जनगणना का पहला ही जो मोटो है कि हम किसी को छोड़ेंगे नहीं या किसी को दोबारा गिनती करेंगे नहीं, तो हर एक को इंक्लूड होना है जनगणना में। और जो बार बार मैं जिक्र कर रही हूँ जनगणना अधिनियम की, सेंसस एक्ट 1948, उसके हिसाब से हर एक व्यक्ति को या हर एक परिवार के मुखिया को ये कंपलसरी है कि सही सही जानकारी प्रगणक को दे। और ये प्रगणक की भी जिम्मेदारी है कि जितने सवाल गैजेट में पब्लिश हुए हैं उतने ही सवाल पूछे, उसके बिना और कोई भी सवाल ना पूछे और जो भी इन्फॉर्मेशन वो कलेक्ट कर रहा है वो उसको गोपनीय रखे।
0: जी अच्छा, अगर कोई व्यक्ति मतलब जॉब की वजह से यहाँ पर रह रहा है, दिल्ली शहर में रह रहा है, लेकिन वो बिलोंग करता है किसी दूसरे राज्य से, तो वो क्या दोनों जगह का जो है उसके लिए भरना जरूरी होगा सेल्फ एनुमरेशन?
1: बिल्कुल नहीं, जैसे मैंने कहा सबको जैसे हम इंक्लूड करते हैं तो डुप्लीकेट भी नहीं करते हैं। तो जहाँ पे जनगणना की ये कंसेप्ट है, जो जहाँ पे नॉर्मली रिसाइड करता है यानी जहाँ पे मैक्सिमम टाइम रहता है, अगर काम के सिलसिले में वो दिल्ली में रहता है तो उसकी इन्फॉर्मेशन दिल्ली में कलेक्ट होगी। उसके अदर फैमिली मेंबर्स अगर गांव में रहते हैं तो अदर फैमिली मेंबर्स की गिनती गांव में होगी, लेकिन जो जहां पे रहता है वहीं पे उसका काउंटिंग होता है।
0: जी, और अब दिल्ली से ब्रह्मदत्त जी हमारे साथ जुड़ गए हैं। जी ब्रह्मदत्त जी।
4: नमस्कार मैडम जी।
0: नमस्कार।
4: हमारे विषय विशेषज्ञ जी को प्रणाम।
1: नमस्ते। प्रणाम।
4: मेरे दो जिज्ञासाएं हैं। पहली है कि जो हमारे दस्तावेज हैं दूसरे शहर के बने हुए हैं, उत्तर प्रदेश राज्य के, और हम दिल्ली में निवास कर रहे हैं, तो क्या हम दिल्ली की जनगणना में सम्मिलित हो सकते हैं? प्रथम प्रश्न। दूसरी है मैडम ये है कि अगर हम घर पर नहीं मिलते हैं तो क्या जनगणना स्टाफ को हम अपने समय के हिसाब से बुला सकते हैं? भाई छुट्टी वाले दिन आ जाना आप, तो क्या ऐसा संभव है? एक अन्य प्रश्न है, जो लोग जनगणना में शामिल नहीं होना चाहते क्या उन लोगों के लिए कोई दंडात्मक कार्यवाही का भी प्रावधान है? धन्यवाद मैडम जी।
1: धन्यवाद ब्रह्मदत्त जी। तो तीनों सवाल आपके बड़े ही अच्छे थे। पहला तो ये है कि जनगणना में कोई भी दस्तावेज देने की ज़रूरत नहीं है, आप जो भी इन्फॉर्मेशन देंगे वो प्रगणक को नोट डाउन करनी है। इसीलिए हालांकि हम लोग सबसे अपील करते हैं कि जो इन्फॉर्मेशन सही है वही इन्फॉर्मेशन दे दे, और आपकी इन्फॉर्मेशन बिल्कुल गोपनीय रहेगी, किसी के साथ वो साझा नहीं की जाएगी। एक और इम्पॉर्टेंट बात मैं बताती हूँ कि RTI में भी हम इन्फॉर्मेशन देते नहीं हैं, पर्सनल इन्फॉर्मेशन। कोई कोर्ट में अगर सबूत के तौर पर देने के लिए मांगता है तो उसको भी इन्फॉर्मेशन नहीं दी जाती एज पर सेंसस एक्ट। दूसरा जो सवाल था आपका, अगर आप घर पर नहीं मिलेंगे तो इसके लिए भी हमारे प्रगणक को इंस्ट्रक्शन दिया जाता है कि अगर घर लॉक मिलता है तो 2 या 3 बार वहाँ पे जाए, छुट्टी के दिन जाए या सुबह जल्दी जाए या शाम को देर से जाए, ताकि घर पे कोई ना कोई मिलेगा। तीसरा जो आपका सवाल था दंडात्मक कार्रवाई का, तो सेंसस एक्ट में ये प्रोविजन है सेक्शन 11 में कि अगर कोई गलत जानकारी देता है तो उसको पनिशमेंट दी जा सकती है।
0: तो यानी कि पूरा सहयोग आपको जनगणना कर्मी के साथ करना है और सही और सटीक जानकारी उन तक उपलब्ध करवानी है। और अब त्रिपुरा से अविनाश जी हमारे साथ जुड़ गए हैं। जी अविनाश जी।
5: जी नमस्कार।
0: नमस्कार
5: जी, मैं नॉर्थ ईस्ट त्रिपुरा से अविनाश अली बोल रहा हूँ, और मेरा सवाल है कि जब जनगणना टाइम पे सरकारी कर्मचारी हमारे घर पे आते हैं तो हम अपना जानकारी उनको प्रदान करेंगे, तो लेकिन हम उनको पहचानेंगे कैसे कि वो सही व्यक्ति आए हैं मेरे घर पे? क्योंकि ऐसा भी हो सकता है कि कोई ठगी व्यक्ति भी आ सकते हैं हमारे डाटा कलेक्ट करने के लिए, तो हम उनको पहचानेंगे कैसे?
1: जी धन्यवाद अविनाश जी। और उसको पहचानेंगे कैसे, तो उनके पास आई कार्ड होगा और अपॉइंटमेंट लेटर होगा, जो कि लोकल चार्ज ऑफिसर, हमारे जो चार्ज ऑफिसर होते हैं वो तहसीलदार या मामलतदार होता है आपके एरिया का, या कोई BDO होता है, ब्लॉक डेवलपमेंट ऑफिसर। तो ये इनका स्टैम्प और सिग्नेचर के साथ प्रगणक के पास एक आई कार्ड होगा, अपॉइंटमेंट लेटर होगा, वो आप चेक कर सकते हैं। उसके ऊपर QR कोड होगा, QR कोड स्कैन करके आप देख सकते हैं, उसमें आपको हमारी वेबसाइट से सारे डिटेल मिल जाएंगे। फिर भी अगर आपको लगता है कोई फ्रॉड हो रहा है तो आप अपने चार्ज ऑफिसर से या एरिया के कोई भी ऑफिसर से उसकी कंप्लेंट कर सकते हैं।
0: रुशाली जी, एक और प्रश्न मेरे पास आया है कि खाली मकान, बंद मकान या फिर निर्माणाधीन मकान की गिनती किस श्रेणी में होगी और इन्हें कैसे चिन्हित किया जाता है?
1: जी तो हमारे जो मैंने कहा हर एक क्वेश्चन के अलग अलग कोड है, तो जो हमारा जनगणना मकान के कोड है उसमें कुछ कोड है वैकेंट के।

0: एज अ वैकेंट कर देते हैं और एक रिमार्क डाल देते हैं कि इट इज़ अंडर कंस्ट्रक्शन, और जो खाली है उसको एक वैकेंट हम मानते ही है। कुछ ऐसे घर भी मिलते हैं कि घर लिया हुआ है लेकिन लॉक है, रहते कहीं और है, तो उसको भी लॉक के कैटेगरी में हम इंक्लूड करते हैं ताकि सेकंड फेज में वो छूटे नहीं।
1: जी अच्छा, इसमें जनगणना मकान नंबर कौन देता है और दीवार पर लिखने का क्या नियम है?
0: ये प्रगणक देता है, और नियम है कि एक प्रगणक को एक जो एरिया देते हैं, एनुमरेशन ब्लॉक हम जिसको कहते हैं, छोटा सा एरिया होता है 700 से 800 पॉपुलेशन या 150 घरों का, तो वो पूरे अपने एरिया में सीरियली जनगणना मकान नंबर देता है, एक से लेकर जो भी लास्ट उसके एरिया में होगा तो वो खुद लिखता है। उसके लिए हमने कुछ स्टेशनरी उसको प्रोवाइड की है, मार्कर पेन्स वगैरह दिए।
1: ठीक है, और अब शिमला से हमारे साथ राकेश जी जुड़ गए हैं। जी राकेश जी।
2: जी नमस्कार।
1: नमस्कार
2: जी, मेरा प्रश्न ये है कि जो घर में रहते तो उनकी तो होती है, जो किराए के मकान पे रहते हैं क्या वो भी जनगणना में आता है? उनको क्या जनगणना करानी पड़ती है जो किराए पे रहते हैं?
0: जी बिल्कुल, जैसे फिर से मैं कह रही हूँ कि जनगणना में किसी को छोड़ा नहीं जाता, किसी को दोबारा गिना नहीं जाता। तो अगर आप किराए के भी घर में रह रहे हैं तो जनगणना का पहला जो रूल है कि जो जहाँ पे रहता है वहाँ पे उसकी गिनती होती है। तो आपका घर खुद का हो, किराए का हो या और किसी का हो, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। आप जहाँ पे रह रहे वहीं पे आपकी गिनती होगी। आपका घर किराए का है या खुद का है ये जानने के लिए हमारा क्वेश्चन है कि घर आपका खुद का है या किराए का है। किराए का है तो उसके लिए भी आपका कोड है कि आपका घर किराए का है, लेकिन आपका खुद का घर कहीं और है तो उससे हमारे पास ये एक नंबर्स आ जाएंगे कि कितने मतलब पूरे कंट्री में या पूरे देश में कितने लोगों के पास खुद के घर है या कितने लोग किराए पे रह रहे हैं।
1: और अब रवि जी जुड़ गए हैं हमारे साथ हरिद्वार से। जी रवि जी।
3: हाँ जी नमस्कार मैम जी, मेरा अभी ज्वालियागढ़ मीरपुर हरिद्वार से हूँ जी।
1: जी नमस्कार।
3: हाँ जी माँ जी, विशेषज्ञ को भी मेरा नमस्कार जी।
0: नमस्ते
3: जी मैम, मैं जानना चाहता हूँ जी, जो जनगणना है हमें सहयोग करेंगे, अपनी जानकारी देंगे, वो कितनी गोपनीय रखी जाएगी मैम?
0: जी बिल्कुल, ये पूरी तरह से गोपनीय रखी जाएगी, और कितनी रखी जाएगी इसके लिए मैं एक ही जवाब दे सकती हूँ कि आप भी मांगेंगे बाद में तो आपको भी नहीं दी जाएगी, इतनी गोपनीय रखी जाएगी। क्योंकि पूरी जानकारी एज पर सेंसस एक्ट या सेंसस अधिनियम जो है उसके हिसाब से किसी को दी नहीं जाती, आरटीए में भी दी नहीं जाती, कोर्ट में भी दी नहीं जाती और इंडिविजुअल भी को भी दी नहीं जाती। एक बार फिल होने के बाद वो कॉन्फिडेंशियल रह जाती है और हम सिर्फ एग्रीगेट लेवल पे डेटा रिलीज करते हैं।
1: और अब एक और लिस्नर हमारे साथ जुड़ गए हैं मथुरा से, महेंद्र जी। जी महेंद्र जी।
4: जी नमस्कार।
1: नमस्कार
4: मैम, मेरा सवाल ये है कि अगर पुत्र या पुत्र वधु अगर माता पिता के साथ जीवन यापन करते हैं और उनका भोजन एक ही रसोई में तैयार होता है तो वो अलग परिवार माना जाएगा या उसी में जॉइंटर किया जाएगा?
0: जी देखिए, जनगणना के लिए एक ही कंसेप्ट है, अगर एक परिवार मानने के लिए कि वो एक ही चूल्हे पे खाना पकाते हैं या नहीं, या एक ही किचन में खाना पकाते हैं या नहीं, तो इसमें कोई भी हो, अगर वो एक ही किचन से खाना खा रहे हो, खाना पका रहे हो, तो उसको एक ही परिवार माना जाएगा, चाहे वो अनरिलेटेड हो, उनका कोई आपस में रिलेशन भी ना हो। जैसे आजकल हम देखते हैं 3-4 दोस्त मिलके एक छोटा सा फ्लैट लेके रहते हैं और अपना अपना खाना बनाते हैं या मेड को रख के खाना बनाते हैं, तो ऐसे में भी उनको हम एक ही परिवार मानते हैं।
1: अच्छा, इसी से जुड़ा एक और प्रश्न मेरे पास आया था कि अगर मेरी बेटी की शादी हो गई और वो किराए पर रहती है तो क्या वो अपने घर में उसको सदस्य के रूप में शामिल कर सकते हैं?
0: नहीं, बिल्कुल नहीं, वो जहाँ पे रहती है वहाँ पे उसका उसको गिना जाएगा।
1: अच्छा, और अब गुरुग्राम से सुभाष जी हमारे साथ जुड़ गए हैं। जी सुभाष जी।
5: नमस्ते मैम।
1: जी नमस्कार।
5: आमंत्रित विशेषज्ञ महोदय को नमस्कार।
0: जी नमस्ते।
5: मेरा सवाल ये है मैम कि जो स्वगणना का जो भूमिका है, जैसे व्यक्ति अगर स्वगणना की आपने जिक्र किया था अभी, तो उस स्वगणना में उसकी कैसी भूमिका को सत्यापन के रूप में जाना जाएगा? उसको मतलब कौन सा ऐसा प्रमुख बिंदु रहेगा जो उसके व्यक्ति के प्रमुख कार्यों को बताकर वह किस तरह से स्वीकारा जाए, उसका सत्यापन करने के क्या तरीके हैं, यही मैं पूछना चाहता था। धन्यवाद जी।
0: जी तो जैसे मैंने कहा, स्वगणना इस बार पहली बार हम लोग ये फैसिलिटी दे रहे हैं, 2011 तक ये फैसिलिटी नहीं थी। ये इस बार इसलिए इंट्रोड्यूस की कि काफ़ी लिटरेसी भी

0: झोपड़ी है। प्लस आजकल बड़े बड़े शहरों में ये देखा जाता है कि घर के सारे सदस्य कहीं ना कहीं काम पे जाते हैं, सुबह से लेकर रात तक वो बाहर आते हैं रहते हैं, तो प्रगन को देने के लिए उतना टाइम उनके पास नहीं होता। लेकिन उसकी वो जो इन्फॉर्मेशन भरेगा वो सत्यापित करनी भी बहुत ज़रूरी है, क्योंकि कुछ हमारे कंसेप्ट्स है जैसे पानी कहाँ से मिलता है या घर में टॉयलेट की फैसिलिटी क्या है, इस तरह के क्वेश्चन हो सकता है कभी कभी रिस्पोंडेंट को खुद पता ना चले, क्योंकि प्रगणक को काफ़ी अच्छे से हम ट्रेन करते हैं, 3-4 दिन का उसका ट्रेनिंग होता है, उसको वीडियोस दिए जाते हैं, ट्रेनिंग मटेरियल दिया जाता है। तो इस तरह की इन्फॉर्मेशन अगर कभी रिस्पोंडेंट या जो खुद भर रहा है स्वगणना की इन्फॉर्मेशन कुछ गलत अगर करे तो वो प्रगणक एक बार देख के उसको बता के उसको सही करके सत्यापित कर सकता है।
1: अच्छा, एक और प्रश्न हमारे पास आया है रुशाली जी की, स्लम और जेजे क्लस्टर बेघर आबादी की गिनती मकान जनगणना में कैसे सुनिश्चित की जाती है?
0: जी, स्लम के एरिया के लिए तो हम जैसे मैंने कहा एक प्रगणक के लिए छोटा सा एक एरिया होता है, तो स्लम के हम अलग से एरिया बनाते हैं, उसको अलग से कोडिंग करते हैं ताकि हमारे पास स्लम का डेटा भी आ जाए, क्योंकि उनके घर होते हैं कच्चे हो चाहे पक्के हो, घर होते हैं उसकी गणना की जाती है, घर नंबर भी दिया जाता है
1: जी।
0: जो बेघर होते हैं बेघरों की गणना पहले फेज में नहीं होती, उनको सेकंड फेज में गिना जाता है, जो कि सेकंड फेज हमारा कंप्लीट होने के बाद लास्ट डेट में जो 28 फरवरी का दिन होता है उसको रात को हम उनकी गणना करते हैं, क्योंकि जनरली ये लोग रात को ही मिलते हैं अपने किसी रेलवे प्लेटफॉर्म पे या किसी ब्रिज के नीचे या इस तरह के जगह पे, तो बेघरों को सिर्फ सेकंड फेज में गिना जाता है
1: जी। तो श्रोताओं, अब आपके सवाल जो हैं वो कुछ कम हो रहे हैं, तो हम आपका इंतज़ार कर रहे हैं कॉल का। आप परिचर्चा सुन रहे हैं और मकान सूचीकरण आवास गणना पर विषय आज हमने रखा है, क्योंकि जनगणना 2027 जारी है और बहुत तेज़ी से ये काम चल रहा है। जनगणना कर्मी जो है दिन भर लगे हुए हैं, आपके सवाल का जवाब जो है आप दे रहे हैं, और इसी पर आप कॉल कर सकते हैं 0112331-0481 पर, और प्रश्न पूछ सकते हैं हमारे विशेषज्ञ से। किसी भी तरह का डाउट अगर आपके मन में है और आप इससे रिलेटेड कुछ भी प्रश्न पूछना चाहते हैं तो आप कॉल कर सकते हैं 0112371-7117 पर। हम कर रहे हैं आपके कॉल का इंतजार। रुशाली जी, एक और प्रश्न मेरे पास है कि भाषाई और क्षेत्रीय विविधता वाले राज्यों में प्रश्नावली को समझाने की सबसे बड़ी चुनौती क्या होती है?
0: सबसे बड़ी चुनौती तो है उनको अपनी भाषा में समझाना, उनको अपनी भाषा में सारा मटेरियल उपलब्ध कराना, और प्रश्न भी उनके भाषा में होने चाहिए। तो ये बहुत अच्छा एक ट्रेडिशन है जनगणना का कि जनगणना के सारे मटेरियल 16 भाषाओं में उपलब्ध है, जो सारे हमारे मोबाइल ऐप है या पोर्टल है या स्वगणना का वेब पोर्टल है ये भी 16 भाषा में उपलब्ध है। जो इंस्ट्रक्शन मैनुअल्स है ये तो 19 भाषा में उपलब्ध है, क्योंकि हर एक स्टेट की या हर एक रीजन की अपनी अपनी एक लैंग्वेज होती है, तो उन सारे लैंग्वेज में ये सारा अवेलेबल है
1: जी। अच्छा, 2011 में जो है अगर बात की जाए तो डेटा की एंट्रिंग, स्कैनिंग और वेरिफिकेशन में लगभग बताया जा रहा है कि 2 साल लग गए थे, लेकिन 2026 में रियल टाइम डेटा अपलोड से रिजल्ट कितने जल्दी आने की उम्मीद है?
0: बहुत अच्छा सवाल है। जैसे 2011 में पहला हमारा पब्लिकेशन आने में 2 साल लगे
1: जी।
0: लेकिन आप देख सकते बहुत सारे क्वेश्चन पे हम इन्फॉर्मेशन लेते हैं जो सेकंड फेज में आती है, तो एक एक सीरीज या एक एक पैरामीटर पे डेटा रिलीज करने में 6 से 8 साल लगे थे। जो हमारा लास्ट टेबल रिलीज हुआ था माइग्रेशन पे, वो हमारा 2019 में रिलीज हुआ था, क्योंकि हमारे जो पेपर पे होता था तो देश के हर कोने से पेपर कलेक्ट करना, मतलब इन्फॉर्मेशन भरने के बाद वो कलेक्ट करना, वो स्कैन करना, इसी में हमारे पूरे 2 साल निकल जाते थे। अब हालांकि हमारा डिजिटल हो रहा है, रियल टाइम डेटा आ रहा है, तो हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि एटलीस्ट पहला जो हमारा पब्लिकेशन है वो 8 से 9 महीने में रिलीज हो जाए, और बाकी सारी डेटा 2 से 3 साल के अंदर अंदर डेटा पब्लिश हो जाए।
1: जी बिल्कुल, क्योंकि जनगणना केवल जनसंख्या की गिनती नहीं है बल्कि राष्ट्र निर्माण की आधारशिला भी है, तो मुझे लगता है कि इसमें अगर सब लोग मिलकर भागीदार बनेंगे तो देश प्रगति की राह पर बढ़ेगा। और अब दिल्ली से विकास हमारे साथ जुड़ गए हैं। जी विकास जी।
2: हाँ जी, हमारे 2 मकान एक तो गाँव में है राजस्थान में और एक दिल्ली में है, तो हमारी जनगणना कहाँ होगी?
0: जहाँ पे आप रहते हैं हमेशा के लिए या ज़्यादा वक्त जहाँ पे रहते हैं वहाँ पे आपकी जनगणना होगी।

0: यहाँ पे बिल्कुल डरने की बात नहीं है कि अगर आपकी जनगणना यहाँ पे होगी तो गांव के मकान का क्या होगा। जनगणना का उससे कोई भी संबंध नहीं है, जहाँ पे आप रहते हैं वहाँ पे आपकी गणना होगी।
1: हाँ विशाली, ये प्रश्न वैसे देखा जाए तो बहुत लोग पूछ रहे हैं, क्योंकि अक्सर लोग जो है रोजगार के लिए बाहर आते हैं और गांव का जो घर है उनका या तो खाली पड़ा होता है, लेकिन वो होता है, वो कहीं ना कहीं जाकर जो है उनसे जुड़ा हुआ होता है। तो वो लोग ये
0: बिल्कुल
1: सोच रहे हैं कि अगर यहाँ पर हम लोग वो भर देते हैं, जैसे दिल्ली में अगर रह रहे हैं तो दिल्ली का अगर भर जाता है तो क्या गाँव का भरना जरूरी होगा, और अगर छूट जाता है तो क्या होगा?
0: बिल्कुल बिल्कुल। तो जनरली जनगणना की यही कंसेप्ट है कि जो आदमी जहाँ पे रहता है, क्योंकि देखिए अगर वो शहर में रहता है तो शहर के इंफ्रास्ट्रक्चर पे एक मतलब शहर का इंफ्रास्ट्रक्चर हमें
1: जी
0: मजबूत बनाना है, इसलिए जनगणना का जो कंसेप्ट है, जो जहाँ पे रहता है वहाँ पे उसकी गिनती होगी। हालांकि मैंने फिर एक बार कहती हूँ कि इंडिविजुअल इंफॉर्मेशन से इसका कोई भी लेना देना नहीं है। अगर आपका गांव में भी घर है, गांव में दो घर है, यहाँ पे एक घर है, तो इससे कोई आपको फर्क नहीं पड़ेगा। आप जहाँ पे रहते वहाँ पे आपकी गिनती होगी।
1: जी और अब एक और प्रश्न हमारे साथ जुड़ गए हैं, एमपी से राजेश नीमा जी ने प्रश्न ले रहे हैं उनका। जी राजेश जी।
2: जी, मैं सिंहपुर बड़ा से राजेश नेमा बोल रहा हूँ, और मेरा सवाल ये है कि यदि एक घर में एक मकान, आधा मकान कच्चा है और एक कमरा पक्का है, तो वो जनगणना की कौन सी श्रेणी में आएगा?
0: जी, तो जनगणना में अगर सारे सवालों के बारे में एक जिस्ट में बताऊं तो प्रीडोमिनेंटली यानी मुख्यतः जो यूज़ होता है उसका इन्फॉर्मेशन हम लेते हैं। जैसे कि ड्रिंकिंग वाटर सोर्स की अगर मैं बात करूं कि आपके पास कुआं भी है और नल से भी पानी आ रहा है, लेकिन आप नल का पानी ज़्यादा यूज़ करते हैं तो नल आपको लिखना है। उसी तरह आपका अगर आधा मकान कच्चा है आधा पक्का है, या ज़्यादा मकान पक्का है और थोड़ा सा मकान कच्चा है तो पक्का लिखना है। तो ये डिपेंड है आपका कितना पोर्शन पक्का है कितना पोर्शन कच्चा है।
1: और अभी कौन लिसनर हमारे साथ जुड़ गए हैं, मथुरा से पप्पू सिंह जी। जी पप्पू जी
3: नमस्कार मैम।
1: नमस्कार।
3: सर जैसे मकान के अलावा जैसे हमारा प्लॉट है और उसमें हमारे पशु बनते हैं और ईंधन खंडा रखे रहता है और वहाँ पे कुछ भी बना नहीं है, वैसे ही है, उसमें पेड़ वगैरह खड़े हैं, तो उसकी गणना भी होगी क्या?
0: जी नहीं, जैसे हमारे इस फेज का नाम है मकान सूचीकरण, तो वहाँ पे कोई स्ट्रक्चर होना चाहिए, खाली प्लॉट को गिनते नहीं हैं। लेकिन वहाँ पे अगर कोई कच्चा सा शेड भी है जिसमें पशु रखे हुए हैं तो उसको एक नंबर दिया जाएगा और उसको नॉन रेसिडेंशियल करके उसको गिना जाएगा।
1: तो ये एक बहुत ही अच्छा प्रश्न था एक
0: जी
1: तरीके से,
0: जी
1: क्योंकि
0: हाँ
1: अक्सर लोग गांव में जो होता है पशु वगैरह बांध देते हैं और पूरा एक शेड प्रॉपर ताकि बारिश से उनको बचाया जा सके वो रखते हैं। अच्छा रुशाली जी, एक और ये सवाल है कि 2011 में बैंकिंग सेवा का उपयोग नहीं पूछा गया था, लेकिन इस बार जो है जनधन डीबीटी के बाद इसे जोड़ने का क्या मकसद है?
0: मकसद यही है, क्योंकि एक स्कीम शुरू की गवर्नमेंट ने जनधन योजना, तो उसका इम्पैक्ट क्या हुआ, कितने लोगों के पास या कितने परिवारों के पास बैंकिंग की सुविधा उपलब्ध है, ये देखने के लिए ये प्रश्न नए से जोड़ा गया है।
1: जी, और अंत में चलते चलते हम रुशाली जी आपसे चाहेंगे कि जनता से क्या अपील हम करना चाहेंगे ताकि वो इसमें सहयोग दे सकें पूरी तरीके से।
0: जी, जनता से यही अपील करना चाहेंगे कि पूरा कोऑपरेट करें इस जनगणना के लिए, क्योंकि जनगणना से जो भी आंकड़े आते हैं, फिर से एक बार दोहराती हूँ मैं, पूरी तरह से गोपनीय रखे जाते हैं। इससे कोई भी आपके ऊपर ना कोई टैक्स लगेगा, लेकिन जो भी आंकड़े आप सही आंकड़े देंगे उससे सरकार की नीतियाँ बनेगी, पॉलिसीज बनेगी, जैसे किस गांव में स्कूल बनाने हैं या किस गांव में पानी की सुविधा देनी है, अच्छे पानी देनी है या टॉयलेट कंस्ट्रक्ट करने हैं। तो इस तरह की जो भी वेलफेयर स्कीम्स सरकार बनाती है उसके लिए सही सही जानकारी देना बिल्कुल ज़रूरी है। तो यही एक अपील है कि सही जानकारी दे और कोऑपरेट करे, और जो प्रगणक है हमारे वो अपना काम संभाल के पूरा एक्स्ट्रा काम ये कर रहे हैं, तो उनको अच्छे से कोऑपरेट तो करे ही, प्लस अच्छे से उनके साथ बिहेव करे, अच्छे से बात करे।
1: जी बिल्कुल रुशाली जी, क्योंकि 10 साल में एक बार ये मौका आता है कि जब आपके घर की गिनती, आपके सपनों की गिनती जो है वो की जाती है। जनगणना कोई डर की बात नहीं है, ये आपके हक की बात है और आपका मकान गिना जाएगा तभी मकान तक सुविधा पहुंचेगी। भारत की पहली डिजिटल जनगणना में भागीदार बनिए। और आपका बहुत बहुत धन्यवाद रुशाली जी कि आपने अपना कीमती समय हमें दिया और आज आप हमारे समक्ष मौजूद रहीं और हमारे श्रोताओं के प्रश्नों का आपने जवाब दिया।
0: धन्यवाद,
1: बहुत बहुत धन्यवाद।
0: धन्यवाद।
1: तो श्रोताओं मुझे दीजिए इजाजत कार्यक्रम यहीं समाप्त करने की। नमस्कार।

मिडिल 262.47 मीटर यानी 1143 किलो हॉर्स पर आकाशवाणी का इकलौता केंद्र है। स्टूडियो की घड़ी में रात्रि के 10:08 हुए हैं। प्रस्तुत है कार्यक्रम शास्त्रीय संगीत। इस कार्यक्रम के अंतर्गत लीजिए सुनिए सुरेंद्र कुमार का सितार पर बजाया राग यमन।

अभी आपने शास्त्रीय संगीत कार्यक्रम के अंतर्गत सुना सुरेंद्र कुमार का सितार पर बजाया राग यमन। मीणावीर 262.47 मीटर यानी 1143 किलो हर्ट्ज पर आकाशवाणी का यह रोहतक केंद्र है।

मीडियम वेव 262.47 मीटर यानी 1143 किलो हर्ट्ज पर आकाशवाणी का ही रोहतक केंद्र है। स्टूडियो की घड़ी रात्रि की 10:30 होने को है। वक्त है कार्यक्रम मन चाहे गीत का।

मनचाही गीत कार्यक्रम सुनने वाले सभी श्रोताओं को सुमन मलिक का प्यार भरा नमस्कार। आशा है कि आप सब बिल्कुल ठीक ठाक होंगे। सुनवाती हैं आपको आपकी पसंद के कुछ चुनिंदा गीत। अनारकली बाजार जगराऊं से ये पत्र है सुनील पाठक, कमल पाठक, दीपिका मल्होत्रा, आशीष मल्होत्रा, काव्य और सुचा पाठक का। डवाली हरियाणा से हैं जेके बकोलिया, सुनीता बकोलिया, संजय, अनिल, मीनू बकोलिया। बिरई से हैं बसंत कुमार सूर्यवंशी, सरोज, ईश्वर राय, चंद्रकान, प्रांची और ट्यूशी सूर्यवंशी। डेल ऑफ कॉलोनी रोहतक से हैं महेंद्र शाह, हरेंद्र शाह, जितेंद्र शाह और मानसी शाह। मलोट पंजाब से हैं राजकुमार इंदौरा, बिमला, कैदी विकास, इंदौरा प्रियंका, रमन रितु इंदौरा, भविष्य खन्ना, मिसेल किंशु खन्ना, दीपांशु दीपांशी इंदौरा। साधुल शहर से हैं ओम प्रकाश चौहान, मनु प्रकाश, शिव प्रकाश और वेद प्रकाश चौहान। आइए आप सबकी फरमाइश पर हम आपको सुना रहे हैं मोहम्मद रफ़ी का गायक गीत, फिल्म का नाम है जीने की राह।

लता मंगेशकर और मनहर के युगल स्वरम यहीं आपको सुनवाते हैं अभिमान फिल्म का ये नगमा, बोल है मजरूर सुल्तानपुरी की ओर संगीत एस टी बर्मन का। और इस गीत के लिए हमारे पास फरमाइश है रानगर मधुबनी से कुशेश्वर प्रसाद गुप्ता की, साथ हैं शारदा राधा रानी, मौसम गुप्ता, संगीता रुद्र, रिंकी गुप्ता। लखनऊ से हैं मुकेश गुप्ता, रानी कुसुम, पलक, पंकुर गुप्ता। रानगर गांधी चौक निकेतन से हैं मंजीत गुप्ता, सोनाली सूर्यांशी, कोमल मेनका गुप्ता, माधवी साध्वी, तमन्या राज और गुनगुन। अलीका डवाली से हैं बसंत सिंह चंद, राजकुमार, सुनीता, कुलदीप गांधी। फ्रेंड्स कॉलोनी करनाल से हैं गुरविंदर सिंह पांधा, इंद्रजीत कौर, मनमीत और मनविंदर सिंह पांधा। आदर्श नगर मलोर से हैं राज शर्मा, मीना शर्मा, योगेश मेंडी, सौरभ, शाइना और निवान शर्मा। गोला बाजार बक्सर से हैं श्रद्धानंद आर्य, अभिनंद आर्य, परमानंद आर्य, पंकज, प्रमोद, रोहित व मोहित।

अगले गीत के लिए हमारे पास फरमाइश है मॉडल टाउन का नाजी है सुधीर नूतन, नरेंद्र तनेजा, संदीप कुगनानी, जगी दुआ, सुनीता शर्मा। लातूर हूं से हैं ये हमारे श्रोतागण जो कि हैं उस्मान शेख, फौजी साराबान शेख, दस्तागिर शेख, फैष्णवी शेख, शाकिर शेख, इस्लामी शेख, बाबा शेख, करिश्मा शेख, सिमर शेख, सानिया शकिल कर, बिस्माली शेख, गदर शेख, अनिल फर शेख, हिपर सोगा, और ये सब नादेन हुन से थे। और इसी गीत को सुनना चाहते हैं रेलवे कॉलोनी हनुमानगढ़ जंक्शन से जगपाल सिंह डागला, हैप्पी डागला जी, एस नायक, शोभा नायक, समस्त डागला परिवार। समांजी नगर से हैं राजीव सावली पाटिल, राजदीप राजेश, राशि राजेश, शीतल राजेश। बाटापारे दतरंगी से हैं द्वारिका प्रसाद वर्मा, किशोर कुमार वर्मा, दीपक कुमार वर्मा, गविंद्र कुमार वर्मा। गांधी चौक रोपड़ पंजाब से हरदेव मीका, बलविंदर बिरक, जयदेव बिरक और मीका बिरक। आइए सुनते हैं आपकी पसंद पर मोहम्मद रफ़ी का गाया गीत, फिल्म का नाम है द ट्रेन।

जे होते कर गणेश, कार्तिक, अश्वनी, वैष्णवी, हर्सुल, वैभव, गौरव, औरंगाबाद से हैं मेघराज, युवराज, रिधोरा, रुद्र और उनके परिवार के सभी सदस्य। मुक्तसर से हैं बाबू सिंह धीमान, विजेंद्र कुमार धीमान, रवनीत और निशु। इसी गीत को सुनना चाहते हैं पुणे से पंकज वड़ोदे, आर्या, बीटी वड़ोदे और चंद्रप्रभा। चकला बाजार सामाना से हैं पप्पू राज खुशदिल, संगीता जिंदल, हंसमुख जिंदल, पुराही खुशदिल और उनके परिवार के सभी सदस्य। तो ये सुनते हैं दो गलियां फिल्म का एक गीत, आवाज़ें हैं लता मंगेशकर और मोहम्मद रफ़ी की।

कार्यक्रम की अगली प्रस्तुति किशोर कुमार की आवाज़ में, फिल्म का नाम है कुदरत और इस गीत के लिए हमारे पास पत्र हैं। बिजनौर से हैं मोहम्मद वकार फरीदी, मोहम्मद इकबाल फरीदी, सितारा बेगम, नसरीन परवीन, रोजी परवीन, बिट्टू भैया, साजदा रानी, हीना कोसर। कनेरा मोहल्ला पटियाला से हैं बत्ता परिवार, मुकेश बत्ता, नीलम बत्ता, नितिन पलक, करण, गीतू, निहारिका, हार्दिक, वंश बत्ता। बेरड़ी से हैं हुकम करमरकर, सुनीता, हार्दिक, प्राची और तन्नु करमरकर। बोल्टाउन करनाल से हैं सुधीर नूतन, संदीप भुगनानी, सुनीता जैन, सुनीता शर्मा। इसी गीत के लिए हमारे पास फरमाइश है प्रमीलागंज मालोट मध्य प्रदेश से हैं बलवंत कुमार वर्मा, राजूबाई वर्मा, माया वर्मा, शुभर वर्मा, राहुल ज्योति, अतुल पायल, प्रियांश और ऋषि वर्मा। मालोट कैंप पंजाब से हैं सतीश मिगलानी, सीमा अनमोल, धर्मपाल, वीर सिंह लाठी, लखविंदर संधू, महावीर संधू, गुरचरण ग्रोवर, रमेश मिगलानी। लिका डवाले से हैं बसंत सिंह चंद, राजकुमार, सुनीता, कुलदीप गांधी। बलिया से हैं ओम प्रकाश राय, उषा राय, अमित कुमार राय, हैप्पी राय। गाजीपुर से हैं प्रतीक राय, रोशनी राय, प्रांजल राय। गाजीपुर से हैं अवधेश राय, प्रीति राय और नवनीत राय।

और कार्यक्रम के अंत में आपको हम सुनवाते हैं लता मंगेशकर का गाया गीत, फिल्म का नाम है असली नकली। इस गीत के लिए हमारे पास फरमाइश है लच्छनपुर से रामजी साहू, जीवनलाल रजक, निम्मी शिवम, सतीश मुकेश साहू, बठिंडा से हैं प्रेम सिंह चोड़ा, मनजीत कौर चोड़ा, करणवीर करण, दपिंदर वरिंदर, सिमरन कुलदीप, एकम दमन, अभिजीत। दतरंगी से हैं द्वारिका प्रसाद वर्मा, किशोर कुमार वर्मा, दीपक कुमार वर्मा, गेंद्र कुमार वर्मा। गुलजार बस्कर से हैं श्रद्धानंद आर्य, अभिनंद आर्य, परमानंद आर्य, पंकज प्रमोद, रोहित मोहित। हिंगोली से हैं शाहजी बोड़के, नंदा बोड़के, हनुमान बोड़के, उत्तम और स्वराज बोखरे।

0: सी गीत के साथ आगे दीजिए सुमन को कार्यक्रम को ही समेटने की शुभरात्रि। आकाशवाणी का ये रोहतक केंद्र है। स्टूडियो की गर्मी रात्रि को 11 बजने को है। बाग सुनेंगे हिंदी और अंग्रेजी में समाचार। ये दोनों ही समाचार दिल्ली केंद्र से रिले किए जाएंगे।
1: आकाशवाणी समाचार के साथ मैं चंद्रशेखर शर्मा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की नॉर्वे की पहली यात्रा के दौरान दोनों देशों ने भारत नॉर्वे संबंधों को पर्यावरण अनुकूल रणनीतिक साझेदारी में उन्नत करने की घोषणा की है। आज ओस्लो में प्रधानमंत्री योनस गौर स्टोर के साथ प्रतिनिधिमंडल स्तर की वार्ता के बाद संयुक्त बयान में प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि यह साझेदारी स्वच्छ ऊर्जा से लेकर जलवायु लचीलापन, समुद्री अर्थव्यवस्था से लेकर शिपिंग तक के क्षेत्र में सहयोग को बढ़ावा देगी। प्रधानमंत्री मोदी ने आतंकवाद के खिलाफ भारत के साथ मजबूती से खड़े रहने के लिए नॉर्वे का आभार व्यक्त किया।
2: मैं पिछले वर्ष नॉर्वे आने वाला था, लेकिन पहलगाम में हुए आतंकी हमले के कारण वह यात्रा स्थगित करनी पड़ी। उस कठिन समय में नॉर्वे ने आतंकवाद के विरुद्ध भारत के साथ मजबूती से खड़े होकर सच्ची मित्रता का परिचय दिया। आज जब मैं नॉर्वे आया हूँ तो मैं इस सॉलिडेरिटी के लिए हृदय से आभार व्यक्त करता हूँ।
1: हाल ही में लागू व्यापार और आर्थिक साझेदारी से परिणाम सुनिश्चित करने के लिए आज ठोस कदम उठाए गए। विशेष रूप से उच्च तकनीक, कृत्रिम बुद्धिमत्ता और स्टार्टअप के क्षेत्र में सहयोग की परिकल्पना की गई ताकि साझेदारी को भविष्य के लिए तैयार किया जा सके। द्विपक्षीय बैठक में एक त्रिकोणीय सहयोग समझौते सहित कई समझौतों पर भी हस्ताक्षर किए गए। इसके अंतर्गत भारत और नॉर्वे संयुक्त रूप से भारत के डिजिटल सार्वजनिक अवसंरचना का उपयोग करते हुए वैश्विक दक्षिण के देशों को मानव विकास समाधान प्रदान करेंगे। नॉर्वे के प्रधानमंत्री ने आज एक महत्वपूर्ण बयान में संघर्षों से घिरे विश्व में सहयोग बढ़ाने के महत्व पर जोर दिया। प्रधानमंत्री मोदी को नॉर्वे के राजा हेराल्ड पंचम ने रॉयल नॉर्वेजियन ऑर्डर ऑफ मेरिट का ग्रैंड क्रॉस प्रदान किया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 5 देशों की यात्रा के अंतिम चरण में कल इटली पहुंचेंगे। ये यात्रा इटली की प्रधानमंत्री जॉर्जिया मेलोनी के निमंत्रण पर हो रही है। श्री मोदी प्रधानमंत्री मेलोनी के साथ द्विपक्षीय वार्ता करेंगे। वे इटली के राष्ट्रपति सर्जियो मैटारेला से भी मुलाकात करेंगे। श्री मोदी भारत और इटली के बीच व्यापार और निवेश को और बढ़ावा देने के लिए व्यापारिक प्रमुखों से भी बातचीत करेंगे। वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने कहा है कि भारत ने इस वर्ष $1 ट्रिलियन और अगले 5 वर्षों में $2 ट्रिलियन के निर्यात का लक्ष्य रखा है। श्री गोयल ने कहा कि वैश्विक चुनौतियों के बावजूद इस वर्ष निर्यात $863 अरब तक पहुंच गया। ये पिछले वर्ष की तुलना में लगभग 5% अधिक है। उन्होंने कहा कि वस्तुओं और सेवाओं दोनों के निर्यात में वृद्धि हुई है। केंद्रीय मंत्री ने कहा कि विकसित भारत 2047 के लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए भारत के उद्योगों, व्यापार समुदाय और लोगों में जो जोश है उसे दुनिया की कोई भी ताकत रोक नहीं सकती। सरकार ने कहा कि पश्चिम एशिया संकट के कारण आयात में व्यवधान के बावजूद देश के तेल शोधक कारखाने सामान्य रूप से काम कर रहे हैं और भारत के पास कच्चे तेल का पर्याप्त भंडार है। नई दिल्ली में आज अंतर मंत्रालयीय प्रेस वार्ता को संबोधित करते हुए रसायन और उर्वरक मंत्रालय की संयुक्त सचिव अपर्णा एस शर्मा ने कहा कि खरीफ सीजन के लिए उर्वरक की उपलब्धता सभी राज्यों में 50% से अधिक है। न्यायमूर्ति यशवंत वर्मा से जुड़े आरोपों की जांच कर रही जांच समिति ने आज अपनी रिपोर्ट लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला को संसद भवन में सौंप दी। यह रिपोर्ट न्यायाधीश जांच अधिनियम 1968 के अंतर्गत निर्धारित प्रावधानों के अनुसार प्रस्तुत की गई है। रिपोर्ट को जल्द ही संसद के दोनों सदनों में पेश किया जाएगा। लोकसभा अध्यक्ष ने पिछले वर्ष 12 अगस्त को इस समिति का गठन किया था। पश्चिम बंगाल सरकार ने भारतीय जनता पार्टी के चुनावी वादों के अनुरूप संस्थागत भ्रष्टाचार और महिलाओं के साथ अत्याचारों की जांच के लिए 2 जांच आयोगों का गठन किया है। मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी ने राज्य मंत्रिमंडल की मंजूरी के बाद आज इस फैसले की घोषणा की। संस्थागत भ्रष्टाचार के जांच आयोग की अध्यक्षता कलकत्ता उच्च न्यायालय के सेवानिवृत्त न्यायाधीश विश्वजीत बसु करेंगे। आईपीएल क्रिकेट में चेन्नई सुपर किंग्स ने सनराइजर्स हैदराबाद को 181 रनों का लक्ष्य दिया है। ताजा समाचार मिलने तक सनराइजर्स हैदराबाद ने 15वें ओवर में 2 विकेट पर 131 रन बना लिए थे। चेन्नई की ओर से कार्तिक शर्मा ने 44 रनों की पारी खेली। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।